FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज रविवार है। शक संबत 1948 के ज्येष्ठ मास की 24वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 14 जून सन 2026। इस मीटर पर इस समय प्रातः के 5:58 और 23 सेकंड हुए हैं। इस मीटर पर अब हमारी पहली सभा का आरंभ होता है।

0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन सम्पन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1800-315-70

0: 0008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एक दिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना।

लोभ मोह मद मत्सर आदि विषयों से युक्त हृदय तब स्वतः ही पवित्र हो जाता है जब उसमें प्रभु की पावन मूरत बस जाती है।

इसी नाम के बल पर भक्तों ने साक्षात राम के चरणों को पाया। हे रघुनाथ, मेरी जड़ता को दूर कर, अपने नाम से मेरी इस प्रीति को स्वीकार कर, मुझे अपना कर लें।

कार्यक्रम वंदना में जिन स्वरों को आपने सुना वे स्वर थे मुकेश मोहम्मद रफी, गोपाल शर्मा, सुखदेव शर्मा, नरेश मल्होत्रा और ये देशभक्ति परक रचना आपने सुनी संवेद स्वरों में। इसी के साथ ही कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त हुआ।

0: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रकाश किरण। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं धार्मिक ग्रंथों में संत संगति का महत्व। इस विषय पर आलेख और वाचन स्वर दामोदर शास्त्री का है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम प्रकाश किरण।
1: में सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। कोई अपने सत्कर्मों व सद्गुणों के कारण प्रतिष्ठा व सम्मान अर्जित करते हैं, दूसरी ओर कुछ लोग अपने दुष्कर्मों के कारण निंदा व अपयश के भागी होते हैं। सद्गुणों व सत्पुरुषों का सभी जगह आदर होता है और दुर्गुणों व दुर्जनों की सब जगह निंदा। सत्पुरुषों के संसर्ग में आकर जहां व्यक्ति को मन की शांति मिलती है, वहां दुर्जनों के संसर्ग से अशांति। इसीलिए सत्पुरुषों की संगति का महत्व शास्त्रों में जगह जगह गाया गया है। महान नीतिज्ञ चाणक्य ने कहा है, संसार कटु वृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे सुभाषितंच सुस्वादु संगति सुजने जने। इस संसार रूपी वृक्ष में सभी फल कड़वे होते हैं, किंतु दो ही फल उसमें ऐसे लगते हैं जो अमृत जैसे मीठे होते हैं। एक तो मीठी वाणी और दूसरा सत्पुरुषों की संगति। वास्तव में सत्पुरुष चलते फिरते सद्ज्ञान की पाठशाला हैं। उनके संसर्ग में जो भी आता है उसमें सद्गुणों का विकास स्वतः प्रारंभ हो जाता है। जैनाचार्य रविशेन ने पद्म पुराण में सत्संगति का महात्म्य इस प्रकार बताया है, साधो संगमना लोके न किंचित दुर्लभम भवेत बहुजन्मसु न प्राप्ता बोधिर्येनाधिगम्यते। अर्थात सत्पुरुषों की संगति से दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो प्राप्त न हो सके, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से अज्ञान से ग्रस्त व्यक्ति को भी सत्पुरुषों की संगति से सज्ञान का प्रकाश मिलता है, जिसके आधार पर वह सांसारिक दुखों से मुक्ति पा सकता है। महामनीषी भर्तृहरि ने भी बड़े ही सुंदर ढंग से सत्संगति के लाभों पर इस प्रकार प्रकाश डाला है, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति चेत प्रसादयति दिक्षुतनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम। अर्थात सत्संगति से मनुष्य की बुद्धि प्रखर होती है, सत्य बोलने का गुण विकसित होता है, पाप से दूर रहने का भाव दृढ़ होता है, कीर्ति का मार्ग प्रशस्त होता है और मन की प्रसन्नता सदा बने रहती है। भला बताओ ऐसा कौन सा लाभ बचा है जो सत्संगति से प्राप्त नहीं होता। दुर्जनों की संगति के बारे में महान नीतिज्ञ भर्तृहरि ने कहा, दुर्जन परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोपि सन् मणिना भूषित सर्पः किमसौ न भयंकरः। सर्प के मस्तक पर बहुमूल्य मणि भी होती है तब भी लोग उससे भय खाते हैं और उसके समीप नहीं जाते। उसी प्रकार कोई व्यक्ति विद्वान होते हुए भी यदि दुर्जन हो तो उसकी संगति से लोग दूर रहते हैं और दूर रहना भी चाहिए। महाभारत में महात्मा विदुर जी ने दुर्जन संगति से होने वाली हानि के विषय में अपने विचार इस प्रकार प्रकट किए हैं।

अपापान् तुल्यो दण्डः स्पृशते मिश्रभावात् शुष्केणार्द्रम् दह्यते मिश्रभावात् तस्मात् पापैः सह सन्धिम् न कुर्यात्। जैसे सूखी लकड़ी के साथ गीला ईंधन भी जल जाता है, वैसे ही पापी दुर्जनों की संगति से महात्मा सज्जनों को भी दुष्परिणाम भोगना पड़ता है।

0: दुर्जन की पहचान यह है कि मन में कुछ होता है और वाणी में और कर्म में कुछ और। सज्जन व महात्मा पुरुषों के मन वाणी कर्म में एकता होती है। वे जो सोचते हैं वही कहते हैं और जो कहते हैं वही करते हैं।
1: धार्मिक ग्रंथों में संत संगति का महत्व, इस विषय पर आधारित था हमारा आज का साप्ताहिक कार्यक्रम प्रकाश किरण। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान। आज के संगीतबद्ध प्रसंग को स्वर दिया है मारणी नामवीर ने। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

भगवान शंकर के श्रीमुख से श्री रामचंद्र के ब्रह्म, चिन्मय तथा अविनाशी होने का ज्ञान पाकर पार्वती का संशय मिट गया था। फिर भी उन्होंने ये जानने की जिज्ञासा प्रकट की थी कि प्रभु ने मनुष्य का शरीर किस कारण धारण किया। भगवान शिव ने तब उन्हें वो सभी तथ्य बताए जो अवतार के हेतु कहे जा सकते हैं। इनमें से एक प्रभु द्वारा नारद मुनि के मोहभंग की कथा है। दूसरी कथा है आदि पुरुष मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा को मिले वरदान की। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव हुए। मनु के छोटे पुत्र का नाम प्रियव्रत था, जिनकी प्रशंसा वेद और पुराणों में मिलती है। देवहूति मनु की कन्या थी, जिनका विवाह कर्दम ऋषि से हुआ और जिन्होंने दीनों पर दया करने वाले समर्थ तथा कृपालु आदि देव भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारी आज की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आज शाम 6:30 से आप सुन सकेंगे आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत बनाम पाकिस्तान के मध्य एजवेस्टन बर्मिंघम से मैच का आंखों देखा हाल मैच की समाप्ति तक। इस दौरान आप हमारे सभी कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप के जरिए सुन सकेंगे।

रात्रि 9:30 पर सुनेगा प्रादेशिक संगीत और रविवार से अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम लेकर आएंगे रात्रि 10 बजे से। विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आप सुन सकेंगे रात्रि 8 बजे से। संध्या 7:05 पर आप सुनेंगे ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम, जिसमें आज उद्धव शतक सौ पाठ के अंतर्गत सुमन पाठक का काव्य पाठ आप सुनेंगे। संध्या वंदन कार्यक्रम का समय रहता है 6:45 का। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी होगा 7:31 पर।

संध्या 6:15 पर सुनेगा कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। और आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा विश्व रक्तदान दिवस और मिट्टी की सेहत और फसल की तैयारी। इसी कार्यक्रम में श्रोता सुनेंगे ब्रज लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम मन भावन। संध्या 5:30 से प्रारंभ होगी दूसरी सभा कार्यक्रम युवाणी के साथ। और आज की बात का विषय रहेगा विश्व रक्तदाता दिवस, युवाओं का कैरियर और भविष्य। इसी कार्यक्रम में सुनिएगा झलकी दिमागी कसरतें। आलेख विनीता सिंघल का होगा और प्रस्तुति होगी आर के त्रिपाठी की। आपसे थोड़ी ही देर में यानी कि प्रातः के 6:50 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें विषय रहेगा बैगन की प्रमुख प्रजातियां और उनकी बुवाई। वार्ताकार होंगे डॉ. देवेंद्र सारस्वत। पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत लेकर आएंगे प्रातः 7:00। कार्यक्रम ब्रजमाधुरी का समय होगा प्रातः 7:31 पर। आज आप सुनेंगे फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम ब्रज लोक लहरी। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि प्रातः 8:30 पर आप सुन सकेंगे। और प्रातः 9:00 से हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे प्रज्ञा शर्मा की गाए हुए कुछ भजन। प्रातः 9:25 पर प्रसारित किया जाएगा पर्यावरण पर आधारित कार्यक्रम आबो हवा, वस्तुओं का पुनः उपयोग और पर्यावरण। इस विषय पर आधारित होगा हमारा आज का ये कार्यक्रम। कार्यक्रम बाल गोपाल लेकर आएंगे दिन में 9:30 पर। इसमें आप सुनेंगे बच्चों के मुख से कविता, कहानी और चुटकुले इत्यादि भी। प्रातः 10:00 सुनवाएंगे आपको विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनिएगा एक भेंट वार्ता।

0: जिसका विषय होगा विकसित भारत जी राम जी 2025 अधिनियम के संदर्भ में। डॉक्टर तेजपाल सिंह से भेंट करता होंगे ओपी सिंह। दिन में 11 बजे से आपको सुनवाएंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत लेकर आएंगे दिन में 11:30 पर, और ब्रज लोकगीत का कार्यक्रम में 12:30 पर आपको सुनवाएंगे विनोद कुमार अग्रवाल के गाए हुए कुछ लोकगीत। दोपहर 1:15 पर सुनिएगा योगेश अग्रवाल जौली की लिखी हुई झलकी सुनो सुनो, प्रस्तुति होगी आर के त्रिपाठी की। दिन में 1:30 पर आपको सुनवाएंगे श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ। इस कार्यक्रम में आज आपके साथ जुड़े होंगे ओपी सिंह और देवराज कृष्ण दीक्षित। फिल्म संगीत का प्रसारण होगा दोपहर 1:45 पर, और सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का प्रसारण होगा दोपहर 2:30 पर। 3 बजे हमारी पहली सभा का समापन होगा। अभी आप सुन रहे थे हमारी दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:50 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें, बैगन की प्रमुख प्रजातियां और उनकी बुवाई। इस विषय पर आपको जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: किसान भाइयों, बैंगन जो है सब्जी वाली फसलों का सिरमौर माना जाता है, प्रमुख फसल मानी जाती है, और इसको वर्ष में 3 बार तो सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, लिया जा रहा है, वर्षों भर इसको लिया जाता रहता है। लेकिन इस समय जो इसकी नर्सरी डाली जाएगी उसके बाद इसकी जो रोपाई होगी जुलाई अगस्त के महीने में होगी, और इसके बाद इससे उत्पादन मिलता है। जून से लेकर 15 जुलाई का समय वर्तमान में इसकी नर्सरी डालने का है, और इसके लिए जो प्रजातियां हैं लंबे बैंगन में आजाद क्रांति, पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा क्रांति, KS 331 और पंत सम्राट है। गोल बैंगन में आजाद 13, पंत ऋतुराज, कल्याणपुर T3, KS 224, पूसा पर्पल राउंड, ये इसकी किस्में हैं। और 1 हेक्टेयर की नर्सरी डालने के लिए यानी कि 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए करीब आपको 40 से 50 वर्ग मीटर क्षेत्र में नर्सरी डालनी होती है, और नर्सरी का जो बेड्स तैयार की जाएंगी उनका आकार रहता है 1 मीटर चौड़ा और 3 मीटर लंबा, और इन बेड को सामान्य सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर रखा जाता है, और बेड्स पर सड़ी गोबर की खाद, सुपर फास्फेट की थोड़ी मात्रा मिला करके उसको अच्छी तरह से तैयार कर लिया जाता है, और 1 हेक्टेयर के लिए 500 ग्राम बीज की जरूरत पड़ती है। यानी कि जो 40 से 50 वर्ग मीटर क्षेत्र है उसमें करीब 500 ग्राम बीज हमको बोना होगा, और बीज को शोधित करना जरूरी है। अगर ट्राइकोडर्मा से बीज को शोधित कर रहे हैं तो 5 ग्राम 1 किलो बीज को शोधित करता है, अगर कैप्टन थीरम से शोधित कर रहे हैं तो 3 ग्राम कैप्टन थीरम 1 किलो बीज को शोधित करने के लिए पर्याप्त रहता है। नर्सरी में बीजों की बुवाई लाइनों में की जाती है, और इसमें लाइन से लाइन की दूरी करीब 6 से 8 सेंटीमीटर रखते हैं, और उसमें पौधे से पौधे की दूरी 2 सेंटीमीटर रखते हैं, और बीज की गहराई 1 से 1.5 सेंटीमीटर रखी जाती है। जब इसकी बुवाई कर दी जाती है तो उसके बाद इसके ऊपर एक पतली परत इस मिश्रण की डाली जाती है, जिसमें 2 भाग कंपोस्ट होता है, 1 भाग बालू और 1 भाग मिट्टी का मिश्रण होता है, और इसकी करीब 1 सेंटीमीटर मोटी तह से इसको ढक दिया जाता है। तत्पश्चात पतवार से क्यारियों को ढक देते हैं, हजारे से सिंचाई करते रहते हैं, और पतवार से क्यारियों को उस समय तक ढके रहने देते हैं जब तक इसका अंकुरण न हो जाए। 3-4 दिन बाद अंकुरण सफलतापूर्वक हो जाता है, और उसके बाद पतवार को हटा दिया जाता है, फिर सुबह शाम हजारे से सिंचाई या नालियों के द्वारा इसकी सिंचाई की जाती है।

0: और 4 से 5 सप्ताह में पौध रोपने के योग्य हो जाती है। और कहने का अर्थ यही है कि अगर जून में आपने इसकी वो रोपाई की है, नर्सरी डाली है, तो जुलाई के महीने से लेकर के अगस्त के महीने।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:55 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में हमारा अगला प्रसारण
2: आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका साधना शर्मा। इदानीं वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस देशस्य नीस नगरं संप्राप्तवान्। भारतीय प्रवासी जनैः तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतम्। भारतस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोदयः रात्रौ फ्रांस स्लोवाकिया देशयोः यात्रायाः प्रथमचरणे नीस नगरं संप्राप्तवान्। तत्र फ्रांस देशस्य वरिष्ठाधिकारिभिः तस्य हार्दिकं स्वागतं कृतम्। तत्र होटल नेग्रेस्को स्थले भारतीय प्रवासी जनैः तेषां हार्दिकं स्वागतं कृतम्। प्रधानमंत्री स्वीय यात्राकाले फ्रांस राष्ट्रपतिना सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति तथा विविधेषु कार्यक्रमेषु सहभागित्वं वहिष्यति। फ्रांस देशस्य नीस नगरे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः भारतीय प्रवासी जनैः भव्यं स्वागतं कृतम्। तत्र फ्रांस इटली कलाकारैः प्रस्तुतानि कथक भरतनाट्यादीनि भारतीय शास्त्रीय नृत्यानि अपि दृष्टानि। नीस नगरे भारतीय प्रवासी जनानां स्नेहपूर्ण स्वागताय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तेषां धन्यवादम् अकरोत्। फ्रांस देशस्य नीस नगरे प्राप्तस्य हार्दिक स्वागतस्य कृते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारतीय प्रवासी जनेभ्यः धन्यवादम् अकरोत्। सामाजिक अन्तर्जाल माध्यमेन प्रकाशिते सन्देशे तेन उक्तं यत् एतत् स्वागतं स्मरणीयम्। सः अवदत् यत् स्वदेशात् दूरस्थितः अपि भारतीयः प्रवासिनः जनाः भारतेन सह स्वीयं दृढं सम्बन्धं निरन्तरं धारयन्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्लोवाकिया यात्रा भारत स्लोवाकिया सम्बन्धान् सुदृढीकरिष्यति। स्लोवाकिया देशे भारतस्य राजदूतः अपूर्वचन्द्रः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः स्लोवाकिया यात्रा उभयोः देशयोः सहयोगस्य नूतनान् मार्गान् उद्घाटयिष्यति। ब्रातिस्लावा नगरे आकाशवाण्याः वार्ताहरेण सह वार्तालापे असौ अवदत् यत् एषा यात्रा विशेषतः आर्थिक व्यापारिक सम्बन्धानां सुदृढीकरणे महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वहिष्यति। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थायाः अध्यक्षः डॉक्टर वी नारायणनः सूचितवान् यत् इसरो तथा परमाणु ऊर्जा विभागः चंद्र अवतरण ज्ञानस्य विकासार्थं संयुक्त रूपेण कार्यं कुरुतः। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थायाः अध्यक्षः डॉक्टर वी नारायणनः अवदत् यत् इसरो परमाणु ऊर्जा विभागेन सह मिलित्वा अत्यंत शीतल परिस्थितेः संरक्षणार्थं उन्नत कृत्रिम तापन प्रणालीं च विकसितुं कार्यं कुरुतः। बेंगलुरु नगरे आयोजिते CSIR RISE सम्मेलने सः उक्तवान् यत् सौर ऊर्जया संचालितं चन्द्रयानत्रयस्य लैंडर विक्रम अवतरणयानं चन्द्रे केवलं 14 दिनानि यावत् कार्यम् अकरोत्। अवतरणयानं निर्मातुं प्रयासान् करिष्यतः इदानीम् उभौ विभागौ, येन इदानीं 200 दिनपर्यन्तं चन्द्रे कार्यं भवेत्। कृत्रिम तापन प्रणाल्या युक्तम् एतत् ज्ञानं चन्द्रस्य कठोर जलवायु परिस्थितिषु अपि कार्यं करिष्यति तथा च भविष्ये दीर्घकालिक चन्द्र अन्वेषण अभियानेषु अपि सहायकं भविष्यति। केन्द्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हिमाचल प्रदेशे डाक विभागस्य ड्रोन आधारित डाक परिवहन सेवायाः शुभारंभम् अकरोत्। एषा सेवा मंडी प्रधान डाक कार्यालयात् रेहरधारा शाखा डाक कार्यालय पर्यन्तं प्रवृत्ता। अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः उक्तवान् यत् ईरान देशेन सह युद्ध समापन सम्बद्धस्य सन्धिपत्रे अद्य हस्ताक्षरं सम्भाव्यते। तेन उक्तं यत् अस्य सन्धेः लक्ष्यं ईरानस्य परमाणु अस्त्रेभ्यः दूरीकरणमस्ति। एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट श्रृंखलाया

0: प्रथम स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तानदलं पराजितम्। हिमाचल प्रदेशस्य धर्मशाला नगरे प्रथम एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन अफगानिस्तानदलं सप्त क्रीडक पुरस्सरं पराजितम् इति वार्ताः।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 7 बजे हैं।

प्रस्तुत है पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में। इस गीत को हम ले रहे हैं फिल्म मधुमती से। गीत शैलेंद्र का है और संगीत सलिल चौधरी का।

मोहम्मद रफी की आवाज में आपने सुना आबरू फिल्म का ये गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले के स्वर में फिल्म काजल से। गीत को लिखा है साहिर ने, संगीत है रवि का।

आशा भोसले की आवाज में आपने सुना काजल फिल्म का ये गीत। आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिस्तरे की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में आपने सुना ससुराल फिल्म का ये गीत, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत अब यहीं पर समाप्त होता है।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 7:18 होने वाले हैं। आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
2: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
3: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
2: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
3: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
2: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।

0: दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, नए भारत के रूप में दुनिया में लोहा मनवा रहा हमारा देश। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को 319 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वाराणसी में विज्ञान भारती के सातवें राष्ट्रीय अधिवेशन में हुए शामिल। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 21 जून को प्रदेश के सभी अमृत सरोवरों पर सामूहिक योग कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। कहा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ये आयोजन। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न जिलों में हुए संवाद कार्यक्रम। प्रदेश के मंत्रियों ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज भारत नए भारत के रूप में दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी पीढ़ी नए भारत का गठन कर रही है। मुख्यमंत्री कल आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 39 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपील की कि नए भारत के साथ नए उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ना होगा।
3: हमारा देश भारत एक नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर अपना लोहा मना रहा है। 2014 के पहले का भारत कैसा भारत था, आप में से हर व्यक्ति जानता है। वह भारत जो अपनी पहचान के लिए तब मोहताज था, लेकिन आज मैं कह सकता हूं नए भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन हमारी पीढ़ी देख रही है।
2: मुख्यमंत्री ने कल ही गोरखपुर में 295 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 319 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यही नया भारत है जो गरीबों का कल्याण करता है और सुरक्षा का बेहतर माहौल भी देता है। उन्होंने क्षेत्र में बनी सड़क परियोजनाओं की प्रगति को लेकर कहा कि कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी।
3: मेरा मानना है कनेक्टिविटी जितनी फास्ट होगी प्रगति उतनी तेज गति से आगे बढ़ेगी, और प्रगति होगी नौजवान को बाहर प्लान नहीं करना पड़ेगा, अपने क्षेत्र में काम मिलेगा, वहीं पे नौकरी मिलेगी, वहीं रोजगार मिलेगा। और यही तो ये डबल इंजन सरकार के कार्यों की पूरे देश के अंदर एक नई पहचान है।
2: कल सुबह मुख्यमंत्री वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित विज्ञान भारती के सातवें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। दो दिवसीय अधिवेशन के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने विज्ञान, कृषि, एमएसएमई, पर्यावरण संरक्षण और भारतीय ज्ञान परंपरा पर विस्तार से अपने विचार रखे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने बीएचयू के चिकित्सा विज्ञान संस्थान परिसर में लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन 200 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक नेशनल सेंटर फॉर एजिंग का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी अमृत सरोवर स्थलों पर व्यापक जन भागीदारी के साथ सामूहिक योग के विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों पर आयोजित होने वाले योग दिवस कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कल अमरोहा में मंडलीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने पेंशन, शादी अनुदान सहित अन्य योजनाओं की शिकायतों, लंबित प्रकरण, नए आवेदनों की स्थिति और विभागीय कार्यों के क्रियान्वयन की जानकारी ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को

0: प्रिंट करना और ऑफलाइन पेन और पेपर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रदेश के मंत्री संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वाराणसी में प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मीडिया से संवाद किया। गोरखपुर में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सेवा, सुशासन और जल कल्याण को शासन का मूल आधार बनाया। इसी क्रम में जनपद हापुड़ में प्रदेश के वन पर्यावरण मंत्री KP मलिक ने पत्रकारों से वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बिना भेदभाव के जन कल्याण के कार्य किए हैं।
1: आयुष्मान कार्ड की व्यवस्था, रोटी, कपड़ा, मकान, इनकी आम आदमी को जरूरत होती है, उस सारी व्यवस्था भारत सरकार उत्तर प्रदेश ने की है। और पक्षपात के पहले निष्पक्षता के साथ ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम करने का काम किया।
0: वहीं डुमरियागंज से भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि देश ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है।
2: प्रधानमंत्री का 12 साल का कार्यकाल रिफॉर्म का था, परफॉर्म का था, ट्रांसफॉर्म का था, और जिसका परिणाम है कि पिछले 12 सालों में भारत के 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे थे वो उससे ऊपर आए।
0: गाजीपुर में जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की एक रिपोर्ट।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, मां कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुराने परंपराओं को नया जीवन मिला है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा आज आयोजित होने वाली राजकीय इंटर कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों की संभावित भीड़ को ध्यान में रखते हुए व्यापक एवं विशेष व्यवस्था की गई है। परीक्षार्थियों एवं अन्य यात्रियों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यकता पड़ने पर एग्जाम स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी किया जाएगा। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान कल असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। इस दुर्घटना में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमा राम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम की मृत्यु हो गई है। दुर्घटनाग्रस्त विमान नियमित उड़ान पर था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विमान हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। वहीं आज से प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में 955 करोड़ रुपए की 39 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, नए भारत के रूप में दुनिया में लोहा मनवा रहा हमारा देश। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर को 319 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। वाराणसी में विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हुए शामिल। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 21 जून को प्रदेश के सभी अमृत सरोवरों पर सामूहिक योग कार्यक्रम करने के दिए निर्देश। कहा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ये आयोजन। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न जिलों में हुए संवाद कार्यक्रम, प्रदेश के मंत्रियों ने

0: सरकार की उपलब्धियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक
2: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

कार्यक्रम ब्रजभाद्री सुनबे बारे हमारे सभी श्रोताओं को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भैयाओं, आप सभी को स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम ब्रजमाधुरी में। और आज आपके संग में हूँ ज्योति शर्मा। और आज रविवार है, वेके काजे आप सबको सुनने को मिलेंगे अपने पसंदीदा लोकगीत। तो हमारे सभी श्रोता संदेश लगातार भेज रहे हैं और आज आपकी ब्रज लोक लहरी में आपके पसंद के लोकगीतन को बस तार छिड़वे वारो है। और जो नए श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं उनसे जरूर बताएंगे कि वो हमें 94-122-25-575 जा नंबर पे व्हाट्सएप कर सके हैं अपने फरमाइशी लोकगीत के साथ। तो प्रारंभ करें कार्यक्रम को और पढ़ें आपके संदेशन को। तो सबसे पहले जो संदेश आयो है, ब्रिज रेडियो श्रोता मित्र ग्राम उस पार ते यादराम वीरेंद्र कुमार भोली मनीष कान्हा कोमल लड्डू वैष्णवी प्रीति पिंकी ओमवती और इनके संगी साथी इनको। इनके बाद पढ़े हैं हमारे जे हैं मित्र रेडियो श्रोता मित्र हैं और जे हैं लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान ते हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी श्रीमती मनोहर बाई बागरी प्रभुलाल बागरी। और जे संदेश आयो है तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श बेगम राबिया शेख शेख रहीम मुन्ना दानिश आसिफ शेख। भैया जे सुनना चाह रहे हैं आप संग के संग आप सब के संग ही संग लोकगीत को। तो जे हमारे श्रोता कौन है अगले, जे हैं श्रीराधा सिटी गोवर्धन रोड मथुरा ते शारदा प्रसाद प्रजापति लक्ष्मी प्रजापति बेबी व्योमिनी पुरंजय प्रजापति कविता गोविंद सिमरन और पूरो प्रजापति परिवार। जे हमारे श्रोता हैं पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर ते राजेश सावले पाटिल राजदीप राजेश राशि राजेश श्रीमती शीतल राजेश। और जी हमारे श्रोता हैं रायसेन मध्य प्रदेश ते योगेश्वर सिंह भारतीय भैरव प्रताप सिंह भारतीय लोकेंद्र प्रताप सिंह भारतीय प्रेमबाई भारतीय गोपाल भारतीय कृष्णा भारतीय अमिता भारतीय श्रीमती ललिताबाई भारतीय न्यू पैसिफिक

फिक अपार्टमेंट बावड़िया कला भोपाल से डॉक्टर शेखावत सिंह भारती, डॉक्टर गीता शमनानी, दुर्गा भारती, अमिता भारती, ग्राम पोस्ट बाया तहसील रेहटी जिला सीहोर मध्य प्रदेश से अमर सिंह भारती, महेंद्र भारती, सचिन भारती और कोशाबाई भारतीय, आप सबके संदेशन पे अब सुनवावे हैं आपकी अपनी पसंद। और जय गीते, जय लोक।

जो सुख दिखे ब्रजमंडल में। अब भाई आपने सुने जयालोक गीत को रामेश्वर दयाल शर्मा के स्वर में, और जो वास्तविकता है कि सभी ब्रजवासी जो कह उठे हैं कि जो सुख जा ब्रजमंडल में है वो कतौ कहीं ना है। और जय भाव के पीछे हमारे ठाकुर जी रीत जाए हैं और ब्रजवासी इनके अधीन है जाए हैं। और अब आपके फरमाइश जा फरमाइश को भेजी है जे हैं जसवंत नगर जिला इटावा से गोकर्ण सिंह, दिव्या नैतिक, संगीता, विपिन कुमार, प्रीति कुमारी और इनके समस्त परिजन जे हैं। बिरला नगर ग्वालियर ते प्रदीप भैया और भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, दत्रेंगी ते इनके संग हमारे जा कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। राजू लवानिया, पंकज कुमार, अर्पण जी, खिमेश जी, पंचम लाल चतुर्वेदी, खंडौली, आगरा आते हैं। और अब पढ़ें जे संदेश जी हैं बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, मुरली, नीरा वर्मा, उमेश, प्रमिला बंछोर, राजेंद्र, माधव वर्मा जे पाती जे संदेश आयो है ग्राम पंचायत बठेना, पाटन जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ ते। और जाके बाद हमारे श्रोता जुड़ गए हैं पीपर लोड सरगांव, छत्तीसगढ़ ते, दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा जिनके संग ही संग चकला बाजार समाना शहर पंजाब के हमारे श्रोता जुड़े हैं पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, हंसमुख लाल खुशदिल, पप्पू मह खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुशदिल, संजीव कुमार जिंदल और समस्त खुशदिल परिवार को जो संदेश हमने पढ़े हो। और जाके बाद पढ़ें अगलो संदेशों को जे हैं दत्रेंगी ते भाटापारा छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। तो पूरी करें आपकी फरमाइश आपको सुनवावें अलका राजेश के स्वर में गाए हुए जा लोकगीत को।

अलका राजेश के सुर में आपने सुनो जा लोकगीत को, और अब पढ़ें आपके अगले संदेशन को। जी संदेश आयो है पटेल नगर मलोट ते डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया गुड्डू को। इनके संग हमारे जुड़ गए हैं श्रोता मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, ओमकार ओम कुमार सुरलकर, और जे श्रोता हैं उमा शर्मा, उर्मिला शर्मा, नितिन, सचिन, राधिका, निधि, धौली प्याऊ मथुरा ते, और ग्राम फरांसी जिला हिसार ते जे संदेशो है राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी को। और जे श्रोता हैं सोनई थोक सुमेरा जिला मथुरा ते विष्णु कुमार, विपिन कुमार, रेणु कुमारी, निशा कुमारी और इनके संगी साथी। जे श्रोता हैं हमारे जुड़े भाई देवशंकर तामूरिया, अजय देव तामूरिया और इनके सगरे संगी साथी। इनके संग जुड़े भाई हैं तुषार देव तामूरिया, डॉली बेबी, पूजा तामूरिया, राधिका और प्रभा देवी तामूरिया। पोता इनका मास्टर अल कबीर भी जा कार्यक्रम के संग जुड़े भाई हैं जे सबरे, और बालोद छत्तीसगढ़ से जिन्होंने अपने संदेश को भेजो है, तो आपको सुनवावे हैं अगले लोकगीत को। जा स्वर दीनो है कमलेश लता आर्या ने।

मोहे पीहर ते लेवाए लायो नंदी को भैया। अब ये आपने सुनो जा लोकगीत को कमलेश लता आर्या के स्वर में, और अब पढ़े आपके संदेशन को। और जे संदेश आयो है नरेश चतुर्वेदी, दीप्ति चतुर्वेदी, स्मृति चतुर्वेदी, रामपति चतुर्वेदी को अशोका टावर डेम्पियर नगर मथुरा ते। जे हमारे श्रोता हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश ते, तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा, और इनके बाद पढ़ें अगले फरमाइश को। अगले जी हैं सत्यवीर सिंह, मीरा सिंह, राजेश, आरती, रजनीश, राखी, तुलसी, राहुल, वर्षिता, गर्वित, कनिष्का, गौतम, जरीपुरा, हाथरस्ते। जी हमारे श्रोता हैं रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिंपल देवांगन, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से। और जे श्रोता हैं मामूलवाड़ी महाराष्ट्र ते, सोपान तायड़े, वसंतराव भोजने, पी एस नहावकर, तुषार करांगले, और सादाबाद जिला हाथरस ते मुरारी लाल, राजकुमारी, जितेंद्र कुमार, निशा जे जुड़े भए हैं हमारे संग कार्यक्रम में। और भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा को संदेश हमने पढ़ दियो है। जाके बाद हमारे श्रोता हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ ते, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, और जी हमारे श्रोता हैं बस स्टैंड के पास बजरिया छतरपुर बुंदेलखंड ते, बहादुर चक्रवर्ती, नंद किशोर चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, छोटा भांजा, बड़ा भांजा, छोटी दीदी, बड़ी दीदी, दीपक भाई, अवधेश भाई, श्रीमती रागिनी, कमल राजू, ऑपरेटर चंचल, ऑपरेटर राजेंद्र भाई, और इनके समस्त संगी साथी। जी हमारे श्रोता जुड़ गए हैं हम संग डोंगरगढ़ ग्राम राज नांदगांव छत्तीसगढ़ ते, राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का, तन्मय गजभिये। और अगले श्रोता हैं हमारे नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, पलारी छत्तीसगढ़ ते। और जे श्रोता हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलावेन शाह, राजेंद्र जी शाह, पद्मा टॉकीज, नेपानगर, मध्य प्रदेश से। तो आप सबकी पसंद पे सुनवावे हैं स्वामी राम स्वरूप शर्मा के स्वर में जा लोकगीत को कौन पावे या को पार।

हमारे श्रोता लगातार हमें संदेश भेज रहे हैं अपना नाम शामिल करवे के तई। तो जे हमारे श्रोता जुड़े हैं कार्यक्रम ते, राधे श्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा, ग्राम हाणी खेड़ा, जिला सिरसा ते, और जे श्रोता हैं ग्राम जाखोद राजस्थान से, शंभु दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा, इनके संग ही संग जी हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं शार्दुल शहर राजस्थान से, राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ और उनके सगरे संगी साथी, जे श्रोता हैं अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नेते कुमारी, बेनीपट्टी, मधुबनी, बिहार से, जी हमारे श्रोता हैं रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान ते, लाल गिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी।

ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं हमारे श्रोता मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। जी हमारे श्रोता हैं हुकुम सिंह, धनगर डिवाइन होटल औरंगाबाद मथुरा, आचार्य नगर मथुरा थे। और अब कार्यक्रम को समय शेष नए हैं तो बस स्वामी रामस्वरूप शर्मा जी की जय भजन के संग कार्यक्रम को यहीं पे देवे हैं विराम। स्वीकार कीजिए हमारी जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर

0: और gov.in. हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
2: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और CSIR ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
5: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
6: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
7: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
4: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
8: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई

0: के अंतिम संस्कार की विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ते ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates event in Nice today.

हैरी आनंद, सुनिधि चौहान और साथियों के स्वर में सुनिए बिच्छू फिल्म का ये गीत, शब्द रचना समीर की, संगीत आनंद राज आनंद का।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत केके की आवाज में। इस गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है प्रीतम का, और इस गीत को हम ले रहे हैं फिल्म भूल भुलैया से।

0: अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से समय हमारे श्रोता सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। आइए आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और साथियों की आवाज में सिर्फ तुम फिल्म का ये गीत।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सब

0: जगजीत सिंह की आवाज़ में आपने सुनी है गज़ल सरफरोश फिल्म से। निदा फाजली की रचना को संगीतबद्ध किया जतिन ललित ने।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि का।

श्रेय घोषाल और तुषार जोशी की आवाज़ में आपने सुना ब्रह्मास्त्र फिल्म का ये गीत। और अब कार्यक्रम का ये अंतिम गीत अंकित तिवारी के स्वर में। इस गीत को हमने लिया है फिल्म एक विलन से। गीत को लिखा है मनोज मंतशिर ने, संगीत अंकित तिवारी का।

अंकित तिवारी की गए हुए एक विलन फिल्म केसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे प्रज्ञा शर्मा के गाए हुए कुछ भजन। आइए सुनते हैं ये पहली रचना। सूरदास जी की इस रचना को स्वर दे रही हैं प्रज्ञा शर्मा।

निस दिन बरसत नैन हमारे। अभी आपने सूरदास जी की इस रचना को सुना प्रज्ञा शर्मा के स्वर में, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत, अगला भजन प्रज्ञा शर्मा की आवाज में, रचना सूरदास जी की है।

0: प्रज्ञा शर्मा के स्वर में आपने सुनी सूरदास जी की रचना। कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: श्रोताओं, आपको याद दिला दें, आज शाम 6:30 से हम आपको सुनवाएंगे आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत बनाम पाकिस्तान के मध्य एजबेस्टन बर्मिंघम से मैच का आंखों देखा हाल मैच की समाप्ति तक। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9:15 को होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सामयिक चर्चा। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिले हैं। सरकार के प्रयास विजन से न केवल दुश्मनों के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान चलाए गए, बल्कि सेना का मनोबल बढ़ाने और रक्षा क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि रक्षा निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, स्वदेशी हथियारों के निर्माण को गति मिली है। वहीं उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट भी शुरू हुए हैं। आज भारत आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन, आधुनिक सैनिक क्षमता और वैश्विक रणनीतिक प्रभाव के नए दौर में कैसे आगे बढ़ रहा है, पिछले 12 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में वो कौन सी उपलब्धियां हैं जिन्होंने देश को चुनौतियों से मुकाबले के लिए मजबूत किया है, आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं कर्नल आरपी सिंह जी, सेवानिवृत्त हैं, और वायुसेना के पूर्व अधिकारी अनुपम तिवारी जी। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद
0: आरपी सिंह जी। सर, आपसे पहले जानना चाहेंगे, अगर 2014 से 2026 तक के रक्षा क्षेत्र के बदलावों को देखें तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? सैन्य आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय सुरक्षा की सोच को कैसे आगे बढ़ाया गया?
1: पहले के कई युद्धों का परिणाम कारगिल में देखने को मिला था, कारगिल वॉर में, जहां पे माउंटेन वॉरफेयर में भारत की सेनाएं सक्सेसफुल हुई थी और काफी कुछ वो 62 के बाद वहां पे माउंटेन्स में सक्सेस मिली थी। इसी तरह से उसमें उसी समय पे जो आपके स्वामीनाथ कमीशन हुआ था, उस समय के बाद से जो परिवर्तन आया था, अब वो देखने को मिला इसी पिछले 12 सालों में। सबसे बड़ी सफलता इसमें ये मिली है कि भारत की सेनाओं तीनों अंगों का काफी कुछ विकास हुआ, माउंटेन्स एरिया तक भी जाकर के उनके आधुनिकीकरण का हुआ है। इसी तरह से सी चेंजेस में, मतलब समुद्र के किनारे भी ये काफी चेंजेस हुए। भारतीय सेनाएं पूरे बॉर्डर के ऊपर जाने में सक्षम है, रोड और उनकी तकनीकों का विकास हुआ है। भारत का जो सबसे पहला उस समय सोचा गया था कि तीनों सेनाओं के नीचे एक थिएटर कमांड बने, उसकी भी एक पहल की गई इसी दौरान में। उसके अलावा जो है, आपने सुना होगा कि उससे पहले से काफी चल रहा था कि इन सर्विस क्लास के अंदर वन रैंक वन ओपीआई, वो इसी दौरान में इस बात को भी 2017 के अंदर लाया गया, जिससे कि तीनों सेनाओं के जो भी ऑल रैंक्स थे उनके ऊपर ये बदलाव देखा गया। और उसके अलावा जो है, जनरल बिपिन रावत जो पहले सीडीएस भी नियुक्त हुए 2019 में, अभी तीसरे सीडीएस भी नियुक्त हो चुके हैं। और उसके अलावा जो है, ज्वाइंटनेस कमांड जो बनने की उम्मीद की जा रही कि इस नियर फ्यूचर के अंदर थिएटर कमांड्स भी आ जाएंगे। इसमें एक चीज और की गई है कि भारत को जो पहले हम लोग जितने भी अम्युनिशन हथियार इम्पोर्ट करते थे, चाहे रशिया से, चाहे अमेरिका से, चाहे इसराइल से या फ्रांस से, अब उसको हम आत्मनिर्भर बनने के उसमें आ गए हैं। और इसी दौरान में ये एक तरह से प्राइवेट सेक्टर को पूरी छूट दी गई है कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया दोनों के ऊपर कार्य हो। इसी में डिफेंस कॉरिडोर, दो डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए हैं, और ये जान के आपको बड़ी खुशी होगी कि इन डिफेंस कॉरिडोर में एक डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के अंदर है और इस उत्तर प्रदेश के अंदर 6 districts हैं। और उनका जो अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे तो अभी इनके प्रोडक्ट्स जो हैं, बल्कि हाल के जो ऑपरेशंस हुए हैं उसमें भी इस्तेमाल किए गए हैं। आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि आपके बगल में अमेठी के अंदर AK-203 जो बनाई जा रही है वो अब बाहर एक्सपोर्ट हो रही है, और भारतीय सेना के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी दी जा रही है, ब्रह्मोस मिसाइल्स भी बनाई जा रही। तो इस तरह से करके आप देखेंगे कि जो चेंजेस आए हैं एक तरह से आत्मनिर्भरता की पूर्ण रूप से हुआ है।
0: बिल्कुल सर। अनुपम सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सर ने जिक्र किया आत्मनिर्भर भारत की बात, रक्षा क्षेत्र में खासतौर पर और बड़े अंतर के साथ हम इसे महसूस कर रहे हैं। पहले दूसरे देशों पर निर्भरता थी, लेकिन आज आत्मनिर्भर भारत की बात रक्षा निर्यात के जरिए भी हो रही है। रक्षा क्षेत्र के लिए ये कितना जरूरी था? सरकार के प्रयासों में अब कितना अंतर आप देख रहे हैं जब हम मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड की भी बात कर रहे हैं?
2: शैलेंद्र जी, सर की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। देखें, रक्षा के ऊपर अक्सर बातें हुआ करती थी, लेकिन अभी बदला क्या है, हमको बदलाव समझना चाहिए। अभी नीतिगत बदलाव हुए, रक्षा निर्यात की नीति ही बदल दी गई है, और इसी नीति का फायदा है जो हम आज ये देख रहे हैं कि 2010-11 के आसपास जो हमारा 1500 करोड़ का जो निर्यात होता था रक्षा संसाधनों का, वो अब 24,000 करोड़ का हो गया है, यानी कि 16 गुना बढ़ोतरी हुई है पिछले एक दशक के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। साथ ही साथ आप ये भी देखें कि हमने आयात पर निर्भरता घटाई है, और ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है, वो भी इसी नीति की वजह से हुआ है। हमारा 70% तक रक्षा का सामग्री 2010-11-12 तक बाहर से आता था, यानी कि हमारी सेनाएं 3/4 तक विदेशी सामानों पर डिपेंड करती थी। अभी एक दशक के अंदर उसको घटा के 50% तक तो ला ही दिया गया है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज हम 49% आयातित सामान के ऊपर निर्भर है और बाकी हम खुद बना रहे हैं। भारत ने अब शुरुआत करी है, लेकिन शुरुआत में ही जब हम निर्यात

0: में 16 गुने का जंप देख रहे हैं, तो इससे एक हौसला बढ़ता है, इससे एक विश्वास बढ़ता है और इससे लगता है कि भविष्य अच्छा है। संशय नहीं है कि अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे 2047 तक अपनी रक्षा जरूरतों का अधिकांश भाग हम खुद पूरा करेंगे। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि एयरक्राफ्ट के इंजन, जैसे कुछ अत्याधुनिक सेंसर्स हैं, उनके ऊपर अभी काम होना बाकी है और उस पर थोड़ा अगर हम स्पीड अप करेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है वो बहुत जल्द साकार होती हुई दिखाई देगी।
1: आरपी सिंह सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत जो ये स्वदेशी हथियार मिल रहे हैं सेना को, इसकी वजह से जमीन पर कितना अंतर आया?
2: नहीं, देखिए, भारत की स्थिति आत्मनिर्भरता में इतनी अच्छी सक्षम हो रही है कि इसका तो पहला रिजल्ट मैंने देखा हाल में ही आप सिंदूर के अंदर, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल कितनी सक्सेसफुल थी और वो भारत में ही बनती है जबकि वो रशियन इक्विपमेंट है, लेकिन उसका जो है इतना यहाँ पे एक तरह से मारक क्षमता हो गई है कि वो हर जल थल नभ तीनों जगह से मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल्स है, जिसको इतने सक्सेसफुल हुआ कि उसके बाद पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े कि भाई ब्रह्मोस मिसाइल कहीं भी जाकर के कहीं भी मार सकती है। मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, आकाश में भारत का जो तेजस एयरक्राफ्ट जो है काफी सक्सेसफुल है और उसकी मारक क्षमता काफी डीप है, जो कि पाकिस्तान और चाइना तक काफी हुआ है इसलिए और सक्सेसफुल है। दूसरा, अभी जो है प्रचंड जो हैप्टर बनाया गया, हेलीकॉप्टर बनाया गया, वो भी जो है एक तरह से अटैक हैप्टर्स है, जिसको कि इसमें पूरे के पूरे इस्तेमाल करने में एक तरह से है। तो इस एयरोनॉटिक्स के अंदर एचएल के साथ मिलकर के, एयरबस के साथ मिलकर के भारत की जो आधुनिकीकरण में मेक इन इंडिया जो चल रहा है वो आगे काफी बढ़ता जा रहा, और इसके अंदर जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी हिस्सेदारी ले रही हैं, वो भी आगे आ रहे हैं, चाहे रिलायंस का हो, चाहे अडानी का हो, चाहे टाटा का हो और चाहे इसमें आपका ये भारत फोर्स वाले हों, तो इससे जितनी प्राइवेट कंपनी है उसमें भी आए। इसी में भारत फोर्स ने क्या किया है, कल्याणी के 155 की आर्टिलरी गन जो एसपी गन्स हैं वो भी बनाने लगे हैं, जिसकी दूर की मारक की क्षमता एक्यूरेसी पूरी वो है। अभी इसी में मैंने देखा एक ट्रायल हो रहा है कि जिससे होम ऑन टारगेट को लेकर के डिजिटली वो लॉक इन करके फायरिंग करने के, इसी में अम्निशन के ऊपर भी जा रहे हैं काफी उसे, जिससे अम्निशन को टारगेट को होम ऑन करने की है, मिसाइल्स भी बनाने लगे हैं, और इसके अलावा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, साइंस टेक्नोलॉजी है, एआई की टेक्नोलॉजी है और वो सब चीज भी आगे बढ़ रही है। तो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके आगे फील्ड में आगे बढ़ती जा रही,
1: हम हमले के लिए तो नए हथियार, डिफेंस सिस्टम भी हमारा मजबूत हुआ है जिस तरह से हमने देखा।
2: जी हाँ, डिफेंस सिस्टम भी इसके साथ जो ऑफेंस सिस्टम बनता है तो हमें डिफेंस भी बनाना पड़ता है। अगर कोई फायरिंग अगर आ रहा है, कोई अटैक आ रहा है, तो हमें आरटी गन्स चाहिए दूर तक के मारक क्षमता के लिए, उसके लिए आरटी गन्स बना रहे हैं। दूसरी चीज, जितने भी हम ड्रोन बना रहे हैं तो हम इसके लिए एंटी ड्रोन भी हमको मैकेनिज्म बनानी है, जितने भी हमको जैसे आपके S-400 जो रशियन बना रहे हैं उसको रोकने के लिए, तो वो भी हम उसके चार्ज तो हमने उसके ऑलरेडी बैटरीज खड़ा कर चुके हैं, वो इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम धीरे धीरे उनके साथ डील ये हो रही कि हम भारत के अंदर भी बनाना शुरू कर दें। जो हमने इनके साथ जो इसके जो एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए जो भी हमने रडार्स बनाने शुरू किए भारत के अंदर बनाए, जो हमारे सैटेलाइट्स हैं जो इसरो के जो कि ऑलरेडी एयर में है, तो वो पहले ही बता देते हैं कि जो आपके जो एनिमी के एयरक्राफ्ट जो भी है उनको पकड़ने की क्षमता रखते हैं और उनको डाइवर्ट करने की क्षमता रखते हैं। इस तरह से करके भारत के जितने भी आधुनिकीकरण हो रहे हैं और भारत के अंदर ही बन रहे हैं, उसको पूरे के पूरे सक्सेसफुल हो रहे हैं और वो आगे के आगे चलते जा रहे हैं। विदेशी कंपनियां जो हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको बताया ब्रह्मोस हो गया, चाहे आपके AK-203 हो गया, आपके इसराइल्स की कंपनी हो गई जो स्नाइपर राइफल्स बना रहे हैं या कॉम्बैट वेपन्स बना रहे हैं, उनकी जो है भारत के अंदर जो मैन्युफैक्चरर्स हो रहे हैं उसी को जो है भारत पूरा बना रहा है, अपने मेक इन इंडिया बना रहा है।
1: जैसे पहले सर था कि टेक्निक ट्रांसफर की बात होती थी, अब मैन्युफैक्चरिंग की भी बात,
2: अब मैन्युफैक्चरिंग ही हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही साथ यहाँ पे होने, जबकि अभी रफेल का भी यही हुआ है, क्यों रफेल भी अब इंडिया के अंदर बनेगा, उसकी पूरी की पूरी सामान जो है इंडिया में बनेगी, बस मेन कंपोनेंट उनका होगा। तो इस तरह से धीरे धीरे प्रोग्रेसिव जा रही है और हो सकता है कि भारत जो है 2047 तक एक पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होकर के बल्कि एक वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज हो जाएंगी, जो कि भारत देश हो जाएगा जो दूसरों को देगा। तो इसमें आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया में यही फर्क है कि भारत के अंदर दोनों चीजें बन रही है।
1: बिल्कुल सर, रक्षा क्षेत्र में पिछले 12 साल में सरकार की उपलब्धियों और आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण और सैन्य सुधारों पर बात करने के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू वेरी मच।
3: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल में रक्षा क्षेत्र में किए गए प्रयासों से आत्मनिर्भरता और बढ़ती सैन्य शक्ति पर खास चर्चा। वार्ताकार थे शैलेंद्र शर्मा।
4: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम

0: आबोहवा, वस्तुओं का पुनः उपयोग और पर्यावरण, इस विषय पर आलेख और वाचन है डॉक्टर मीरा गुप्ता का। आइए सुने कार्यक्रम आबोहवा।
1: अगर हमें प्रगति करनी है तो ऐसे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है उत्पन्न होंगे ही, इसलिए हमें ऐसे उपाय सोचने हैं जिनसे व्यर्थ पदार्थ जो आम तौर पर हानिकारक भी होते हैं ठिकाने लग जाएं और उनसे किसी को भी हानि ना पहुंचे। ये उपाय हैं व्यर्थ समझकर फेंक दिए जाने वाले पदार्थों का पुनः उपयोग यानी रिसाइकलिंग करना। इससे पदार्थों को फेंकने की समस्या ही नहीं रहेगी और हमारा पर्यावरण भी संरक्षित होगा। इस संदर्भ में मैं जापान का उदाहरण देना चाहूंगी। कचरे और बेकार पदार्थों को पुनः इस्तेमाल करने की क्षमता से जापान के मोटर उद्योग को बहुत बढ़ावा मिला है। वह अमेरिका का बेकार लोहा सस्ते दाम पर खरीद लेता है जिसका उपयोग कार उद्योग में किया जाता है। वर्तमान मानव अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न खनिजों का दोहन कर रहा है। यदि इनका अनियोजित शोषण होता रहा तो भविष्य में इनकी पूर्ति संभव नहीं होगी। खनिजों, धातुओं से बने उपकरण एवं अन्य वस्तुओं का प्रयोग सीमित समय तक होता है, किंतु उसमें प्रयुक्त धातु को पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। धातु को बार बार प्रयोग में लाकर उसका अधिकतम उपयोग संभव है। ऐसा करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। ब्रिटेन में 50% इस्पात धातु छीलन यानी स्क्रैप से प्राप्त किया जाता है। हमारे देश की बात करें तो यहाँ गोबर से उपले बनाकर ईंधन के रूप में प्रयोग होता है जिससे वायु प्रदूषित होती है। इस गोबर से गोबर गैस या बायोगैस बनाई जा सकती है। बायोगैस ऊर्जा का स्वच्छ और कभी भी समाप्त न होने वाला स्रोत है जिसका अभी तक भारत में पूरी तरह दोहन नहीं किया जा रहा है। बायोगैस को हम पशुओं के मलमूत्र, कृषि अपशिष्ट पदार्थ, जलीय जीव मास जैसे शैवाल, जलकुंभी, नगरों का गंदा जल, लकड़ी का बुरादा अथवा छाल, औद्योगिक इकाइयों का अपशिष्ट आदि को जैव रासायनिक क्रियाओं से रिसाइकिल करके प्राप्त कर सकते हैं। बायोगैस का प्रयोग करके लकड़ी, कोयला और पेट्रोलियम पदार्थों की भारी बचत की जा सकती है तथा पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। उद्योगों के व्यर्थ पदार्थों को पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। देश की अनेक प्रयोगशालाओं में अध्ययन एवं अनुसंधान किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर कोयले की बारीक धूल यानी फ्लाई ऐश को ही लीजिए। ताप बिजली घरों और कोयला जलाने वाले अन्य उद्योगों के निकट इनके बड़े बड़े ढेर लगे रहते हैं। अब इससे सीमेंट और अनेक प्रकार की भवन निर्माण सामग्री, ग्लास वूल आदि तैयार किए जा रहे हैं। उससे बनी ईंटें अधिक मजबूत और टिकाऊ होती हैं। आवश्यकता है उनके प्रयोग को बढ़ावा देने की। वर्तमान समय में हम अपने घरों की बात करें तो स्नान गृहों को फ्लश करने तथा बगीचों की सिंचाई करने में स्वच्छ जल का प्रयोग किया जाता है जिससे बड़ी मात्रा में स्वच्छ जल का अपव्यय होता है। इस दुरुपयोग को रोकने के लिए रिसाइकल्ड वाटर का प्रयोग किया जा सकता है। हम व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रयास कर सकते हैं। किचन में निकलने वाले बायो वेस्ट को रिसाइकल करके वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं जिससे पर्यावरण संरक्षित होगा और किचन गार्डन के लिए खाद भी मिल जाएगी। घर में प्लास्टिक का अनुपयोगी सामान एवं कचरा अलग छांट कर रखें जिसे बाद में रिसाइकल किया जा सकेगा। दिल्ली में कंजर्व इंडिया नामक एनजीओ प्लास्टिक की पन्नियों, कूड़ा प्लास्टिक से फोल्डर, फाइल, बैग, प्लास्टिक की चादर इत्यादि बनाकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने के साथ साथ कचरा बीनने वाले तथा कबाड़ियों को सम्मानजनक वेतन दे रहा है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे मूल काम अपनी व्यवस्था एवं जीवन शैली में परिवर्तन लाना है, उसे संयमित कर प्रकृति के साथ सहयोग पर आधारित करना है। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें अंग्रेजी के 3 R पर काम करना होगा। रिड्यूस यानी प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम उपयोग करें एवं उनके वैकल्पिक स्रोत तलाशे जाएं। रीयूज यानी फिर से इस्तेमाल, जैसे कोई उपकरण में मामूली खराबी है तो उसे ठीक करवाकर पुनः प्रयोग में लाएं। रिसाइकलिंग जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे, ये 3 R पर्यावरण संरक्षण के लिए मूल मंत्र है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है बच्चों का कार्यक्रम बाल गोपाल। आज के कार्यक्रम को लेकर आ रही हैं फरहा खान।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
2: हमारे स्टूडियो में आज आप सभी का स्वागत है और हर बार की तरह इस बार भी बाल गोपाल कार्यक्रम में आप प्यारे प्यारे बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं नई नई बातें, जानकारियाँ और ढेर सारा मनोरंजन। बच्चों, मैं हूँ आपके साथ फरहा। तो चलिए करते हैं आपसे कुछ मस्ती भरी बातें। बच्चों, आज आप हमें क्या सुनाने वाले हैं?
3: दीदी, आज हम आपको पोयम, कविता, गीत, चुटकुले ये सब सुनाने वाले हैं।
2: अच्छा, तो सबसे पहले कौन आएगा?
4: दीदी,
2: नाम बताइए अपना।
3: देव।
2: क्या सुनाने वाले हो?
3: पोयम।
2: सुनाइए।
3: आसमान की सौंपाई ऊपर से नीचे उतरी, नए नए उपहार सजाकर सपनों का संसार बनाकर खेल खिलौने और मिठाई सब बच्चों को देने आई। दीदी, मेरे को एक और पोयम सुनानी है।
2: चलिए सुनाइए।
3: रे निराला हिम्मत वाला, लम्बी लम्बी मूंछ वाला, तेज नुकीले दांतों वाला, सबका दिल दहलाने वाला, करो करो तो देर, भागो भागो आया से। दीदी, अब मैं सुनाऊंगी।
2: अपना नाम बताइए।
3: गुनगुन।
2: क्या सुनाओगी गुनगुन?
3: एक पोयम।
2: सुनाइए।
3: गर्मी आई, गर्मी आई, घर घर में है पंखा, लाई सबको पास बुलाता, पंखा मीठी नींद सुलाता, पंखा ठंडी हवा खिलाता, पंखा गर्मी दूर भगाता, पंखा। दीदी, एक और सुनाऊंगी मैं।
2: अभी एक और सुनाएंगी आप?
3: जी दीदी।
2: सुनाइए।
3: डब्बू जी की तोंद बड़ी, चीटी उस पर एक चढ़ी, शोर मचाया डब्बू राम, चीटी नीचे गिरी धड़ाम, फूट गया चीटी का सर, डब्बू भाग गया डरकर।
2: बच्चों, हमारे स्टूडियो में बहुत छोटी सी बच्ची आई हुई है, अपना नाम बताइए। आपका नाम क्या है?
5: लवी।
2: क्या सुनाओगी? सुनाइए।
5: लालाजी ने केला खाया, केला खाकर मुंह फिर खाया, लालाजी के लिए थला मुंह से निकला।
2: तो चलिए, अब हमें सुनाने के लिए कौन आने वाला है?
6: हम।
2: अरे, अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका?
6: मेरा नाम है फहद।
2: फहद, आप हमें क्या सुनाने वाले हैं?
6: मैं आपको सुनाऊंगा पोयम।
2: चलिए सुनाइए।
6: जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइन नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा।
2: कौन आने वाला है? क्या नाम है आपका?
7: मोनिका।
2: क्या सुनाने वाली हो?
7: कविता।
2: सुनाइए।
7: देश

0: देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें, हम भी कुछ देना सीखें।
1: अब कौन आने वाला है हमें सुनाने के लिए? क्या
2: आशीष
1: सुनाने वाले हैं?
2: कविता।
1: सुनाइए।
2: गर्मी में खाने को मैंने फिर से सेब निकाला, गिरते गिरते बचा हाथ से झट से मैंने उसे संभाला। बाहर आते ही गर्मी से हुआ बहुत बेहाल, बोलो भैया नहीं उतारो मेरी नाजुक खाल। घबराहट से सिसक पड़ा वह, लगा कांपने थर थर, आंसू से भर रोया बेचारा हुआ पसीने से तर।
1: और अब कौन आने वाला है?
3: सोनाक्षी।
1: सोनाक्षी क्या सुनाओगी आप हमें?
3: कविता।
1: सुनाइए।

0: मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, सारा पानी पी जाएगी।
1: चलिए बच्चों, मस्ती तो बहुत हो गई, अब करते हैं कुछ काम की बातें। बच्चों, मोबाइल फोन का उपयोग आज के समय में एक आम बात हो गई है। जहां यह बच्चों के विकास और पढ़ाई में मदद करता है, वहीं इसके अत्यधिक इस्तेमाल के कई गंभीर नुकसान भी हैं। बच्चों के लिए मोबाइल फोन आज के दौर में सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि उनके विकास और शिक्षा के लिए एक बेहद शक्तिशाली टूल भी बन चुका है। यदि इसका सही और नियंत्रित तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो बच्चों के लिए मोबाइल के कई बेहतरीन

इस्तेमाल किया जाए तो बच्चों के लिए मोबाइल के कई बेहतरीन फायदे हो सकते हैं। किताबों की तुलना में बच्चे वीडियो या एनिमेशन के जरिए किसी भी कठिन विषय जैसे साइंस या मैथ के कॉन्सेप्ट को बहुत जल्दी और आसानी से समझ जाते हैं। गूगल, यूट्यूब, खान एकेडमी और विभिन्न क्विज एप्स के माध्यम से बच्चे खेल खेल में सामान्य ज्ञान, कोडिंग, भाषा और गणित सीख सकते हैं। स्कूल के प्रोजेक्ट या असाइनमेंट के लिए रिसर्च करने में मोबाइल एक बेहतरीन और तुरंत जानकारी देने वाला साधन भी है। यदि बच्चा घर से बाहर स्कूल वैन में या किसी ट्यूशन क्लास में है तो किसी भी आपात स्थिति में वह तुरंत अपने माता पिता को कॉल या मैसेज करके बता सकता है। मोबाइल में मौजूद GPS की मदद से माता पिता हर समय यह ट्रैक कर सकते हैं कि उनका बच्चा सुरक्षित स्थान पर है या नहीं। आज की दुनिया डिजिटल है। बचपन से ही मोबाइल का सही इस्तेमाल सीखने से बच्चे टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनते हैं, जो आगे चलकर उनके करियर में बहुत काम आता है। मोबाइल के जरिए बच्चे फोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल पेंटिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार या कीबोर्ड बजाना और कागज की कला जैसी नई हॉबीज सीख सकते हैं। मोबाइल में कई ऐसे माइंड गेम्स जैसे चेस, सुडोको, पहेलियां और लॉजिक गेम्स होते हैं, जिन्हें खेलने से बच्चों की दिमागी कसरत होती है। इससे उनकी निर्णय लेने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता बढ़ती है। मोबाइल के माध्यम से बच्चे घर बैठे ही दुनिया भर की संस्कृतियों, अंतरिक्ष, इतिहास और भूगोल के बारे में जान सकते हैं। इससे उनका नजरिया व्यापक होता है और सामान्य ज्ञान मजबूत होता है। जो माता पिता नौकरी करते हैं और दिन भर घर से बाहर रहते हैं, वे वीडियो कॉल के जरिए अपने बच्चों से जुड़े रह सकते हैं। इससे बच्चों में अकेलेपन की भावना नहीं आती और वे सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन बच्चों, मोबाइल के ये सभी फायदे तभी मिल सकते हैं जब बच्चे इसका इस्तेमाल सीमित समय जैसे दिन में 1 या 2 घंटे के लिए और माता पिता की देख रेख में करें। और बच्चों, मोबाइल के फायदे होने के साथ साथ इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे मोबाइल फोन का अत्यधिक और गलत इस्तेमाल आपके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। यदि बच्चे दिन का एक बड़ा हिस्सा स्क्रीन के सामने बिताते हैं तो उन्हें कुछ नुकसान झेलने पड़ सकते हैं, जैसे आँखों की कमजोरी। लगातार मोबाइल की स्क्रीन देखने से बच्चों की आँखों में सूखापन, जलन, पानी आना और कम उम्र में ही चश्मा लगने की नौबत आ जाती है। मोबाइल में खोए रहने के कारण बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते। शारीरिक मेहनत न होने से उनमें मोटापा, सुस्ती और डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। घंटों गर्दन झुकाकर मोबाइल देखने से बच्चों के पोस्चर पर बुरा असर पड़ता है, जिससे उनकी गर्दन, कंधों और रीढ़ की हड्डी में स्थायी दर्द शुरू हो जाता है। मोबाइल से निकलने वाली नीली रोशनी दिमाग में नींद लाने वाले हार्मोन मेलाटोनिन को बनने से रोकती है। इससे बच्चों की नींद पूरी नहीं होती और वे अगले दिन स्कूल में थका हुआ महसूस करते हैं। मोबाइल की लत के कारण बच्चे अक्सर जिद्दी हो जाते हैं। जब उनसे फोन वापस लिया जाता है तो वे बहुत ज्यादा गुस्सा या हिंसक व्यवहार करने लगते हैं। मोबाइल पर रील्स, शॉर्ट्स या तेज गेम्स देखने से बच्चों का अटेंशन स्पैन यानी ध्यान लगाने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। उनका मन पढ़ाई या किसी और काम में नहीं टिकता। खासकर छोटे बच्चों, 1 से 3 साल के बच्चों को मोबाइल देने से वे देर से बोलना सीखते हैं, क्योंकि मोबाइल केवल एक तरफा संवाद करता है, जिससे वे असल जिंदगी में बातचीत करना नहीं सीख पाते। मोबाइल की वजह से बच्चे अपने माता पिता, भाई बहन या दोस्तों से बात करना कम कर देते हैं। वे अपनी ही एक आभासी दुनिया में खो जाते हैं। समाज में कैसे उठना बैठना है, लोगों से कैसा व्यवहार करना है, बच्चे यह सब नहीं सीख पाते, जिससे आगे चलकर वे नए माहौल में ढलने में असहज महसूस करते हैं।
इंटरनेट पर निगरानी ना रखने से बच्चे अनजाने में हिंसा यानी

0: एडल्ट कंटेंट या गाली गलौज वाली वीडियो देख लेते हैं जो उनके कोमल दिमाग को समय से पहले मैच्योर या विकृत बना देते हैं। कुछ ऑनलाइन गेम्स बच्चों को इस कदर फंसा लेते हैं कि वे उनके लिए पैसे चुराने या खुद को नुकसान पहुंचाने तक की हद तक चले जाते हैं। तो इस नुकसान से बचने के लिए एकमात्र तरीका यही है कि बच्चों को स्क्रीन टाइम फिक्स जैसे रोज 1 घंटा दिया जाए और मोबाइल की जगह किताबें पढ़ने या मैदानी खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बच्चों, मोबाइल खुद में बुरा नहीं है, बल्कि इसका गलत और अत्यधिक इस्तेमाल इसे नुकसानदेह बनाता है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम यानी मोबाइल देखने का समय तय करें और उनके द्वारा देखी जाने वाली चीजों पर नजर रखें। तो चलिए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं स्वस्थ भोजन और स्वास्थ्य के बारे में। बच्चों, कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए सबसे आवश्यक है स्वस्थ और संतुलित भोजन। स्वस्थ भोजन वह होता है जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मौजूद हों। इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और पानी शामिल हैं। ये सभी तत्व हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर के विकास में सहायता करते हैं और हमें विभिन्न बीमारियों से बचाते हैं। फल, हरे पत्तेदार सब्जियां, दालें, दूध, दही, अंडे, मेवे और साबुत अनाज स्वस्थ भोजन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनका नियमित सेवन करने से हमारा शरीर मजबूत बनता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। उदाहरण के लिए, दूध और दही हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, जबकि फल और सब्जियां शरीर को आवश्यक विटामिन और खनिज प्रदान करती हैं। आज के समय में लोग स्वाद के पीछे भागते हुए अपने स्वास्थ्य की अनदेखी कर रहे हैं। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक जैसे जंक फूड बच्चों और युवाओं में बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। ये खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट तो लगते हैं, लेकिन इनमें पोषक तत्वों की कमी होती है। इनके अधिक सेवन से मोटापा, हृदय रोग और अन्य कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। स्वस्थ भोजन के साथ साथ भोजन करने की सही आदतें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें समय पर भोजन करना चाहिए, भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए और अधिक खाने से बचना चाहिए। भोजन से पहले और बाद में स्वच्छता का ध्यान रखना भी आवश्यक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए केवल पौष्टिक भोजन ही पर्याप्त नहीं है। नियमित व्यायाम, योग, पर्याप्त नींद और मानसिक शांति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि हम संतुलित भोजन के साथ नियमित व्यायाम करें तो हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। बच्चों और विद्यार्थियों के लिए स्वस्थ भोजन का विशेष महत्व है। पौष्टिक भोजन से उनकी याददाश्त बढ़ती है, पढ़ाई में मन लगता है और शारीरिक विकास भी सही ढंग से होता है। जो बच्चे स्वस्थ भोजन करते हैं वे अधिक सक्रिय और ऊर्जावान रहते हैं। हमें अपने परिवार और समाज में भी स्वस्थ भोजन के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। यदि हर व्यक्ति अपने खान पान पर ध्यान दे तो कई बीमारियों से बचा जा सकता है। यदि हम अपने जीवन में संतुलित और पौष्टिक भोजन को अपनाएं तो हम न केवल बीमारियों से दूर रहेंगे बल्कि एक सुखी, सफल और स्वस्थ जीवन भी जी सकेंगे। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ अब हम आपको सुनवाते हैं एक वार्ता। वार्ता है, ऋतुएं क्यों बदलती हैं। वार्ताकार हैं विनीता शर्मा।
1: बच्चों, मैं आपको बता रही हूँ कि ऋतुएं आखिर कैसे बदलती हैं, क्योंकि प्राचीन काल से ही मनुष्य के मन में ऋतु परिवर्तन को समझने की उत्सुकता रही है। आपको भी ये लगता होगा कि कैसे कभी पसीने वाली गर्मी तो कभी ठिठुरने वाली सर्दी। आपके मन में आने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको वैज्ञानिक तरीके से स्पष्ट करती हूँ। आपने कभी ये सोचा है कि गर्मियों में दिन लंबे क्यों हो जाते हैं और रातें क्यों छोटी हो जाती हैं। उसी प्रकार से सर्दियों में बिल्कुल विपरीत होता है, दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी होती हैं। बच्चों, यह तो आप जानते हैं कि पृथ्वी

0: सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ अपनी धुरी पर भी घूमती है। धुरी पर घूमने के कारण रात और दिन होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.50 डिग्री झुकी हुई है। इसी झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। अपने अक्ष पर झुकी हुई पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो एक ही स्थान पर अलग अलग समय में सूर्य की किरणों का झुकाव अलग अलग होता है। भिन्न भिन्न झुकाव के कारण सूर्य की किरणों के ताप का वितरण भी बदलता रहता है। इसी वितरण के कारण समय के साथ उस स्थान पर गर्मी अथवा सर्दी की ऋतु बन जाती है। बच्चों, यदि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ पोल में सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं तो उस स्थान पर गर्मी होगी और दक्षिणी गोलार्ध साउथ पोल में सर्दी होगी। लगभग 6 महीने के बाद पृथ्वी की स्थिति बिल्कुल उल्टी हो जाती है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ पोल में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और सर्दी हो जाती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध साउथ पोल में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और गर्मी हो जाती है। इस प्रकार ऋतुएं बनती हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि हमारी धरती का आकार संतरे की भांति है, अर्थात धरती की सतह गोलाई लिए हुए है। इस कारण धरती के अलग अलग भागों पर सूरज की किरणें अलग अलग झुकाव से पड़ती हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण के स्थानों में सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं। ध्रुवों पर तो ये किरणें बहुत ही तिरछी पड़ती हैं, किंतु भूमध्य रेखा इक्वेटर पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इस कारण भूमध्य रेखा वाले स्थानों पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है और भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण के स्थानों पर सूरज की किरणें तिरछी पड़ने से गर्मी कम पड़ती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, गर्मी कम हो जाती है और ठंड अधिक होती जाती है। तो बच्चों, अब प्रश्न आता है कि सूरज की किरणें तिरछी पड़ने से ऊष्मीय प्रभाव कम क्यों होता है। इसका कारण है कि जब सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो उन्हें वायुमंडल से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। वायुमंडल में उपस्थित धूल, वाष्प और अन्य पदार्थों के कण सूरज की किरणों में निहित ऊष्मा ऊर्जा का बहुत सा भाग अवशोषित एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अतः किरणों को धरती तक पहुंचने में जितनी अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी उतनी ही अधिक ऊर्जा उसमें से वायुमंडल द्वारा अवशोषित हो जाती है। इसलिए तिरछी किरणें पड़ने वाले क्षेत्रों में कम गर्मी पहुँच जाती है। इसके अतिरिक्त किसी स्थान का गर्म या ठंडा होना उस स्थान पर पानी के वितरण, जमीन की समुद्र तल से ऊंचाई और दूरी आदि पर भी निर्भर करता है। बच्चों, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा इक्वेटर में ठीक ऊपर होता है। इन दिनों पृथ्वी के हर स्थान पर 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात होती है। 21 मार्च से लेकर 21 जून तक सूर्य भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ता है। इसका परिणाम यह होता है कि उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ पोल में गर्मी पड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी। इस अवधि में उत्तरी गोलार्ध में रात छोटी हो जाती है और दिन लंबे हो जाते हैं। 21 जून से लेकर 22 दिसंबर तक सूर्य कर्क रेखा में मकर रेखा की ओर बढ़ता है। 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर तथा 22 सितंबर को मकर रेखा पर 23.5 डिग्री के कोण पर होता है। परिणाम यह होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे होते जाते हैं तथा रातें लंबी। 22 सितंबर के बाद सूर्य की गति फिर उत्तरायण होती है और 21 मार्च को पुनः भूमध्य रेखा के ऊपर पहुंच जाता है। इस दौरान रातें छोटी और दिन की लंबाई बढ़नी शुरू हो जाती है। इस प्रकार से यह निष्कर्ष निकलता है बच्चों कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना और अपने अक्ष पर झुके हुए होकर घूमना ही ऋतु परिवर्तन और रात दिन बड़े छोटे होने का कारण है। तो बच्चों, इस वार्ता से आपको यह जरूर स्पष्ट हुआ होगा कि आखिर गर्मी और सर्दी, ये दो ऋतुएं कैसे परिवर्तित होती हैं और क्यों दिन बड़े और रातें छोटी और रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं।
1: प्यारे बच्चों, अभी आपने सुनी ये वार्ता। वार्ता थी ऋतुएं क्यों बदलती हैं। वार्ताकार थी विनीता शर्मा। इसी के साथ अब हम आपको सुनवाते हैं एक गीत।

0: प्यारे बच्चों, अभी आपने ये गीत सुना और अब घड़ी इशारा कर रही है आपसे विदा लेने का और हमारे कार्यक्रम का पता बताने का। तो जाते जाते बता देते हैं कार्यक्रम का पता। हमारा पता है बाल गोपाल कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मथुरा, पिन 281003। बच्चों जय हिंद।
1: जय।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल गोपाल। कार्यक्रम पेश किया फरहा खान ने।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत ये बातचीत। विकसित भारत जी राम जी 2025 अधिनियम के संदर्भ में डॉक्टर तेजपाल सिंह से बातचीत कर रहे हैं ओपी सिंह। आइए सुने ये विशेष कार्यक्रम।
2: श्रोताओं, भारत को गांव का देश कहा जाता है और भारत के विकास की जब हम बात करते हैं तो गांधी जी ने एक बार कहा था कि भारत के विकास का जो रास्ता है वो खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। यानी एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो कृषि आधारित है, और भारतीय संस्कृति में कहा भी गया है कि भारतीयता को अगर जानना है तो ये ऋषि और कृषि के माध्यम से ही इसको हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। बहुत लंबे समय से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, वहाँ रोजगार पैदा करने के लिए

0: मनरेगा के नाम से योजना चल रही थी, लेकिन आज की सरकार ने एक नए अधिनियम के माध्यम से इस कार्यक्रम में परिवर्तन किए हैं और इस नई योजना का नाम जो रखा गया है वो है विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन अधिनियम 2025। इस योजना को लाने में क्यों जरूरत पड़ी, मनरेगा को बदलने में क्यों जरूरत पड़ी और इससे क्या कुछ परिवर्तन विकसित भारत की संकल्पना जो माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि 2047 में विकसित भारत के रूप में हम जाने जाएं, पहचाने जाएं, तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर तेजपाल सिंह साहब हैं, आप प्राचार्य हैं और अर्थशास्त्र के जानने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं और ये जानना चाहता हूं अपने श्रोताओं की तरफ से कि ये जो आजीविका मिशन विकसित भारत करके सरकार लेके आई है, जिसको बीबी राम जी संक्षेप में हम कह रहे हैं, तो बताइए थोड़ा सा इस अधिनियम की जो खासियत है वो क्या है और ये अधिनियम वास्तव में है क्या?
1: ये जो अधिनियम है
0: जी,
1: ये मनरेगा 2005
0: जी,
1: और इसमें मनरेगा भी नहीं कहेंगे, पहले 2005 में जब विधेयक पास हुआ इसका नाम नरेगा था,
0: नरेगा था,
1: और उसके पश्चात 2009 में इस नरेगा योजना में महात्मा गांधी का नाम जोड़ करके इसे मनरेगा नाम दिया गया था। उसी का एक उसमें सुधार करते हुए वर्तमान सरकार योजना उसी योजना को लेकर आई है जिसका नाम रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 कहा गया है। ये जो अधिनियम है ये विकसित भारत तो जी राम जी अधिनियम 2025 20 वर्ष पुराने मनरेगा का एक बड़ा बदलाव है। यह विकसित भारत 2047 के साथ जुड़ा एक आधुनिक वैधानिक संरचना स्थापित करता है जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए 125 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है, जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हों। इस अधिनियम का जो उद्देश्य है वह मुख्यतः चार प्राथमिकता वाले कार्य क्षेत्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और स्थायी ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का निर्माण करना है
0: जी,
1: जिसमें जल संबंधी कार्यों के माध्यम से जल सुरक्षा के कार्य होते हैं, जिनमें लगभग 68,000 जलाशय स्थापित किए जा चुके हैं। इसमें ही प्रमुख ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में आप विभिन्न प्रकार के रोड, संपर्क मार्ग और विभिन्न प्रकार के कार्य
0: जो निर्माण कार्य
1: हैं
0: गांव की जरूरत के साथ,
1: गांव की जरूरत के अवस्था के अनुसार, उन सबको इसमें सम्मिलित किया गया है। इसमें मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी विशेष कार्य जो होते हैं, जैसे बाढ़ का कार्य हो जाए या पानी का निकास करना है, इस तरीके से जो कार्य होते हैं वह भी इसमें सम्मिलित होते हैं
0: जी। तो अब जैसे आपने कहा कि इसमें कुछ ऐसे बिंदुओं को, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और ग्रामीण जरूरतों को निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। इसमें पानी की बहुत बड़ी समस्या आने वाले समय में, तो जलाशय निर्माण है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आजीविका पैदा करनी है और विशेष परिस्थितियों में जो जरूरत है उस तरह के कार्य, ये कार्य तो क्या मनरेगा से में भी होते थे, तो फिर ये भिन्न कैसे रहा? इसमें इसकी तुलना अगर हम करें तो क्या कुछ जी, ऐसा जी। है जिसमें कहा जा सकता है कि नहीं, ये वाली चीजें थोड़ा सा अब बेहतर हो जाएंगी इसमें?
1: देखिए, जो ये अधिनियम लाए हैं, ये अधिनियम

0: मनरेगा की तुलना में एक बड़ा रूप जिसका कहेंगे हम विकास का प्रतिनिधित्व करता है, जो रोजगार, पारदर्शिता, योजना और जवाबदेही को बढ़ाते हुए हमारा जो संरचनात्मक क्षेत्र में सुधार करता है। जो इसमें सुधार की जब हम बात करते हैं कि मनरेगा की तुलना में जब मनरेगा था तो इसमें ये विधेयक लाने की क्या अवस्था थी, उसमें मैं आपको इंगित कर देना चाहता हूं कि इसके अंदर जो मनरेगा के अंदर 100 दिनों की रोजगार की गारंटी थी, इसमें रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर के 125 दिन तक कर दी गई है, जिससे ग्रामीण परिवारों को उनकी उच्च आय और सुरक्षा मिलेगी, उनकी आर्थिक दशा में सुधार होगा। इसमें मनरेगा कार्यों को एक मजबूत राष्ट्रीय रणनीति के बिना कई श्रेणियों में विभाजित किया गया। नया अधिनियम स्थायी संपत्ति सुनिश्चित करने वाले कार्यों पर केंद्रित है, जो सीधे जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका से संबंधित निर्माण और जलवायु अनुकूलन का समर्थन करते हैं।
1: मतलब आपका कहना यह है कि ये इसमें जो कार्य किए जाएंगे वो थोड़ा स्थायी टाइप के होंगे, ऐसा नहीं कि हर साल काम हो रहे हैं फिर वो खराब हो गए फिर वो हो गए। तो इसमें एक योजना का, तो उसमें पैसा अगर लगे तो गांव के विकास में भले गांव का ये वाला हिस्सा हो या ये वाला काम हो, लेकिन वो थोड़ा स्थायित्व वाला हो।
0: बिल्कुल,
1: तो
0: आप
1: इस पर थोड़ा सा जब योजना बनेगी, उसकी निगरानी होगी, मूल्यांकन होगा, तो वहां एक स्थायी विकास हो, ऐसा इस अधिनियम में सोचा गया है।
0: हाँ,
1: जी
0: इस अधिनियम में यह सोचा गया है कि ये इस अधिनियम में आप ये देखेंगे कि जो मनरेगा में स्टेट का जो रेशियो था वो 25% था, और इस अधिनियम में 40% रेशियो बढ़ा करके कर दिया है,
1: जी
0: और राज्य सरकार की जब उसमें सहभागिता बढ़ती है तो राज्य सरकार को भी निगरानी करने की ज्यादा उसमें स्पष्टीकरण रहता है और उसकी जवाबदेही रहती है। इसी वजह से कि एक पारदर्शी और एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो निर्माण कार्य हो, जो भी कार्य हो, वो उसमें टिकाऊपन हो, उसमें निश्चित रूप से एक पारदर्शिता और एक अच्छा कार्य हो,
1: जी
0: तो इस बात का विशेष रूप से इसमें ध्यान रखा गया है।
1: जी तो
0: और
1: आपको क्या लगता है कि इस नई योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ होगा? क्योंकि जिन चीजों को लिया है निश्चित तौर पे वो गांव की और गांव के परिवेश की जरूरतों को पूरा करता है,
0: जी
1: चाहे वो पानी
0: बिल्कुल,
1: की।
0: आपका
1: जी
0: जो कहना है बिल्कुल सही बात है। इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को निश्चित रूप से लाभ होगा। क्यों? क्योंकि ये जो अधिनियम है ये आपकी आय में वृद्धि करेगा, और उस जब आय में वृद्धि होती है तो निश्चित रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती आती है। इसके साथ ही इस कार्य से जल संबंधी कार्य को प्राथमिकता दी जाती है इसके अंदर, जिसमें मिशन अमृत सरोवर योजना पहले से संचालित है,
1: संचालित है।
0: उसमें पहले ही 68,000 से अधिक जलाशयों का निर्माण इसके अंतर्गत किया जा चुका है,
1: जी
0: जो स्पष्ट रूप से जल और कृषि पर प्रभाव को प्रदर्शित करता है। जितना जलाशय बने हैं और जलाशयों का निर्माण हुआ है, इससे हमारा निश्चित रूप से भूजल का जो स्तर है
1: जी बिल्कुल
0: उसमें वृद्धि हुई है। हम देखते हैं कि भूजल का प्रयोग हम कर रहे हैं और वो जल का स्तर है वो नीचे निम्न नीचे की तरफ चला जा रहा है, और कहीं कहीं तो बहुत पानी की विकट स्थिति हो गई है। इन
1: बिल्कुल
0: सारी समस्याओं को निदान में ये बड़ा ही सहयोगी रहेगा।
1: मतलब जो बरसात में पानी है वो हमारे जलाशयों में इकट्ठा होगा,
0: जी
1: जलाशय खोदेंगे तो वहां भी मजदूरी में रोजगार सृजन होगा। तो एक तरफ चीजें बनेंगी, दूसरी तरफ रोजगार मिलेगा, तो पैसे का जो फ्लो है, जो इन्वॉल्वमेंट है, निश्चित तौर पे गांव की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। ये मतलब निष्कर्ष निकल रहा है उसमें। अब गांव में जैसे किसान रहते हैं या किसान और खेती पर आधारित कृषक मजदूर होते हैं, तो आपको क्या
0: जी
1: लगता है कि जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इसका लाभ होगा तो लाभ किसानों को भी होगा, फिर
0: जी
1: मजदूरों को भी होगा,
0: जी
1: तो ये बात
0: ये
1: भी।
0: एक फ्लैगशिप योजना है
1: हाँ
0: सेंट्रल
1: हाँ
0: गवर्नमेंट की, बहुत महत्वपूर्ण योजना है,
1: बहुत महत्वपूर्ण
0: और इस महत्वपूर्ण योजना से इसमें

0: किसानों को भी लाभ मिलेगा, इसमें जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी लाभ मिलेगा, और जो किसान जिनकी फसल की कटाई और बुवाई के समय श्रमिक नहीं मिल पाते थे,
1: जी।
0: और वो इस योजना के माध्यम से वो श्रमिक भी उपलब्ध होने में सहायता मिलेगी।
1: जी।
0: क्योंकि जो 60 दिन का जो इन्होंने ब्रेक दिया
1: हाँ
0: है,
1: हाँ
0: जो किसानों का कार्य कटाई का चलता है और समय मजदूर नहीं मिलते हैं, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने इसमें प्रोविजन कर दिया कि उन 60 दिनों में मनरेगा के कोई जो कार्य हैं जिसे हम जी राम जी कहते हैं
1: हाँ,
0: वो अब नहीं होंगे।
1: अब नहीं होंगे।
0: तो हम ये देखते हैं कि मनरेगा का जब काम बंद होने पर राज्य सघन जो कटाई और बुवाई के दौरान जो 60 दिनों तक की अवधि को अधिसूचित किया है, उसमें महत्वपूर्ण कृषि कार्यों के दौरान यह श्रमिक की कमी को दूर करता है और उन्हें गारंटीकृत मजदूरी कार्य स्थलों पर स्थानांतरित होने से रोकता है, क्योंकि जो मजदूर थे वो बाहर चले जाते थे। तो ऐसी स्थिति में स्थानीय किसानों को बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।
1: जी।
0: ये एक बहुत बड़ी
1: अब डॉक्टर,
0: समस्या है।
1: आप तो चूंकि अर्थशास्त्र के हैं, तो छोटी छोटी घटनाओं का, छोटी छोटी चीजों का, छोटे छोटे आंकड़ों का भी जीवन में असर पड़ता है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 125 दिन की का रोजगार तो सरकार ने सुनिश्चित कर दिया
0: जी
1: कि मिलेगा ही मिलेगा।
0: जी
1: जिनके पास रोजगार नहीं है, जो
0: जी
1: बेरोजगार हैं, तो 125 दिन का रोजगार तो गवर्नमेंट दे रही है।
0: जी
1: लगभग 60 दिन का रोजगार फसल में आदमी को मिल ही जाता है,
0: जी
1: जो उसमें रहते
0: जी
1: हैं, मतलब जो कटाई में, मड़ाई में और उनमें रहते हैं, तो उनके माध्यम से भी मिल जाता है। तो
0: जी
1: 185 दिन का रोजगार तो मिल गया, लगभग आधे वर्ष का तो हमें रोजगार मिल
0: मिल
1: गया
0: गया।
1: उसमें।
0: जी
1: और ये अभी शुरुआत है,
0: जी
1: एक सौ
0: जी
1: पच्चीस दिन तो हमने शुरुआत किया है
0: जी जी
1: इसमें।
0: जी
1: तो कल को ये और चीजें जब जरूरत होगी तो बढ़ेगी। तो गांव के क्षेत्र में जो रोजगार की एक समस्या थी, वो कहीं सरकार उसको एक आजीविका जैसे इसमें जोड़ा है, वो
0: जी
1: गारंटी वाली बात जोड़ी है इसमें,
0: जी
1: तो रोजगार सृजन को प्राथमिकता इसमें
0: जी
1: मिल रही है इसमें।
0: बिल्कुल मिल रही है।
1: जी
0: देखिए, इसमें आपने जो बताया कि 125 दिन का तो जो योजना के तहत
1: हाँ
0: निश्चित रूप से रोजगार मिलेगा, और उस 60 दिन की अवधि में जो फसली रोजगार जिसमें किसान जो
1: हाँ,
0: मजदूर है
1: एक
0: वो
1: आदमी
0: कार्य करना
1: हाँ
0: चाहता है,
1: कार्य करना चाहता है
0: और
1: तो
0: इवन उस जो जीराम जी अधिनियम के तहत वो काम नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसे फसल काट के समय में अपने पूरे साल के लिए एक अनाज एकत्रित कर लेता है, तो उसको जो उसको ये निश्चित होगा, तब ये कहते थे कि हमें मनरेगा में जाते तो वो नुकसान हो जाएगा, लेकिन नहीं
1: हाँ
0: हो।
1: हाँ हाँ
0: लेकिन अब जिनको
1: अब
0: 100%
1: वो
0: फायदा
1: सुरक्षित
0: है,
1: है, 125 दिन तो आपको सुरक्षित
0: वो
1: है।
0: तो 125 दिन
1: फसल के
0: सुरक्षित
1: टाइम
0: हैं।
1: पे आप व्यस्त हैं, तो आप अपना काम करिए।
0: बिल्कुल, वो
1: जी
0: तो 125 दिन सुरक्षित हैं, उनमें तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। 60 दिन का आपको ये कार्य मिल गया, और इसमें एक चीज और है, अगर 15 दिन तक लगातार अगर किसी मजदूर को काम नहीं मिलता है तो उसकी भरपाई के लिए उनके लिए व्यवस्था है। ये
1: जी
0: एक बहुत बड़ा इसमें एक फायदा है।
1: कि मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको नहीं मिल रहा तो फिर आपका अब कोई धनाधोरी नहीं है,
0: नहीं
1: कहीं
0: नहीं
1: कोई
0: ऐसा
1: इनकम
0: नहीं,
1: का वो नहीं है। तो एक एक तरह से सुनिश्चितता की तरफ हम बढ़ रहे हैं। जब हम विकसित भारत की संकल्पना
0: बिल्कुल
1: करते हैं,
0: बिल्कुल
1: तो वहां फिर शहरी क्षेत्र ही नहीं, और ये जो सर्विस आधारित क्षेत्र ही नहीं, हमें अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी देखना है, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए लोगों के रोजगार और उनके आजीविका को भी देखना है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम सरकार चाहती है कि अगले 25 सालों में, जब 47 में हम 2047 में 100 साल मनाएंगे आजादी के, तो वहां जो हमारा लक्ष्य है कि विकसित भारत हो, तो ये एक योजना, तो ये एक बहुत बड़ा कदम, वो एक बहुत बड़ा वो सिद्ध होगी।
0: निश्चित रूप से बहुत बड़ा कदम सिद्ध होगी। और जब हम विकसित भारत 2047 की जो कल्पना कर रहे हैं, उस कल्पना के अनुरूप हमारी योजनाओं में परिवर्तन करना पड़ेगा। ये एक अंत्योदय योजना जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस क्षेत्र में बड़ा काम किया है, जो अंतिम व्यक्ति मजदूर है उसका विकास कैसे हो, उस योजना को आधार बनाते हुए, देखिए जब तक देश का विकास की कल्पना

0: हम नहीं कर सकते जब तक कि हम अपने मजदूर बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाएंगे।
1: बिल्कुल,
0: जब व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध होगा तो निश्चित रूप से उसकी आर्थिक स्थिति में प्रगति होगी, आर्थिक दशा में सुधार होगा, उसके पास पैसा आएगा, और जब वो पैसा आएगा तो वो मार्केट में मुद्रा का प्रवाह होगा, और जब मुद्रा का प्रवाह होगा तो सभी लोगों की आर्थिक दशा में सुधार होता है, चाहे वो ठेली लगाने वाला हो, चाहे वो उद्योगपति हो, क्योंकि यहाँ आवश्यकताएं और डिमांड दोनों चीजें बढ़ती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो निश्चित रूप से विकास होता है। तो ये जो योजना लाई गई है ये निश्चित रूप से विकसित भारत 2047
1: योजनाओं में बदलाव जरूरी है, तो ये बदलाव का ही है कि भाई वो 2005 में कोई योजना लाई तो 20 साल में मूल्यांकन बनता है, और मूल्यांकन करने के बाद उसमें जो छोटी छोटी कमियां थी या छोटी छोटी जो रुकावटें थी उनको दूर करके एक बेहतर रूप स्वरूप में इस अधिनियम को हम लेकर के आए, जिसमें 125 दिन की तो कम से कम गारंटी है, और हमने 60 जोड़ के ये देखा कि लगभग आधे साल तो भाई रोजगार मिल ही गया, और बाकी फिर जब लगे रहेंगे तो और भी चीजें हैं, मौसम आधारित आपने बताया कि कुछ ऐसे समय आ जाते हैं वहां काम एडिशनल मिलेगा, ये तो कम से कम है कि इतना तो मिल ही गया, इसके एडिशनल और होगा, और शायद मुझे लगता है कि जब हम इस योजना पे आगे बढ़ेंगे कुछ कमियां और निकल के आएंगी तो उनमें भी सुधार होगा। तो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि एक बड़ा देश बड़ी आबादी गांव में रहती है तो उसके विकास के लिए सोचना बनता था, और वो इस माध्यम से गवर्नमेंट ने किया है।
0: नहीं नहीं, बिल्कुल सही किया है, सरकार ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है। ये सरकार की जो सोच है वो सोच हमारे देश के विकास के लिए, हमें विकसित भारत 2047 का विजन हमको आगे लेकर के चलना है। जब नरेगा 2005 में जब शुरुआत हुई थी तो तब की स्थिति परिस्थितियां अलग थी, अब देश का विकास बहुत हो गया, और उस योजना के तहत तो जो विभिन्न प्रकार की जो कमियां थी उन कमियों को भी इस योजना के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया गया है। उसमें विभिन्न प्रकार की कमियां थी कि जॉब कार्ड, नरेगा कार्ड और विभिन्न प्रकार की मशीनरी का इस्तेमाल हो जाता था, लेकिन इस योजना में इस तरीके से पूरा बाउंडेशन कर दिया गया है, और आधुनिक और एआई का प्रयोग करते हुए कि इसमें व्यक्ति को रोजगार मिले और उस रोजगार का फायदा आर्थिक विकास में हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हो, और जब तक ग्रामीण की अर्थव्यवस्था का विकास नहीं होगा तब तक हम देश के विकास की कल्पना नहीं कर सकते।
1: जी जी जी, तो श्रोता बंधुओं अभी हम चर्चा कर रहे थे विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन अधिनियम 2025, मनरेगा का बदला हुआ स्वरूप है, और इसमें संकल्पना यही है कि कम से कम ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी विकास हो, स्थायी कंस्ट्रक्शन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, कुछ जल संबंधी जो आजकल हर क्षेत्र में परेशानी आ रही है उसका स्थायी समाधान निकले, और रोजगार जो आज के समय की बड़ी समस्या है, बड़ा मुद्दा है, उसका समाधान भी हो, क्योंकि जब रोजगार मिलेगा तो बाकी सारी चीजें अपने आप सेटल हो जाती हैं, अपने आप नियमित रूप से होने लगती हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में भी रोजगार सृजन हेतु अपना योगदान देगा। डॉक्टर साहब कुछ चलते चलते और कहना चाहें इसमें, जो आपको ऐसा लग रहा हो कि इसमें श्रोताओं को बताने की आवश्यकता?
0: नहीं, मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि जो वर्तमान सरकार द्वारा वीवी जी राम जी जो अधिनियम लाया गया ये बहुत ही क्रांतिकारी अधिनियम है। इस अधिनियम से सिर्फ बेरोजगार को ही फायदा नहीं है, इस अधिनियम से किसानों को भी बहुत फायदा है, और जब किसान देश के विकास की धुरी है तो निश्चित रूप से इस योजना के माध्यम से हमारा विकसित भारत 2047 का सपना साकार होगा, उस साकार करने में इस योजना का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा।
1: जी जी, तो श्रोताओ आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, अब तो शुरू हो ही गई है, और जब ये कार्यक्रम आपके बीच आएंगे विशेषकर ग्रामीण अपने किसान भाइयों से, मजदूर भाइयों से, या जो उस क्षेत्र में रह रहे लोग हैं उनसे हम कहना चाहेंगे कि इस योजना को समझें, जुड़ें और जानें, और आप अधिकार पूर्वक जाकर के अपने प्रधान से मिल सकते हैं, जनप्रतिनिधियों से मिल सकते हैं कि ये जो बदली हुई वो है उसमें हमारे लिए किस तरह के कार्यक्रम हैं, तो निश्चित तौर पे उससे जुड़िए, लाभ उठाइए। डॉक्टर साहब आप आए,

विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आपने सुनी बातचीत विकसित भारत जयराम जी 2025 अधिनियम के संदर्भ में। डॉक्टर तेजपाल सिंह से बातचीत कर रहे थे ओपी सिंह। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: 90.
1: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 10:30 हुए हैं। पेश है फिल्म संगीत।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले के युगल स्वर में आपने सुना धर्मकांटा फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत था नौशाद का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म घर द्वार से।

शब्बीर कुमार अलका याग्निक और साथियों के स्वर में ये गीत है, जिसे लिखा है अनजान ने, संगीत चित्रगुप्त का, क्षमा कीजिए चित्रा गुप्ता का।

शबीर कुमार और अलका याग्निक के युगल सुरों में आपने सुना घर द्वार फिल्म का ये गीत। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त से। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मेरे हमदम मेरे दोस्त, इस फिल्म के गीत को आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले और किशोर कुमार के स्वरों में। इस गीत को हमने लिया है फिल्म लावारिस से। अनजान की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया कल्याण जी आनंद जी ने।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार को आपने सुना गुलामी फिल्म के इस गीत में। गीत को लिखा था गुलजार ने, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है।

0: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश है फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आज की प्रस्तुति देवराज कृष्ण दीक्षित की है।
1: हेलो हेलो हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिवादन नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। श्रोताओं आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ देवराज। जी हां श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, जिसमें हमारे श्रोता करते हैं फोन के माध्यम से अपने दिल की बात और हम सुनवाते हैं उनको उनकी पसंद का गाना। जी हां श्रोताओं, हम आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। हमारा टेलीफोन नंबर है 25 30 135। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 एसटीडी कोड लगाकर हमें फोन करें। और अब आइए आरंभ करते हैं आज का हेलो आकाशवाणी।
2: हेलो आकाशवाणी।
3: हेलो आकाशवाणी, नमस्ते सर।
2: नमस्ते, स्वागत आपका।
3: सर मैं गांव उस पार से वीरेंद्र बोल रहा हूँ, बिरजी रेडियो श्रोता मित्र।
2: वीरेंद्र जी क्या हाल चाल है?
3: बढ़िया है सर, आपका आशीर्वाद है। 84 की परिक्रमा चल रही है हमारे बिरजी में।
2: आप भी लगा रहे हैं क्या?
3: ना सर, हम तो ड्यूटी कर रहे हैं, हम तो गिरिराज जी की देखेंगे, गिरिराज जी की जाएंगे गोवर्धन।
2: जी जी, चलिए मन से ध्यान कर लीजिए ऊपर वाले का तो सब कुछ सफल है।
3: गाना सुनना है।
2: बताइए कौन सा गीत सुनवाए?
3: वृंदावन का कृष्ण कन्हैया। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सुखी आँखों का तारा।
2: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: ठीक है सर। सर जी मैं नाम लेना चाहता हूँ मित्रों का।
2: जी जी,
3: चौधरी महेंद्र सिंह जी है।

0: शारदा प्रजापति ली है और यादराम जी उस पार से, राजू लवानी खनौली आगरा से और काना मेंढर नगर से। सर
1: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी।
0: राधे राधे सर।
1: राधे राधे।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: दीक्षित जी नमस्कार।
0: नमस्कार
1: सर, आपका जाना पहचाना आप नियमित श्रोता ब्रज रेडियो श्रोता मित्र राजू लवानिया कंदौली से बोल रहा हूँ। दीक्षित जी
0: लवानिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। दीक्षित जी कैसी है हमारी हेलो आकाशवाणी टीम?
0: सभी लोग बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
1: हम भी ठीक हैं सर, और सुहाने सुहाने मौसम का लुत्फ लेते हुए आपको फोन लगा रहे थे, तो सौभाग्य है कि फोन लग गया है और आपसे बात हो रही है।
0: जी जी, बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया है।
1: बिल्कुल सर, बारिश से मौसम एकदम खुशगवार है इस समय तो, और अब तो वैसे भी बारिश का समय ही है। लगभग लगभग मॉनसून आने वाले कुछ दिनों में आने ही वाला है उत्तर प्रदेश में भी।
0: जी जी,
1: दोनों ही चीजें कह सकते हैं, मौसम मिला जुला है, मॉनसून के संकेत भी हैं।
0: बताइए लवानिया साहब, आज कौन सा गीत सुनेंगे?
1: सुहाने मौसम में सुहाना सा गीत है, फिल्म का नाम है संग्राम।
0: जी,
1: कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में है। होने लगी बरसात मगर जल रहे हैं हम।
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद दीक्षित जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश, एमपी से।
0: कैसे हैं हारून साहब?
1: बस बहुत अच्छे हैं, और आप कैसी हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। आपके यहाँ मौसम कैसा है?
1: मौसम अच्छा है, लेकिन गर्मी का तो बहुत बुरा हाल है।
0: जी जी, अभी बारिश शुरू नहीं हुई है।
1: हमारे घर बारिश नहीं हुई है, लेकिन बादल तो छाए हैं, लेकिन आज तो गर्मी की तो बहुत उमस है। सवेरे से 9 बजे से बादल हो गए हैं।
0: अच्छा, और
1: जी
0: परिवार में सब ठीक हैं आपके?
1: जी बस हमारे घर परिवार में सब अच्छे हैं।
0: बताइए, आज कौन सा गीत चुनकर लाए हैं?
1: फिल्म का नाम है गोविंद वाली है ना, खुददार, उसमें से कुछ भी चला देना।
0: लीजिए, सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद आपका।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: परम माननीय महोदय शादर सुप्रीम प्यार से नमस्कार।
0: नमस्कार, स्वागत है आज के कार्यक्रम में आपका।
1: जी हृदय से धन्यवाद। मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति सिद्धार्था सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश की आदरणीय दिशी साहब से वार्तालाप कर रहा हूँ आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से। मानवर आप कैसे हैं?
0: हम तो बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
1: जी मैं अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आप लोगों से वार्तालाप करके एक बेहद सुखद अनुभूत होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप सबकी शुभकामनाएं हमारे साथ में है।
0: एक सुखद अनुभूति हमारे ब्रजवासियों को भी हुई है क्योंकि हल्की फुल्की बारिश हो गई है।
1: जी जी निसंदेह हल्की फुल्की बारिश हुई, आंधी भी आई थी और मौसम आज के देखा जाए तो बहुत ही खूबसूरत सुहाना है
0: जी।
1: खिली खिली धूप है, मंद मंद शीतल पवन प्रवाहित हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है।
0: बताइए क्या सुनवाएं आपको प्रजापति जी।
1: मानवर आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है चांदनी
0: जी
1: और गीत के बोल है तेरे मेरे होठों पर मीठे मीठे गीत मितवा, आगे आगे चले हम पीछे पीछे गीत मितवा। आप अनुरोध करना चाहता हूँ।
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी हृदय से धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ करता हूँ सादर नमस्कार। राधे राधे
0: राधे राधे।

0: हेलो आकाशवाणी
1: सर, नमस्ते।
0: नमस्ते
1: सर, कैसे हो आप?
0: एकदम अच्छे हैं। आप कौन साहब बोल रहे हैं?
1: सर, मैं आपका ब्रज रेडियो श्रोता मित्र अशोक यादव बातें कर रहा हूँ, अड़िंग से। सर
0: जी, यादव जी स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: क्या कहेंगे
1: जी? सर कहेंगे तो यही कि अभी हाल ही के दिनों में 8 जून को हमारे आकाशवाणी, मतलब भारत देश की आकाशवाणी, इतना स्वर्णिम 90 वर्ष का सफर बड़े सुनहरे यादों के साथ व्यतीत किया। इसके लिए संपूर्ण आकाशवाणी परिवार और सभी आकाशवाणी केंद्र से जुड़े हुए लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। सर
0: आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आकाशवाणी ने अपने 90 वर्ष पूरे किए, इसके लिए आपको भी बधाई, क्योंकि ये हमारे जो श्रोता हैं, जो हमें सुनते हैं, उनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं था।
1: सर ये तो है ही है, लेकिन आकाशवाणी को संचालित करने वाले भी कर्मचारी, समस्त इंजीनियरों की भी इतनी मेहनत या इतना अथक प्रयास है कि आज मतलब डिजिटल युग में भी इसमें इसके श्रोता जुड़े हुए हैं और इसके प्रति लोगों का प्रेम कहीं भाव कहीं बढ़ता ही जा रहा है, और ईश्वर करे आकाशवाणी ऐसा ही निरंतर चलता रहे।
0: जी जी बिल्कुल, आप जैसे श्रोताओं का साथ रहा तो निरंतर ऊंचाइयां छुएगा ये आकाशवाणी। कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: जी सर, फिल्म का नाम है मासूम
0: जी,
1: और गाने के बोले छोटा बच्चा जान के हमसे ना टकराना रे।
0: लीजिए सुनवाते हैं आपकी फरमाइश, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सर, हृदय से आपका भी आभार हमारी कॉल शामिल करने के लिए।
0: नमस्कार।
1: थैंक यू सर, वेलकम।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। कार्यक्रम की प्रस्तुति देवराज कृष्ण दीक्षित की थी। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम के साथ आज मैं हूं आपकी आरजे मित्र चंद्रा खत्री। नमस्कार साथियों, गर्मी का मौसम तो है ही, कुछ फुहार जब पड़ जाए जमीन पर तो एहसास कुछ ठंडक का होने लगता है। और तो और साथियों, देव उठान एकादशी से लेकर देव शयन एकादशी यहाँ तक शादियों का सफर चलता रहता है। और जो लड़कियाँ होती हैं ना, उनके मन में न जाने कितने सवाल उठ रहे होते हैं, क्योंकि दुल्हन तो एक ही बार बनते हैं, मन में न जाने कितने सपने सजाए हुए होते हैं। तो उन सपनों को पूरा करने के लिए, साकार करने के लिए क्या करें, जैसे गर्मी का मौसम है, मेकअप करना है, दुल्हन वाला मेकअप, तो कहीं पसीने में ढह ना जाए ये मेकअप, क्योंकि फेरे होते हैं, गर्मी होती है। तो ऐसे में क्या सावधानी रखें जिससे हमारा चेहरा खूबसूरत लगे, क्योंकि माहौल तो है शादियों का।

जी हाँ साथियों, मन में कितने अच्छे अच्छे विचार आते हैं, लेकिन अगर मेकअप का सोचते हैं तो डर भी लगने लगता है। कोई नहीं, आज हम बात करेंगे खुद को तैयार करने की कि कैसे हम अपने मेकअप को करें और हम उसमें रेडी रहें। तो आओ जानते हैं कुछ टिप्स, जैसे अपनी सबसे पहले तो अपनी स्किन यानी चेहरे की स्किन को कैसे तैयार करना है। चेहरे की स्किन के लिए आप एक नाम है जिसे याद कर लीजिए, नाम है CTM, क्लींजिंग टॉनिक एंड मॉइस्चराइजिंग। बिल्कुल, सबसे पहले हमें अपने चेहरे की क्लींजिंग करनी होती है, यानी मेकअप करने से पहले अपने चेहरे को कैसे साफ करें। पहले तो फेस वॉश कर लें, उसके बाद में एक कॉटन लें, कॉटन पर क्लींजिंग मिल्क लगाएं और पूरे चेहरे पर लगाकर उसको धो लें। ऐसे करते हैं क्लींजिंग। इसके बाद आती है टोनिंग। टोनिंग कैसे करते हैं, टोनर लीजिए, टोनर को अपने फेस पर स्प्रे कर लीजिए। स्प्रे करने के बाद में बिल्कुल छोड़ दीजिए जब तक वो ड्राई नहीं होता है, और ड्राई होने तक उसको एकदम छोड़ के रखिए। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेप, वो होता है मॉइस्चराइजिंग का। तो आप मॉइस्चराइजर ले लीजिए।

0: ये कोई भी मॉइस्चराइजर ले लीजिए और उसको बिल्कुल अपने फेस पर लगा सकते हैं अगर आपका फेस जो है ड्राई है। गर्मी में सनस्क्रीन का यूज़ कीजिए, ठीक है। सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल ना भूलें, और पहले आप सनस्क्रीन लगा लें उसके 5 मिनट बाद तक रुके रहिए, जिससे कि अपनी स्किन जो है उसको एब्जॉर्ब कर ले। उसके बाद करेंगे मेकअप की तैयारी। कैसे करेंगे बिल्कुल सुनेंगे इस गीत के बाद।
1: हाँ जी बादशाह की देख रहे हो तुसी, चलो शुरू हो जाओ। 1 2 3

0: बिल्कुल सुनेंगे इस गीत के बाद।
1: हाँ जी बादशाह की देख रहे हो तुसी, चलो शुरू हो जाओ। 1 2 3

कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में आज का विषय लेकर आए हैं, गर्मियों के मौसम में अपना मेकअप कैसे करें। जी हाँ साथियों, कहते हैं ना कम ही बेहतर है, इस नियम को अपनाएं गर्मियों में पसीने और चिपचिपाहट से बचने के लिए। बिल्कुल साथियों, सबसे पहले तो एक प्राइमर लगाएं, बिल्कुल मैट फाइन प्राइमर जिसे कहते हैं। ये क्या करता है, आपके अपना पोर्स को बंद करता है, यानी जब पोर्स बंद हो जाएंगे तो पसीना आने से रुक जाएगा, जिससे कि हमारा मेकअप लंबे समय तक टिका रहता है। बिल्कुल, जैसे बहुत भारी फाउंडेशन होता है वो ना लगाएं, उसके बदले में ना मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे बीबी क्रीम या फिर स्किन टिंट। बिल्कुल, स्किन टिंट आप लगाकर देखिए कितना अच्छा एकदम एक्सफोलिएट करता है हमारी स्किन को। वाटर प्रूफ आई लाइनर लगाइए, मस्कारा लगाइए और अपने मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए सेटिंग पाउडर आता है, सेटिंग स्प्रे आता है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में। आप जाएंगे ना किसी शॉपिंग शॉप पर तो आपको सब कुछ बताएगा वो, लेकिन ब्रांडेड हो, अच्छी हो, विश्वसनीय हो, है ना। तो ऐसी शॉप पर जाए, क्योंकि कॉस्मेटिक आजकल बड़ा ही खतरनाक भी हो सकता है, इसीलिए कॉस्मेटिक की जानकारी लीजिए, उसके बाद एक अच्छे शॉपकीपर के पास जाइए, उसके बाद आप ये सब चीज़ें की एक ना लिस्ट बना लीजिए और ब्रांडेड आइटम लीजिए और देखिए फिर आपका चेहरा कितना खिलखिलाएगा भाई। जब मेहंदी लगाने आप बैठेंगे ना और जब एक गीत आएगा तो आप खुद डांस कर लेंगे, देखिएगा।

शादियां हों और ये गाना ना चले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस गाने के बिना शादियां बिल्कुल अधूरी होती हैं, बिल्कुल ना साथियों। तो बात चल रही है गर्मियों के मौसम में मेकअप की। हाँ, तो क्या होता है ना, गर्मियों में परफेक्ट और लंबे समय तक टिकने वाला यानी स्वीट प्रूफ मेकअप करने के लिए बहुत आसान आसान टिप्स हैं। सबसे पहली टिप्स तो मैं आपको ये देने वाली हूँ कि क्रीम ब्लश या फिर हाइलाइटर की जगह पाउडर प्रोडक्ट्स का यूज करें। क्यों? क्योंकि ये पसीने को सोख लेता है। चेहरे पर पसीना मुक्त और फ्रेश रखने के लिए ट्रांसुलेंट पाउडर आता है, जिसे कॉम्पैक्ट पाउडर भी कहते हैं। ये अपने आप में एक अच्छा खासा मेकअप का एक प्रोडक्ट रहता है और बहुत जब आप अपने चेहरे पर लगाएंगे ना, तो वाकई में कमाल की शाइनिंग आती है फेस पर। और अगर आपको फाउंडेशन लगाना है, अगर आपको लगता है कि ड्राई स्किन है, तो उससे क्या करें कि एक क्रीम ले लें, मॉइस्चराइजर ले लें, उसमें क्रीम को मिक्स कर लें फाउंडेशन को, और उसकी जगह पर लगा सकते हैं आप। और जैसा कि हमने कहा था कि फाउंडेशन बहुत हैवी फाउंडेशन नहीं लेना है, यानी बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, सीरम फाउंडेशन टाइप आते हैं ना, ये ही आपको लेना है। चेहरे पर जब डार्क सर्किल होते हैं तो उन दाग धब्बों को छुपाना है। कैसे छुपाएं दाग धब्बों को? तो एक कंसीलर उठाएं, कंसीलर लगा लें, और हाँ ध्यान रखें अपनी स्किन से मैच करता हुआ कंसीलर लें। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा ना मेकअप एक तो बहुत अच्छा लगता है, दूसरा क्या होता है कि गर्मी के मौसम में जो मेकअप है ना वो टिका भी रहता है। अपने प्रोडक्ट्स जो हमने यूज़ किए हैं चेहरे पर उनको ब्लेंड भी करना होता है। तो क्या करना है गर्मी के मौसम में स्पेशली, आप क्या कीजिएगा कि ब्लेंड करने के लिए ना एक ब्यूटी ब्लेंडर आता है, यानी कि स्पंज टाइप आता है, आप देखिएगा मार्केट में, तो उसको लीजिए, उसको ना गीला कर लीजिएगा। हाँ, गीला कर लीजिएगा, और उसको जब गीला कर लेंगे तो बिल्कुल एकदम इतना अच्छा वो आपके चेहरे पर प्रोडक्ट को हल्के हल्के जैसे आप लगाएंगे ना, उसको परत को एकदम मिक्स कर देगा, और जो मिक्सिंग होगी ना वो इतनी गजब की होगी कि कोई कह नहीं सकेगा कि आपने मेकअप किया है। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपका चेहरा है, ये नेचुरल चेहरा है आपका। जी बिल्कुल, तभी तो आपको कोई प्रपोज करेगा ये गीत गाकर।

बात जब मेकअप की हो रही है, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में, तो आप सोच रहे होंगे बस चेहरा ही चेहरा बात कर रहे हैं, चेहरे की बस. नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. अरे भाई अभी बताते हैं आपको कि हम आंखों का कैसे मेकअप करेंगे. बिल्कुल, गर्मियों के मौसम में क्या होता है ना, आंखों पर जो मेकअप होता है वो फैल जाता है. कई बार हमने देखा है जैसे आई शेडो लगाया तो वो फैल गया, और मिक्सिंग करते हैं तो बिल्कुल ही मर्ज हो जाता है उसमें. तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में हमें स्मच प्रूफ काजल, आईलाइनर, मस्कारा, ये तीन चीजें आंखों के लिए होती हैं, इन्हीं का आप चुनाव करें. अब बचते हैं लिप्स एंड चीक्स. बिल्कुल, लिपस्टिक के लिए ग्लोसी की बजाय मैट लिपस्टिक का यूज करें. लिप टिंट आता है वो यूज करें जो पसीने में और पानी में बिल्कुल नहीं फैलता है. यस, बिल्कुल नहीं फैलेगा, आप एक बार यूज करके देखिएगा. नॉर्मली भी, जैसे अभी तो हम बात करें शादियों में दुल्हनों के मेकअप की, लेकिन भाई दुल्हन की शादी में जो जा रही हैं उनकी बहनें, उनको भी तो मेकअप की ज़रूरत है. बिल्कुल, तो आप इन सभी जो प्रोडक्ट्स हमने बताए हैं उनका यूज़ कीजिएगा. मैट लिपस्टिक एंड लिप टिंट, याद रख लीजिए ये दोनों चीज़ें पसीने में नहीं फैलते हैं. ठीक है, और इसके बाद अपने चीक्स पर बिल्कुल हल्का पीच कलर का एक कोरल कलर आता है वो पाउडर ब्लश यूज़ करें, ताकि नेचुरल और फ्रेश लुक लगे. बिल्कुल ऐसा ना लगे ना गॉडी गॉडी सा बहुत ज़्यादा कि मेकअप ही कर लिया जी. गर्मी में क्या होता है ना, ज़्यादा मेकअप बहुत चुभने लगता है आंखों में. बिल्कुल ना करें, एकदम साइलेंट, बिल्कुल बिल्कुल न्यूट, यानी एकदम हल्का मेकअप ऐसा करें जो कि आपका चेहरा लगे कि आपका कुदरती चेहरा ऐसा है. इस पर कोई मेकअप नहीं किया, लेकिन जो मेकअप हमने बताया अगर आप वो करेंगे ना, सच बता रहे हैं आपका चेहरा एकदम ग्लोइंग लगने लगेगा. लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेटिंग स्प्रे. अंत में पूरा जब चेहरा आप मेकअप कर लेना चेहरे पर, तो मेकअप सेटिंग स्प्रे आता है वो, उसकी कुछ बूंदें अपने चेहरे पर जरूर स्प्रे करें. इससे आपका जो मेकअप होगा ना बिल्कुल पिघलेगा भी नहीं और बहेगा भी नहीं, तो आपका मेकअप एकदम सेटल रहेगा. और सेटल रहेगा तो गाना जो होगा ना, जो हम आपको सुनाने वाले हैं शादी में जब चलेगा, तो आप खुद ही अपने आप नाचने लग जाएंगे.

यूं ही नाचते गुनगुनाते इस कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी ने इस कार्यक्रम को सुना, शिरकत की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अब इजाज़त दीजिए।

अमीन साबरी, फरीदी साबरी, जसपिंदर निरुला और साथियों को अभी आप सुन रहे थे फिल्म सिर्फ तुम में। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अभी आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम का।

अभी आपने सुना वीर ज़ारा फिल्म से लिया ये गीत। गीत को अपने सुर दिए अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन ने। जावेद अख्तर की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था मदन मोहन ने।

0: 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
4: 2 लाख क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
1: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। वक्त है ब्रज लोक गीतों के कार्यक्रम का, तो आइए आनंद लेते हैं विनोद कुमार अग्रवाल के गाए लोक गीतों का।

0: जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: अभी आप आनंद ले रहे हैं विनोद कुमार अग्रवाल के गाए लोकगीतों का।

0: गणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: FM 102.2 MHz पर अभी आप सुन रहे हैं ब्रज लोकगीतों का कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं विनोद कुमार अग्रवाल।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में

0: 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। छोड़ो।

ब्रज लोकगीतों के कार्यक्रम में अभी आप आनंद ले रहे थे विनोद कुमार अग्रवाल के गायन लोकगीतों का। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप, निवेशक और टेक्नोलॉजी लीडर्स शामिल होंगे। कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा ऐसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग और वस्त्र परीक्षण सहित प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। ये केंद्र उन्नत विनिर्माण सुविधाएं, तकनीकी सहायता और उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में

0: ने डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक नर्तक नर्तकियों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की। इस सामूहिक प्रस्तुति को गिनीज विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक विरासत के इस उत्सव का आयोजन भारत की संगमम ग्लोबल अकादमी और श्रीलंका की संगमिज लिया ने किया। फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने एक एक गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया। आईसीसी महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए अब जानते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। संध्या 6:30 से आप सुन सकेंगे आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत बनाम पाकिस्तान के मध्य एडविस्टन बर्मिंघम में आंखों देखा हाल मैच की समाप्ति तक आप सुन सकेंगे। दोपहर 1:15 पर सुनिएगा योगेश अग्रवाल जौली की लिखी झलकी। शीर्षक रहेगा सुनो सुनो, प्रस्तुति आर के त्रिपाठी की रहेगी। 1:30 से आप सुन सकेंगे श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ।

रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे से, जिसका अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा। प्रादेशिक संगीत का कार्यक्रम रात्रि 9:30 से आप सुनेंगे। अपने सांध्यकालीन सभा का आरंभ करेंगे संध्या 5:30 पर कार्यक्रम युववाणी से। संध्या 6:15 पर समय रहेगा ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में आज की चर्चा का विषय लेकर आएंगे विश्व रक्तदान दिवस और मिट्टी की सेहत और फसल की तैयारी। इसी के साथ श्रोता साथी ब्रज लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम मन भवन का भी आनंद ले सकेंगे। ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 7:05। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला का कार्यक्रम रात्रि 8 से आप सुन सकेंगे। संध्या वंदन संध्या 6:45 से। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी संध्या 7:31 से आप सुनेंगे। सुहाने तरानों का आनंद लीजिएगा रात्रि 9:15 पर। सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर आएंगे दोपहर 2:30 से। साथियों एक बार फिर आपको याद दिला दें आज संध्या 6:30 से आप सुन सकेंगे आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड

एफएम 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। आइए करते हैं अपने देश को नमन।

FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है योगेश अग्रवाल जौली की लिखी झलकी, शीर्षक सुनो सुनो, प्रस्तुति आरके त्रिपाठी की है।

0: 7:15 बज गए, अभी तक अखबार नहीं आया। अरे सूरज अभी तक सो रहा है, देख तो भाई क्या संकट है। अरे अब जाग भी, अखबार नहीं आया अभी तक।
1: राम राम मोहन भाई साहब, अजी सवेरे सवेरे क्यों छन छन में ठंडे गरम हो रहे हो? आपका अखबार मैंने आकर से ले लिया था।
0: अच्छा तो आज का अखबार आपने ले लिया है? हाँ भाई हाँ, अखबार तो गरीब की जोरू है, जो चाहे सो झपट ले।
1: अजी वो बात यह है कि मुझे आज के अखबार में क्रिकेट की स्टोरी पढ़नी थी।
0: पढ़ ली तुमने क्रिकेट की स्टोरी?
1: अजी पढ़ ली, सच में बहुत घाल मेल है, एम्पायर की मनमानी रही। ये लीजिए आपका अखबार
0: है। अरे इसमें तो पन्ने कम है।
1: हाँ हाँ याद आया, आज शुक्रवार है, फिल्म परिशिष्ट तो रानी मौसी ने निकाल लिया और चन्नी चाचा लोकल न्यूज बांचने के वास्ते 2 पेज ले गए हैं, छत पर बैठकर ठंडी हवा में अखबार पढ़ रहे हैं।
0: वाह भाई वाह, तुमने अखबार का बंटवारा खास तसल्ली से किया है, धन्यवाद। बंटवारे की पूरी जानकारी कराने के लिए एक बार और धन्यवाद।
1: अजी इसमें धन्यवाद की क्या बात है, पड़ोसी धर्म में धन्यवाद अच्छा नहीं लगता।
0: धन्यवाद नहीं तो कुछ चाय और ठंडा ले लीजिए। अजी पड़ोसी तो भगवान होता है, चाय तो चलेगी।
1: अब मोहन भाई साहब आपने तो सुना होगा, परहित सरस धर्म नहीं भाई।
0: सुना भी है और समझा भी है, लीजिए चाय पीजिए। हाँ एक बात और, जहां तक हो सके सुबह सुबह सरस बातें किया कीजिए।
1: वाह जी वाह, क्या चाय है, कौन सी पत्ती डालते हैं आप चाय में, इस कदर कड़क और जायकेदार चाय इससे पहले कभी नहीं पी। अजी कहां से लाते हैं आप अपनी रसोई के लिए चाय की पत्ती। लीजिए आपके अखबार का एक इंस्टॉलमेंट यानी फिल्म जगत के 4 पन्ने आ रहे हैं, रानी मौसी आपका अखबार वापस करने के लिए खुद आ रही हैं।
0: चलिए एक प्याला चाय उनके नाम भी। अरे सूरज एक प्याली चाय और लाना।
2: अभी लाया जी।
1: अजी अब इसमें इतनी जल्दी की आवश्यकता नहीं, रानी मौसी हैं, अभी तो 5 मकान दूर हैं।
0: तो अब तुम रानी मौसी के हमारे घर आने की रनिंग कमेंट्री भी सुना ही डालो।
1: हाँ तो अब मैं देख रहा हूँ रानी मौसी ने धूप से बचने के लिए अखबार को चौतरफा मोड़कर सिर पर रख लिया है, अखबार के ऊपरी हिस्से में छपी फिल्मी तारिका की तस्वीर को देखने के लिए लाल इमारत की दूसरी मंजिल से पोस्टमास्टर की पुत्री झांक रही है रानी मौसी, जो कि अपनी चाल से इटलाती, बीच बीच में पान की पीक थूकती।

0: आगे बढ़ती आ रही हैं, पूरी आन बान और शान के साथ। और अब मैं देख रहा हूँ कि रानी मौसी के सिर से अखबार का रंगीन परशिष्ट गटर में गिर गया है। मौसी के दोनों हाथ कमर पर आश्चर्य की मुद्रा में अखबार जो कि गटर में गिरकर बह रहा है। रानी मौसी बार बार अपना सिर धुलने का उपक्रम कर रही है। इससे पहले कि रानी मौसी आगे बढ़े, मैं माइक मिस्टर गोखले को देता हूँ।
1: अब जबकि मैंने देख लिया है कि दैनिक समाचार पत्र का एक हिस्सा गंदगी में समा गया है, ये मेरे लिए शर्म की बात है कि मैं अखबार पढ़ता हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि रानी मौसी अगर अखबार को अपने सिर पर रखने तथा धूप से बचने का लालच नहीं करती तो अखबार के गटर में बहने का सवाल ही नहीं था।

0: मीनू, सुना तुमने फ्रेंड्स क्लब ने इस बार सालाना जलसे के लिए तुम्हारे पति को श्रेष्ठ नागरिक और श्रेष्ठ पति के रूप में चुना है?
1: बता बता, तुझसे किसने कहा? सच? मेरे पति और श्रेष्ठ पुरुष?
0: तुझे पता है श्रेष्ठ पति को क्लब की तरफ से 1,00,000 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है।
1: क्या 1,00,000? ये तो तूने अच्छी खबर सुनाई। ले लेना आइसक्रीम खा, दिल्ली से मंगाई है।
2: अरे अब आइसक्रीम ही क्यों, अब तो पार्टी होनी चाहिए। तुम्हारे मियां को श्रेष्ठ चुना गया है।
1: अरे मुझे क्या, ना जाने किन किन सिफारिशों से उन्हें चुना गया होगा। अगर उन्हें श्रेष्ठ पति ही चुनना था तो मेरी राय भी जान लेते।
0: तो क्या तुम्हारी नजर में तुम्हारे पति श्रेष्ठ नहीं है?
1: मेरी नजर में तो है, लेकिन फ्रेंड्स क्लब की नजर उन पर किस तरह पड़ गई, ये बात मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है।
0: मैंने तो यह भी सुना है कि 1,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि में आधे रुपए यानी 50,000 श्रेष्ठ पति की पत्नी को दिए जाने की घोषणा की जा रही है।
3: क्या मैं अंदर आने की इच्छा व्यक्त कर सकता हूँ?
1: आप आइए, कहिए।
3: अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो मिस्टर गोखले की आप वाइफ है ना?
0: बिल्कुल ठीक पहचाना।
1: लेकिन आप?
3: जी मैं समाचार पत्र राष्ट्र संकेत से आया हूँ। श्री मोहन गोखले मतलब आपके पति, उनके बारे में, उनकी गृहस्थी के बारे में एक स्टोरी छापनी है मैडम।
1: लेकिन ये सब किस लिए?
3: शायद आपको जानकारी हो या ना हो, फ्रेंड्स क्लब ने इस बार मिस्टर गोखले को श्रेष्ठ पति के रूप में अनाउंस किया है। आपसे कुछ सवालात पूछने हैं मैडम, आपको कोई एतराज तो नहीं है ना?
1: मुझसे सवाल? देखिए मैं शुरू से कमजोर हूँ।
3: मेरा सवाल है कि मेरे पति, कहने का मतलब है कि आपके पति मिस्टर मोहन गोखले इतनी छोटी सी उम्र में इतने पॉपुलर कैसे हो गए, इसके पीछे क्या राज है और क्या आपकी प्रेरणा है मैडम, जरा बताइए तो।
1: वो बात यह है कि मेरे पति को उधार देने की आदत है। उसमें खास बात यह है कि किसी को भी रुपया देकर याद नहीं रख पाते हैं। रोज की मसरूफियत और व्यस्तता में वे उधार के पैसे मांगना भी भूल जाते हैं। उन्हें भूलने की आदत जो है।
3: वेरी गुड वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी आदत है। मेरा दूसरा सवाल है।
0: अरे गोखले जी तो इस कदर भुलक्कड़ है कि 1 महीने में बार बार बीनू को अपना वेतन दे देते हैं और भूल जाते हैं।
3: मैडम मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, प्लीज कीप साइलेंस योरसेल्फ। हाँ मुझे मिसेस गोखले से बात करने दीजिए। हाँ तो मिसेस गोखले, इससे पहले कभी मिस्टर गोखले को कोई पुरस्कार मिला, और मिला तो कहाँ मिला और किन परिस्थितियों में मिला, प्लीज उसके बारे में बताइए ना।
1: जी हाँ, एक बार होली पर पड़ोसियों ने किसी खास कार्यक्रम में मेरे पति को मूर्खाधिराज का प्रमाण पत्र देकर सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया था।
0: ये देखिए मिस्टर गोखले को मिला मूर्खाधिराज का स्वर्ण पत्र।
3: अरे अरे वाह, ये तो असली सोने का है, इसे संभाल कर रखिएगा मैडम। अच्छा मैं चलता हूँ। यदि मिस्टर गोखले का कोई कलर फोटोग्राफ आपके पास हो या कलर कोई पोर्ट्रेट हो तो आप हमें दीजिए, आपके इंटरव्यू के साथ उनके फोटोग्राफ भी छापनी है। अच्छा एक बात बताइए, क्या कोई आप अखबार पढ़ती हैं मैडम?
1: हाँ क्यों नहीं, अखबार से अपना राशिफल तथा होलसेल में सब्जी और मेवों के भाव तो जरूर पढ़ती हूँ।
0: ये लीजिए मिस्टर गोखले का पोर्ट्रेट।
3: ये मिस्टर गोखले हैं क्या? आप लोग मजाक तो नहीं कर रही हैं?
1: अरे इसमें मजाक की क्या बात है,
0: यही तो है मिस्टर गोखले, आपको कोई शक?
3: आप पानी पिलवाइए कृपया, माफ कीजिए, मैं मिस्टर गोखले को तो अच्छी तरह जानता हूँ। अक्सर ये लोकल बसेस में महिलाओं के आरक्षित सीट पर बैठकर महिलाओं से झगड़ा करते हैं, ये वही मिस्टर गोखले हैं।
0: अरे आप तो जानते हैं मिस्टर गोखले को भूल जाने की आदत है।

0: देवियों और सज्जनों, फ्रेंड्स क्लब आपका पुनः स्वागत करता है। जैसा कि आप जानते हैं, जो लोग नहीं जानते उन्हें यह बताना अपना कर्तव्य समझता हूं कि
1: अरे जल्दी बताओ क्या कर्तव्य है।
2: हाँ जल्दी बताइए क्या है।
0: दुनिया गोल है। इस वर्ष हम शहर की ओर से फ्रेंड्स क्लब के तत्वावधान में जिन्हें सम्मानित करने जा रहे हैं वे हैं मिस्टर गोखले, जिन्हें 1,00,000 रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है।
2: वाह क्या बात है।
0: सुनिए सुनिए।
2: हाँ हाँ सुनाइए।
1: भैया जल्दी बताओ।
0: श्रेष्ठ नागरिक के रूप में मोहन गोखले एक मिसाल हैं, एक आदर्श पति, पड़ोसी तथा नागरिक के रूप में हैं मिस्टर गोखले।
2: वाह वाह क्या बात है। वाह क्या बात है।
0: वास्तव में इस शहर की आन है, बान है और जितना भी कहा जाए उनके बारे में ये बहुत कम है।
2: वाह क्या बात है।
3: आइए श्री गोखले को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करते हैं। इस अवसर पर फ्रेंड्स क्लब की ओर से मोहन गोखले को 1,00,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जा रहा है।

0: अरे बीनू, देखे तो इस लिफाफे में क्या है?
1: अरे ये तो खाली है, इसमें तो कुछ भी नहीं है।
0: लेकिन ये तो सरासर गलत है, धोखा है, सोसाइटी के साथ विश्वासघात है।
1: और क्या, लोगों को इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए, इससे तो क्लब की छवि और दूषित होगी। अब आप भी कुछ बोलेंगे या इसी तरह मिट्टी के माधव बने बैठे रहेंगे?
2: अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ।
3: नमस्ते आंटी।
0: नमस्ते सुंदर जी।
1: आपको हम लोगों ने ये पूछने के लिए यहाँ बुलाया है कि आप लोगों को ऐसा हल्का मजाक करते हुए घिन नहीं आती?
3: घिन किस बात की?
1: श्रेष्ठ पति के लिए 1,00,000 रुपए की राशि के स्थान पर खाली लिफाफा, 1 रुपया भी नहीं।
0: आप लोगों को इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए था।
1: आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। हाँ
0: हाँ,
3: इसमें मानहानि कैसी जी?
1: लेकिन आपने ऐसा किया क्यों?
3: इसलिए कि मोहन गोखले की इस शहर में धाक रही।
1: सुनो सुनो
0: सुनो सुनो
4: सुनो और सुनो।
5: सुनो सुनो, अभी तक आपने सुनी योगेश जौली की लिखी झलकी। इसमें भाग ले रहे थे रम्या रंगाचार्य, मनोज कुमार कौशिक, मोहिनी आचार्य, राम सरीन और रमेश मिश्र। इस झलकी के प्रस्तुतकर्ता थे आर के त्रिपाठी।

अभी आप सुन रहे थे योगेश अग्रवाल जौली की लिखी झलकी, शीर्षक था सुनो सुनो, प्रस्तुति आर के त्रिपाठी की थी। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं।

श्रोताओं, आपको एक बार फिर याद दिला दें कि आज संध्या 6:30 से आप सुन सकेंगे ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के

अंतर्गत भारत बनाम पाकिस्तान के मध्य एजबेस्टन बर्मिंगम से आंखों देखा हाल मैच की समाप्ति तक। बाकी हमारे जो कार्यक्रम रहेंगे वो आप ऐप पर सुन सकेंगे।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ। प्रस्तुति ओपी सिंह और देवराज कृष्ण दीक्षित की है।

0: श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ इस कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। सिंह साहब, आपको भी हमारा नमस्कार।
1: नमस्कार देवराज जी, और श्रोताओं का जो प्रतिक्रिया है, उनके कुछ सुझाव है, कुछ शिकायतें हैं, कुछ खट्टी मीठी सी बातें हैं, जब तक वो फोन कॉल से जुड़ते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ते हैं, पत्र भी आज तो एक दो हमारे सामने रखे हुए
0: जी बिल्कुल,
1: तब तक कुछ बात कर ली जाए
0: जी।
1: तो जैसा हम देख रहे हैं मौसम जो चल रहा है, गर्मी भी है, कभी तापमान बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, और कभी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो इसमें स्वास्थ्य के हिसाब से हमारे सभी श्रोताओं को हम कहना चाहेंगे कि ध्यान रखें अपनी दिनचर्या का भी, अपने आसपास के परिवेश का भी, क्योंकि अभी हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया,
0: बिल्कुल मनाया,
1: और बीच में भी कई सारे दिवस आ रहे हैं, और 21 जून को हम मनाएंगे विश्व योग दिवस।
0: जी बिल्कुल, हम सब भारतीयों के लिए बड़ा गर्व का दिन है कि हम सभी विश्व योग दिवस 21 जून को मना रहे हैं, और ये भारतवासियों की बहुत बड़ी देन है विश्व के लोगों के लिए,
1: विश्व समुदाय के लिए। और योग का जो मतलब है देवराज जी, वो यही है कि हम जुड़ सके
0: जी
1: अपने आप से, अपने समाज से, अपने साथ के लोगों से, विश्व से, वो संबंधों के माध्यम से, भाव के माध्यम से, अभिव्यक्ति के माध्यम से और कर्म के माध्यम से।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो जो योग है वो सिर्फ व्यायाम करने तक सीमित नहीं है, एक बड़ा व्यापक शब्द है, इसकी जो सीमा है वो अनंत है, आयाम बड़े अनंत है। तो योग दिवस में हम इस बार इस उद्देश्य को लेकर के जुड़े कि हम अन्य से जुड़े, उससे पहले अपने आप से भी जुड़ना चाहें, और शायद जो मैं कहना चाह रहा हूँ उस बात को आप समझ गए होंगे कि अपने आप से जुड़ना यही है कि हम अपने आप को समझें, देखें और अपने होने के उद्देश्यों को जानें, तभी शायद हम समाज के लिए भी कुछ उपयोगी हो सकते हैं और तभी संबंधों के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। इस बीच देखिए बात
0: जुड़ने की चल रही थी तो हमारे
1: श्रोता जुड़ गए
0: जी। लेते हैं फोन कॉल।
2: हेलो,
0: कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
2: जी धन्यवाद सर।
0: अपना परिचय दे दीजिए।
2: सर मैं आपका ब्रज रेडियो श्रोता में अशोक यादव बात कर रहा हूँ, अड़ी से। सर
0: यादव जी स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं।
2: सर आकाशवाणी परिवार को, सभी उद्घोषकों से यही निवेदन करता हूँ कि हमें ऐसे ही आकाशवाणी के सुंदर सुंदर कार्यक्रम सुनवाते रहें और ज्ञानवर्धक बातें भी साथ साथ साझा करते रहें। और सर एक हमारी ख्वाहिश बहुत दिनों से रह रही थी कि जो रविवार का हमारा कार्यक्रम है ब्रज लोक लहरी वाला, वो फोन इन हो जाता सर तो बड़ा अच्छा लगता।
0: जी जी, ओपी सिंह जी हमारे साथ हैं, वो आपकी बात का उत्तर दे रहे हैं।
1: जी अशोक जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, स्वागत इस कार्यक्रम में कि आपने फोन किया, अपनी राय व्यक्त की। आप की तरह और भी लोग इस बात को कहते रहे देवराज जी कि भाई लोक लहरी जो है फोन इन हो जाए, तो इसमें हम विचार कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम को फोन इन कर दिया जाए, और आप जैसे श्रोताओं की सहभागिता रहेगी और सुझाव रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम इस पर आगे बढ़ेंगे। बाकी ये नोट कर लिया है सुझाव कि इसको हम फोन इन करने की कोशिश जरूर करेंगे, अगर हमारी जो सीमा है उसमें ये परमिट करता है तो। और कुछ कहना चाहें, कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैं, कुछ अन्य कार्यक्रमों का सुझाव?
2: जी सर आपके सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे हैं, और समय के हिसाब से जो आप हमें गुरुवार को जो कार्यक्रम आता है वो करंट विषय पे होता है, ये कार्यक्रम हमें बेहद अच्छा लगता है, और रूबरू श्रोता भी अपने फोन कॉल के माध्यम से उसमें जुड़ते हैं, तो ये कार्यक्रम हमें बहुत ही अच्छा लगता है।
1: आप स्वास्थ्य

0: स्वास्थ्य वाले कार्यक्रम की बात कर रहे हैं जो डॉक्टर आते हैं उसमें?
1: जी जी सर।
0: जी जी जी, आकाशवाणी का तो यादव जी देखो हमेशा से ही ये उद्देश्य रहा है कि सूचना, मनोरंजन और जानकारी के जो तीन उसके उद्देश्य हैं, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय को प्राप्त करने के लिए, उस पर हम कोशिश करते रहे। बाकी आप जैसे लोग उसको सराहते हैं तो हमें कुछ और अच्छा करने का मौका मिलता है और उत्साह भी होता है। तो आप जैसे लोगों की प्रेरणा बनी रहेगी तो इस तरह के और भी कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे। बाकी आज आप इससे जुड़े हैं हमारे कार्यक्रम से, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सर, नमस्कार।
2: नमस्कार, नमस्कार। सिंह साहब एक फोन और आ रहा है, ले लेते हैं।
0: जी जी, बात कर लेते हैं।
2: हेलो,
3: कार्यक्रम श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ
2: स्वागत है आपका। अपना परिचय देकर के अपनी बात रखें।
3: आदरणीय सिंह साहब को और रेडियो उद्घोषक देवराज कृष्ण दीक्षित जी को मेरा यानी ब्रजी रेडियो श्रोता मित्र चौधरी महेंद्र सिंह ग्राम नगलारा शिहोरा की ओर से प्यार भरा नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: कहिए महेंद्र सिंह जी, क्या कहना चाहते हैं हमारे कार्यक्रमों के बारे में, क्योंकि आपकी टिप्पणी का बड़ा मायने रहता है। आप हमारे सुधी श्रोता हैं, पुराने श्रोता हैं और जो कहते हैं उसके मायने होते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आज?
2: और मैं तो यूं कहूंगा कि ये बहुत अनुभवी श्रोता हैं।
0: जी जी जी जी,
3: सर की इजाजत हो तो मैं अपने अनुभव जाहिर कर सकता हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये कार्यक्रम ही आपके अनुभव के लिए, आपकी राय के लिए, आपके सुझाव के लिए, तो आप बेधड़क होकर अपनी बात रखिए। क्या कहना चाहते हैं श्रोताओं से, क्या मुखातिब होना चाहते हैं?
3: महोदय, मुझे आकाशवाणी मथुरा से एक श्रोता की हैसियत से जुड़े हुए आज ठीक पूरे 42 साल हो गए।
0: क्या बात है, बधाई आपको। 42 साल तो बहुत लंबा समय होता है महेंद्र सिंह जी, आप लगातार जुड़े हुए हैं और अब तो मैं समझता हूँ 42 साल तो काफी हो गया, लंबा समय है।
3: 1984 से जुड़ा हुआ हूँ सर। उन दिनों राष्ट्रीय हिंदी समाचार वाचक कृष्ण कुमार भार्गव, देवकी नंदन पांडे, विनोद कुमार कश्यप, अशोक बाजपेयी और अनादि मिश्र हुआ करते थे
0: जी। आकाशवाणी के बड़े पुराने धुरंधर और बड़े नामों का जिक्र आपने किया है, नए श्रोता शायद सुन के उनको अच्छा भी लगेगा कि ये नाम आज भी लोगों के जहन में है।
2: जी
3: महोदय, 11 जून गुरुवार को हमने आपके केंद्र से 12 बजे यानी दोपहर 12 बजे कार्यक्रम सुना था
0: जी।
3: हेलो डॉक्टर, उसमें डॉक्टर लव गुप्ता से बहुत सारी जानकारी, जैसे टीबी है, अस्थमा है, सांस है
0: जी,
3: बहुत सारी जानकारी मिली। ये हमारे श्रोताओं के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी, क्योंकि उन्हें घर बैठे ही अपनी बीमारी का निदान मिल गया और वो अनजान है कि कहाँ जाएं, किससे मिलें। तो विशेषज्ञ महोदय ने ये भी बताया था कि मैं फलानी जगह बैठता हूँ और कितने नंबर कमरा में भी बैठता हूँ।
0: जी जी जी, तो महेंद्र सिंह जी, इस तरह के कार्यक्रम जो आकाशवाणी लेकर के आ रही है, वो उसका उद्देश्य भी यही है कि भाई इलाज तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम अपने आसपास जो हो रही बीमारियां हैं, उनके कारण हैं, वो क्या है, उनसे कैसे हम बच सकते हैं, तो समाज में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता भी हो, क्योंकि स्वास्थ्य को भी एक धन के रूप में ही हम लेते रहे। हमारी संस्कृति भी कि ये कहते हैं कि स्वास्थ्य बड़ा धन है, तो इसकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है और उसमें आकाशवाणी कुछ मदद कर सकता है लोगों की जागरूकता बढ़ाने में, जानकारी बढ़ाने में, उनको कोई राय देने में, तो ये हमारा प्रयास है। आपको अच्छा लगा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं।
3: सर ऐसा है, आकाशवाणी के जितने भी कार्यक्रम है श्रोताओं के लिए सहायक सिद्ध हो रहे हैं और बहुत ही अच्छे प्रोग्राम है और उनसे उन्हें बहुत कुछ मिल रहा है।
2: जी चौधरी साहब, कोई शिकायत हो तो बताइए।
3: शिकायत यही है सर कि आपके केंद्र से एक मास्क का गीत आया करता था।
0: हाँ।
2: जी
3: बहुत पहले
0: जी,
3: उसको बंद कर दिया गया है, कृपया उसे पुनः शुरू कर दें तो आपकी बड़ी कृपा।
0: देवराज जी इस पर जानकारी ज्यादा दे रहे हैं, देखिए आप बताइए देवराज।
2: देखिए चौधरी साहब, अगर आप लगातार कार्यक्रम सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, तो आपको इस मास्क का गीत भी अवश्य सुनने को मिल रहा होगा और ये कार्यक्रम लगातार जारी है।
0: तो इनको फिर ऐसा क्यों लग रहा है देवराज जी के,
2: या तो
0: कभी कोई इम्पोर्टेंट कार्यक्रम आ जाता है क्या?
2: जी जी, या फिर ये सुनने से वंचित रह गए हों, या फिर कोई इम्पोर्टेंट कार्यक्रम आ गया हो उसकी स्थान पर, ये हो सकता है।
3: सर विविध भारती की प्रस्तुति ले सकते हैं आप, जैसे हवा महल कार्यक्रम आपके केंद्र से हुआ करता था।
0: हाँ,
3: वो कार्यक्रम
0: वो इस तरह के सुझाव तो काफी थे, लेकिन महेंद्र सिंह जी आप देख रहे होंगे कि अब रिले के कार्यक्रम काफी बढ़ गए हैं, जो विकास की योजनाएं चल रही हैं और डे टू डे के जो लाइव कार्यक्रम है ना वो भी बहुत बढ़ गए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री का हो, माननीय राष्ट्रपति जी का हो या अन्य बहुत इम्पोर्टेंट कार्यक्रम ऐसे जो समाज के लोगों के लिए हो रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनके रिले भी बहुत है। तो अपने

0: स्टेशन के कार्यक्रम के लिए कम समय रह जाता है, तो वो जो 9 बजे का समय है वहाँ अभी वो बन नहीं पा रहा, लेकिन कभी ऐसा होगा और संभव होगा तो उस पर भी विचार करेंगे।
1: सर ऐसा है, प्रोग्राम का वक्त जाया न करते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आकाशवाणी से प्रसारित सभी कार्यक्रम काबिले तारीफ हैं और बहुत ही अच्छे जा रहे हैं और आप लोगों की मेहनत सार्थक सिद्ध हो रही है। आप बहुत ही मेहनत करके निर्माण करते हैं कार्यक्रमों का और हम

0: निर्माण करते हैं कार्यक्रमों का और हम श्रोताओं तक पहुंचाते हैं, हम सुनते हैं, सराहते हैं और उसकी प्रतिक्रिया भी देते हैं आपको।
1: जी जी, इसके लिए आपका धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं और सुनने के बाद अपनी सार्थक प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते हैं।
0: जी नमस्कार।
2: जी प्रणाम। तो देवराज जी, ये बहन सिंह जी से बात हुई अभी, जब तक नए श्रोता हमसे जुड़े, एक पत्र मेरे पास पड़ा है, आप कहें तो मैं इसको पढ़ लेता हूँ। ये हमारे बड़े नियमित और पुराने श्रोता हैं प्रकाश राय जी, और काफी सटीक टिप्पणियां लिख करके हमको भेजते हैं।
1: क्या लिखा है आज इन्होंने?
2: हाँ, आज एक बड़े पुराने कार्यक्रम का जिक्र कर रहे हैं
1: जी।
2: और वो थोड़ा सा शिकायत का भाव भी है, थोड़ी सी ये गुजारिश भी कर रहे हैं। ये लिखते हैं कि आजकल जो बृहस्पतिवार को 12 बजे आपका कार्यक्रम जा रहा है हेलो डॉक्टर वाला, उस जगह पे पहले एक कार्यक्रम आया करता था ये रास्ते जिंदगी के।
1: जी जी जी बिल्कुल।
2: तो हमें भी वो याद ताजा हो आई। तो ये लिख रहे हैं कि अगर इस समय ये हेलो डॉक्टर जा रहा है, वो भी कार्यक्रम चूंकि बहुत अच्छा था, श्रोता उससे भी जुड़े थे और उसमें भी आप बड़े महत्वपूर्ण लोगों को बुला करके उनकी राय से, उनके सुझावों से, उनकी जानकारी से, उनके अनुभव से हम श्रोताओं तक जानकारी पहुंचाते थे
1: और श्रोता लाभान्वित भी होते थे।
2: हाँ, तो इनका सुझाव है कि बृहस्पतिवार को न सही, लेकिन किसी अन्य दिन उसको उसी रूप में अगर आप फिर से कार्यक्रम को ले आते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी मेहनत तो बढ़ेगी, लेकिन हम जैसे श्रोताओं का मार्गदर्शन भी हो जाएगा। तो ये उसको एक तरह से याद कर रहे हैं उस कार्यक्रम को देवराज।
1: बिल्कुल, सुझाव तो बहुत अच्छा है और ये कार्यक्रम सजीव हुआ करता है।
2: जी जी जी, जी। तो इस पे भी प्रकाश राय जी को एक तो धन्यवाद देंगे कि उन्होंने ये पत्र लिखा है, किसी बात को उठाया है, और आश्वासन यही है कि निकट भविष्य में अगर संभव हो सका तो कोशिश करेंगे कि हर वीक ना सही तो कम से कम महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार इस कार्यक्रम को किसी ऐसे दिन में उसी समय लेकर के आए जब हमारे श्रोता उससे लाभान्वित हो सके।
1: बिल्कुल जी जी। सिंह साहब, आपके पास ये पत्र आया और मेरे पास एक व्हाट्सएप संदेश आया हुआ है। हमारे श्रोता हैं प्रताप सिंह जी, ये अपना मैसेज भेज रहे हैं छत्ता बाजार से।
2: जी,
1: ये लिखते हैं कि हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम तो वैसे सभी लोगों का पसंदीदा कार्यक्रम है, लेकिन हम ये चाहते हैं जैसा यादव जी ने अभी फरमाइश की थी कि जो ब्रज लोक लहरी कार्यक्रम है उसे फोन इन कर दिया जाए। तो ऐसी ही कुछ बात इन्होंने अपने संदेश में लिखी है कि ब्रज लोक लहरी को भी हम फोन इन करके अगर प्रसारित करें तो हमारे बहुत सारे श्रोता जो फिल्मी गीतों के साथ साथ लोकगीत भी पसंद करते हैं उनकी ये मांग है, ये जो सुझाव है इनका ये पूरा होगा।
2: जी, तो इसमें देवराज जी थोड़ा सा व्यावहारिक उसको देखते हैं और इसको ट्रायल लेवल पे जो कार्यक्रम जाता है
1: जी जी,
2: जो जहाँ से हमारे जो कंपेयर भाई हैं वहाँ बैठ के करते हैं
1: जी,
2: तो उनको हम कोशिश करेंगे कि उनको कुछ थोड़ी सी ट्रेनिंग देके कि इस वाले कंसोल पे जहाँ फोन इन रहता है
1: जी,
2: और वहाँ बैठा के उसको किया जाए और जितने श्रोता उसमें शुरुआत में जुड़ पाए, बहुत ज्यादा न भी जुड़ पाए लेकिन कुछ अगर जुड़ पाते तो मिला जुला सा करके अगर इसको शुरुआत कर लेते हैं एक ट्रायल के रूप में तो देखते हैं कि वो कितना सफल होता है।
1: सुझाव अच्छा है, माना जा सकता है, अगर संभव हुआ तो हमारे श्रोताओं की ये जो मांग है ये अवश्य पूरी होगी।
2: जी जी, तो अभी तो मुझे लगता है कि समय इतना ही है
1: जी।
2: जो श्रोता भैया आज हमारे जुड़े व्हाट्सएप से, पत्र से या फोन के माध्यम से, उनको धन्यवाद दे देते हैं और टेलीफोन नंबर है एक बार आप चाहे तो उसको दोहरा दे।
1: जी जी, हमारे इस कार्यक्रम के लिए फोन नंबर है 25 30 135 और मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड लगाकर हमें फोन कर सकते हैं शुक्रवार के दिन 12:30 से, और जो श्रोता व्हाट्सएप संदेश भेजना चाहते हैं उनके लिए नंबर है 94-122-25-575।
2: जी, और मना पत्रों के लिए भी नहीं है
1: जी,
2: हालांकि हमने कार्यक्रम का नाम रखा है कि श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ, क्योंकि पत्रों का सिलसिला थोड़ा कम हो गया
1: जी,
2: लेकिन पत्र भी डालते हैं तो उनका भी स्वागत है। जैसे प्रकाश राही जी ने ये
1: जी, जी, जी,
2: हमको पत्र भेजा, तो भावना है जैसे व्यक्त करें, टेक्नोलॉजी का समय है, आपके लिए टेलीफोन लाइनें खुली हुई है, व्हाट्सएप संदेश की लाइन खुली हुई है और पत्र लिखने के लिए पता भी है कि द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मथुरा गायत्री तपोभूमि के पास, पिन कोड है 281003। तो इस पर पत्र भी लिख सकते हैं। तो ये मिली जुली सी प्रतिक्रियाओं का कार्यक्रम आज यहीं तक का सफर।
1: सिंह साहब, क्योंकि अब कार्यक्रम का समय संपन्न होने जा रहा है, हम श्रोताओं से लेते हैं अनुमति। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रोताओं की बात फोन कॉल्स के साथ। प्रस्तुति ओपी सिंह और देवराज कृष्ण दीक्षित की थी। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश फिल्म संगीत का कार्यक्रम। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये गीत फिल्म ब्लफ मास्टर से।

अभी आपने ये गीत सुना रॉबर्ट उल्मन, आरश और साथियों की आवाज में। फिल्म थी ब्लफ मास्टर। सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म आवारापन से। गीत को अपना सुर दिया है मुस्तफा जाहिद ने।

सईद कादरी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था प्रीतम ने। फिल्म आवारापन से लिया ये गीत अभी आप सुन रहे थे मुस्तफा जाहिद की आवाज में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जावेद अली साहिर अली की आवाजों में। फिल्म है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा।

वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा में अभी आपने सुना जावेद अली और साहिर अली को। इस गीत के साथ फिल्म संगीत के कार्यक्रम को अब हम यही विराम देते हैं। FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को है, थोड़ी देर में आप सुन सकेंगे समाचार।

0: on in a Group A fixture at Edgbaston in Birmingham today. The match will start at 7 p.m. India time. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi begins his two-nation Europe visit with engagements in Nice, France, to inaugurate Bharat Innovates 2026 jointly with French President Emmanuel Macron in a short while. Bilateral talks with President Macron to review progress in India-France special global strategic partnership will be held later today. Seven people killed in separate lightning strikes in Jharkhand since yesterday. Southwest monsoon to advance into parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh in the next 2 to 3 days. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin campaign against Pakistan in Birmingham this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
2: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
3: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट

में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुँच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा।
इस वर्ष

0: विश्व योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मॉनसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, आरिसा पीठा, चकुली पीठा और मसूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। रजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के

0: चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए पेश है सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

ये सुर थे सोनू निगम अलका याग्निक की फिल्म रेफ्यूजी में। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर भी आप आनंद ले रहे हैं सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। आइए सुने कार्यक्रम का यह अगला गीत, अनुराधा पौडवाल उदित नारायण के युगल सुरों में फिल्म मेजर साहब से।

प्रसून जोशी की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था जतिन ललित ने। फिल्म थी फना, सुर दिए थे शान और कैलाश खेर ने। आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म बॉर्डर से, रूप कुमार राठौर की आवाज में।

के लिए फिल्म संगीत के कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देते हैं। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3 बज चुके हैं। अब हम इस सभा के प्रसारण को यहीं संपन्न करते हैं। अपनी सांध्यकालीन सभा में संध्या 5:30 पर फिर आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। 5:30 हुए हैं, हमारी ये सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ प्रस्तुत है कार्यक्रम युवाणी।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है विश्व रक्तदाता दिवस, हर साल 14 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्वैच्छिक अवैतनिक रक्तदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए धन्यवाद देना है। यह दिवस कार्ल लेस्टनर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उनका जन्म 14 जून को 1868 को हुआ था। उन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इस दिन का जो महत्व है, जागरूकता, सुरक्षित रक्त और प्लाज्मा देने का महत्व पर प्रकाश डालना, सम्मान दुनिया भर के लाखों स्वैच्छिक रक्तदाताओं की सम्मानित करना और दूसरों को नया जीवन देना, नियमित रूप से रक्तदान करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना ताकि आपात स्थितियों में पर्याप्त ब्लड की सप्लाई बनी रहे। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जीवन में ब्लड का कितना बड़ा महत्व होता है। अगर हम रक्तदान करेंगे तो ये रक्त हमारे और साथियों के और भाइयों के और बहनों के लिए काम में आएगा, जिससे कि उनका जीवन चलेगा। आपसे भी हमारा अनुरोध है, रक्तदान करें और लोगों को इसके लिए प्रेरित करें।

0: हेलो, यस, डॉक्टर शिखा स्पीकिंग। क्या कमल को हार्ट अटैक हुआ है? कब? कौन से नर्सिंग होम में है? अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं आ रही हूँ। हाँ हाँ, बहुत जल्दी आ रही हूँ।
1: आप आ गए डॉक्टर साहब? मालिक की तो हालत बहुत खराब हो गई थी।
0: क्या?
1: बार बार आपका ही नाम ले रहे थे, इसीलिए मैंने आपको।
0: ठीक है ठीक है, कहाँ, कौन से कमरे में है वो?
1: जी वो उधर, हाँ हाँ उधर 206 नंबर में।
0: तुम उन्हें छोड़कर यहाँ क्यों चली आई?
1: ह्यूमन है ना उनके पास।
0: ह्यूमन? ये कौन है?
1: जी वही रोबोट जिसे मालिक ने बनाया है। बस हर सब उसी को अपने साथ रखते हैं। वही एक अकेला थोड़े ही है, और भी तो कई हैं।
0: अच्छा चलो जल्दी। अब कैसी तबीयत है इनकी? डॉक्टर क्या कहते हैं?
2: पहले से बेहतर है, डॉक्टर ने कहा है, अब ये खतरे से बाहर हैं।
0: गंगा कह रही थी कल से लगातार तुम यही हो, अब मैं हूँ यहाँ, तुम आराम कर सकते हो।
2: मैडम आप भूल रही हैं, मुझे थकान नहीं होती और मालिक की देखभाल करना मेरी ड्यूटी में शामिल है। आप बैठिए।

0: तुम कब आई शिखा?
1: बस अभी थोड़ी देर पहले। कैसा लग रहा है अब?
0: ठीक हूँ।
1: जानते हो कमल, तुम्हारा ये ह्यूमन बराबर तुम्हारी सेवा में लगा है, जैसे तुम्हारा भाई या बेटा हो।
0: ठीक कहा तुमने, मेरा सब कुछ। बस
2: डॉक्टर ने आपको ज्यादा बोलने को मना किया है, आपको आराम करना चाहिए।
1: ह्यूमन ठीक कह रहा है कमल, तुम आराम करो, मैं फिर आऊंगी। हेलो कमल।
3: हेलो शिखा।
1: सुनाओ कैसे हो अब?
3: बहुत मजे में।
1: मैं देख रही हूँ कमल, तुमने एक तरह से स्वयं को इंसानों से अलग कर लिया है। रोबोट की दुनिया में तुम बोर नहीं हो जाते?
3: तुमने ठीक कहा शिखा, मेरे घर के माली से लेकर लैब असिस्टेंट तक सब रोबोट है, एक गंगा को छोड़कर। जानती हो शिखा, इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है?
1: कैसी विशेषता?
3: इनके अंदर इंसानों जैसा छल कपट नहीं है।
1: अच्छा।
3: बेहद आज्ञाकारी और स्वामी भक्त हैं। तुम्हें याद होगा शिखा, जब मुझे हार्ट अटैक हुआ था उस समय ह्यूमन ने मेरी दिन रात सेवा की थी। बिल्कुल किसी स्नेही भाई या पुत्र की भांति।
1: वो सब तो ठीक है कमल, लेकिन मशीन तो फिर भी मशीन ही है।
3: जानती हो मेरी अगली योजना क्या है?
1: कैसी योजना?
3: रोबोट को इंसानी दिमाग देने की योजना।
1: क्या?
3: फिर हम में और इनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा।
1: लेकिन इंसानी दिमाग तुम्हें मिलेगा कहाँ से?
3: क्यों, यहाँ बहुत से ऐसे एक्सीडेंट के केस आते रहते हैं जिनका कोई नहीं होता।
1: लेकिन इससे क्या फायदा होगा?
3: फायदा होगा, बहुत बड़ा फायदा होगा। हेलो, चाय आ गई? पहले चाय पीते हैं, बाद में कोई और बात। क्या बात है नंबर एक?
4: जल्दी चलिए डॉक्टर, एक इमरजेंसी केस है।
3: क्या हुआ है?
4: एक्सीडेंट, बुरी तरह जख्मी है।
3: ओके शिखा, बाद में मिलता हूँ।
1: चलो मैं भी चलती हूँ।
3: ठीक है, चलो।
1: तो बिल्कुल मांस पिंड बन गया है।
3: जिस्म का शायद ही कोई हिस्सा बचा होगा जहां चोट ना लगी हो।
1: तुम्हें क्या लगता है, बच पाएगा?
3: नो, आई डोंट हैव एनी होप, बट स्टिल वी हैव टू डू आवर ड्यूटी।
5: नंबर एक, ऑपरेशन की तैयारी करो, देर करना ठीक नहीं। और हाँ, ह्यूमन कहां है?
4: लैब में। आपने उसे कुछ सैंपल्स एनालाइज करने को कहा था?
5: हाँ ठीक है, जरा उसे भी बुला लेना।
4: यस डॉक्टर।
1: क्या सोच रहे हो कमल?
3: यही कि शायद मेरे आविष्कार के पूरा होने का समय आ गया है।
1: तुम्हारा मतलब है?
3: हाँ, तुमने ठीक समझा है। तुम इसकी हालत देख रही हो? इसके दिल की धड़कन धीमी पड़ती जा रही है, किसी भी पल रुक सकती है। हो सकता है कि फिर टेबल पर ही रुक जाए। ऐसे में मेरा ये सोचना क्या गलत है?
1: लेकिन कमल, जब तक इसकी सांस चल रही है तब तक ऐसा सोचना इंसानियत के खिलाफ नहीं है?
3: मैं भी इसे पहले बचाने की ही कोशिश करूंगा, उसके बाद।
4: एवरीथिंग इज रेडी सर।
5: ह्यूमन से कहो इसके ब्लड की जांच कर, तुरंत ब्लड का इंतजाम करें, और नंबर 2 और 3 से कहो इसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में पहुंचाए।
1: एक बार फिर सोच लो कमल, क्या ऐसा करना ठीक होगा?
3: क्यों, कौन सा खतरा है इसमें?
1: ऐसा करने में तो कोई खतरा नहीं, लेकिन तुम्हारा ये आविष्कार कल दुनिया के लिए खतरा बन सकता है।
3: कभी नहीं, तुम शायद नहीं जानती, रोबोट हमेशा ऐसी मूव के 3 नियमों के अनुसार ही काम करते हैं।
1: कौन से 3 नियम?
3: रोबोट हमेशा अपने मालिक के निर्देशानुसार ही काम करते हैं। किसी भी परिस्थिति में वो अपने मालिक को नुकसान नहीं पहुंचने देते। और तीसरी बात यह है, अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जब स्वयं उसे और उसके मालिक को खतरा हो, तो वो अपने आप को नष्ट करके भी अपने मालिक को बचाता है।
1: रियली? मगर कमल, ये नियम तो रोबोट पर लागू होते हैं, जबकि तुम्हारे रोबोट के पास इंसानी दिमाग होगा, तब भी क्या वो इन नियमों का पालन करेगा?
3: तुम भूल रही हो शिखा, बेसिकली तो वो एक रोबोट ही रहेगा। मुझे तो लगता है कि

0: रोबोट की ताकत और इंसानी दिमाग एक साथ मिल जाएं, तो दुनिया में बहुत से असंभव को संभव बनाया जा सकता है।
1: ओके, विश यू गुड लक। अच्छा मैं चलती हूँ, लेकिन अपने आविष्कार की सफलता की खबर मुझे देना मत भूलना।
0: श्योर, सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा।
1: बाय, सी यू।
0: बाय।

0: देखा तो था, क्यों?
1: तुमने शहर के बाहर खंडर में इंसानी ढांचे के मिलने की खबर तो पढ़ी होगी।
0: हाँ हाँ, क्या वो?
1: हाँ, वो ढांचे मेरे बनाए रोबोट ही थे।
0: और तुम्हारा वो प्रयोग रोबोट को इंसानी दिमाग देने का?
1: वो भी पूरी तरह सफल रहा था।
0: फिर?
1: लेकिन तुमने ठीक ही कहा था शिखा,
0: मैं कुछ समझी नहीं।
1: मैंने सोचा था रोबोट की शक्ति और इंसानी दिमाग मिलकर दुनिया में कुछ ऐसा कर सकेंगे जो हमारे तुम्हारे वश में नहीं। लेकिन मैं मानव कल्याण की सोच रहा था, मानव के विनाश की नहीं।
0: मानव का विनाश? कुछ खुलकर बताओ कमल, तुम तो पहेलियां बुझा रहे हो।
1: सदियों से मानव की अदम्य लालसा रही है पृथ्वी पर एक छत्र शासन करने की। इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। बस मेरा रोबोट बीसी लालसा का शिकार हो गया और मुझे उसे नष्ट कर देना पड़ा।
0: क्या?
1: मेरा प्रयोग पूरी तरह सफल रहा था। वो अब वास्तव में ह्यूमन था, मेरा प्रिय ह्यूमन। वो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा था। कुछ समय बाद मैंने देखा उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा है। कई बार मैंने देखा वो मेरी लैब में मुझसे छुपाकर कुछ ना कुछ करता रहता है।
0: अच्छा,
1: अब वो आज्ञाकारी नहीं रहा था बल्कि मनमानी करने लगा था। धीरे धीरे उसने अन्य रोबोट को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया।
0: रियली?
1: और फिर एक बार जब एक केस के सिलसिले में कई दिन बाहर रहने के बाद मैं वापस लौटा।
2: गंगा, गंगा!
3: आए मालिक।
2: सबके सब कहां गए? अरे मेरी लैब में कोई भूचाल आया था क्या? सब उल्टा बुल्टा पड़ा है, ह्यूमन का उसे बुलाओ।
3: जी, वो तो उसी दिन चला गया था जिस दिन आप गए थे, और फिर आज तक लौटा नहीं।
2: क्यों, कुछ बताकर नहीं गया? कहां गया है?
3: जी जी नहीं।
2: ओ,
1: पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि उसके ढंग ठीक नहीं।
2: अच्छा देखो, मेरे लिए कप चाय लेकर आओ। हाँ, ये टीवी ऑन करते जाना, न्यूज आ रही होगी।
4: आज भी शहर की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। कई जगह हुए विस्फोटों में 10 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। अभी ये मालूम नहीं हो सका है कि इन दंगों के पीछे किसका हाथ है। मुख्यमंत्री ने जांच के न्यायिक का
2: कहां थे इतने दिनों से?
5: क्यों, क्या मुझे अपनी हर बात की रिपोर्ट देनी होगी?
4: नहीं, लेकिन जब शहर में इतने दंगे हो रहे हो तो।
5: दंगे? आप तो अभी से घबरा गए, ये तो बस मामूली सी शुरुआत है।
4: क्या मतलब? क्या तुम जानते हो कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ है? अरे अगर जानते हो तो फिर पुलिस को बता क्यों नहीं देते?
5: मैं पुलिस को बता दूं? मैं उन्हें बता दूं कि ये सब मैं कर रहा हूं?
4: तुम्हारा हाथ है? ये सब क्या है? अरे उन निर्दोष लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था?
5: उन लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जब जब भी कोई दुनिया को जीतने निकला है निर्दोष लोगों को ही अपनी बलि देनी पड़ती है।
4: तुम दुनिया को जीतना चाहते हो?
5: बेशक, लेकिन कुछ दिनों बाद आप ही देखेंगे कि सारी दुनिया इस ह्यूमन के अधीन होगी।
4: वो तो ठीक है, लेकिन
5: लेकिन वेकिन कुछ नहीं। सबसे शक्तिशाली होकर भी मैं किसी के अधीन क्यों रहूं?
4: देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो।
5: मुझे मेरी लक्ष्य प्राप्ति से कोई नहीं रोक सकता। कुछ दिनों में ये सारी मानव जाति मेरे ही अधीन होगी।
4: क्या क्या हो गया इसे? अब मैं इसे कैसे रोकूं?
1: मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे रोकूं उसे। एक दिन कहीं से खबर मिली कि किसी ने ह्यूमन को शहर के बाहर खंडहरों की ओर जाते देखा है।
0: अच्छा,
1: मैं समझ गया कि जरूर वहीं कहीं उसका अड्डा होगा, और मेरा अनुमान बिल्कुल ठीक था। न जाने कहां से और कैसे उसने सब कुछ जुटाया, आधुनिकतम मशीनें, हथियार, क्या नहीं था वहां।
0: अच्छा,
1: वहीं बैठे बैठे मात्र एक बटन दबाकर वो सब कुछ नष्ट कर सकता था।
0: रियली?
1: मुझे देखकर वो क्रूरता से हंसा।
5: तो आपको मेरे ठिकाने का पता चल ही गया।
1: देखो ह्यूमन, मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूं। इतना खून खराबा आखिर किस लिए? तुम भी तो उन्हीं की तरह इंसान हो।
5: उनकी तरह नहीं।

0: उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली, इसीलिए तो मैं उन पर शासन करने की योग्यता रखता हूँ।
1: इसका अर्थ हुआ कि तुम्हें किसी से कोई हमदर्दी नहीं?
0: हमदर्दी? कैसी हमदर्दी? आप भूल रहे हैं, मेरे पास इंसानी दिमाग है, मन नहीं।
1: लेकिन रोबोट के भी अपने कुछ नियम होते हैं।
0: वो उन रोबोट पर लागू होते हैं जो सिर्फ मशीन होते हैं। मुझे आपने ह्यूमन नाम दिया है, अर्थात मनुष्य। और फिर मनुष्य की कमजोरियां मुझ में ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है?
1: तुम्हें समझाना बिल्कुल बेकार है, मुझसे भूल हुई जो मैंने तुम्हें बनाया।
0: लेकिन ये भूल अब आप दोहरा नहीं सकेंगे।
1: क्या मतलब?
0: मतलब साफ है, एक तो आप मेरा अड्डा देख चुके हैं, और दूसरी बात ये कि मैं नहीं चाहता कि आप कोई दूसरा ह्यूमन बनाए जो कल को मुझे चुनौती दे सके।
1: क्या करोगे तुम? मुझे मारोगे?
0: और कोई रास्ता भी तो नहीं है।
1: तुम भूल रहे हो, मैंने तुम्हें बनाया है तो मैं तुम्हें खत्म भी कर सकता हूँ।
0: आप मुझे खत्म करेंगे? आप?
1: हंसो, जी भर कर हंसो, लेकिन याद रखो ये तुम्हारी आखिरी हंसी होगी।
0: कैसे खत्म करेंगे आप मुझे? हा?
1: बहुत आसान है, शॉर्ट सर्किट से तुम एक पल में लोहे के ढांचे में बदल जाओगे। और जानते हो, मैंने चारों तरफ डायनामाइट लगा दिया है,
2: तुम्हारा ये अड्डा भी नहीं बचेगा।
0: मैं देखता हूं तुम मुझे कैसे।
3: और इस तरह अंत हो गया मेरे उस आविष्कार का।
4: आपने सुनी विनीता सिंघल की लिखी झलकी दिमागी कसरतें। इसमें भाग लिया था गिरीश माथुर, अरुण कोचर, पुष्पा खन्ना, मंजू सैनी और राजीव शर्मा ने।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए।
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: दोस्तों एक और हम सबके सामने एक समस्या है, युवाओं के लिए रोजगार की। युवाओं के लिए कैरियर और भविष्य की रूपरेखा अब पारंपरिक नौकरियों से आगे बढ़ रही है। आज का युवा तेजी से उभरते हुए AI, डिजिटल क्रिएशन, उद्यमिता

और तकनीक के कौशल की मदद से जॉब सीकर की बजाय अब जॉब क्रिएटर बन रहा है। करियर को सुरक्षित और उज्जवल बनाने के लिए सही शिक्षा के साथ साथ लगातार नए कौशल सीखना अनिवार्य है। अपने भविष्य को संवारने के लिए

और सही कैरियर चुनने के लिए युवाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के प्रसार के साथ डेटा एनालिस्ट, AIR इंजीनियर और प्रॉम्प्ट इंजीनियर जैसी भूमिकाओं की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। डिजिटल मार्केटिंग और क्रिएटर इकोनॉमी की सोशल मीडिया, यूट्यूब और डिजिटल कॉन्टेंट निर्माण अब स्थापित और अत्यधिक लाभदायक कैरियर बन चुके हैं। हरित व्यवस्था, ग्रीन इकोनॉमी, जलवायु परिवर्तन और स्थिरता पर जोर देने के कारण अक्षय ऊर्जा, पर्यावरण प्रबंधन और नौकरियों का क्षेत्र भी हो रहा है। सरकारी योजनाओं और डिजिटल क्रांति की मदद से युवा अपने खुद को बिजनेस आइडिया आसानी से लॉन्च कर सकते हैं। तकनीकी ज्ञान के अलावा आज कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कुछ सॉफ्ट स्किल्स का बेहद होना भी बहुत जरूरी है। कहने का आशय है यह है कि हमें पुरानी चीज़ों को ध्यान रखते हुए, उनके अनुभव को लेते हुए नए टेक्नोलॉजी का भी ध्यान रखना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और अब आपके मनोरंजन के लिए ये गीत।

दोस्तों, आपने सुना सुनिधि चौहान और शान को, फिल्म का नाम था 3 बैचलर्स। और इस गीत के साथ ही आज का युववाणी कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। सभी सुनने वाले साथियों को हमारा नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, 6 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तनकारी अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ भी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को एक ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
2: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है।

0: है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
1: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि आज प्रश्न ये नहीं है कि भारत में नवाचार हो रहा है या नहीं, बल्कि प्रश्न ये है कि भारत के साथ मिलकर कौन नवाचार करे। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित एक समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्यभर में 1.25 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना ज्यादा धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। अंताल्या में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोमा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहद ने स्वर्ण पदक जीते। फाइनल में रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे देओक को हराया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान से खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा, वहीं रात 1:30 बजे नीदरलैंड्स और जापान होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। देखिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। आपसे थोड़ी देर बाद यानी 6:10 पर आप सुनेंगे देशगान। 6:15 पर आप सुन सकते हैं ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम। इसमें होगी चर्चा विश्व रक्तदान दिवस पर और दूसरी चर्चा होगी मिट्टी की सेहत और खेत की तैयारी विषय पर। इसके अलावा आप सुन सकते हैं अपनी पसंद के लोकगीत मन भावन क्रम में। ये कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे मृदुल कुमार पांडे। 6:30 से आप सुनेंगे ICC वुमेन्स 20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के मध्य एजवेस्टन से आंखों देखा हाल। संध्या बंधन कार्यक्रम का समय रहेगा 6:45 जिसमें आप सुन सकते हैं गैर फिल्मी फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में आप गैर फिल्मी भक्ति संगीत सुनेंगे। ब्रज साहित्य कार्यक्रम होगा 7:05 पर

जिसमें आप सुनेंगे उद्धव शतक संपाठ, प्रस्तुत करेंगी सुमन पाठक। प्रादेशिक समाचार 7:18 पर हम आकाशवाणी लखनऊ से लेकर के शाम सुहानी फरमाइशी फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 7:31 पर। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर। देशगान हम आपको सुनवाएंगे 8:35 पर। सुहाने तराने आप आनंद ले सकते हैं इस कार्यक्रम का 9:15 पर। 9:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक संगीत का कार्यक्रम। 10 बजे रविवार अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम होगा, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से लेकर के। अभी आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं देश का।

सम्बेश्वर में आपने सुना ये देशगान। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं मृदुल कुमार पांडे।

सब भैयान को हमारी राम राम। भैया रक्तदान महादान है जी, एक ऐसा कार्य है जो जीवन बचाएवे और हमारे समाज में स्थायी बदलाव लाएवे की शक्ति रखे है। रक्त

दान एक महान कार्य है। आपको एक यूनिट खून का दुर्घटना के शिकार व्यक्ति, गंभीर मरीज या प्रसव के दौरान जरूरतमंद माँ की जान बचा सके है भैया। रक्त को केवल स्वस्थ इंसानन से ही प्राप्त किया जा सके है। एक बार में लगभग 350 मिलीलीटर खून दान किया जा सके है, जाते एक संग 3 लोगन की जान बच सके है भैया। नियमित रूप से रक्त देवे ते शरीर में आयरन को स्तर सही रहे है, जाते दिल को दौरा पड़वे को खतरा कम होवे है। रक्तदान ते पहले आपके खून की जांच, हीमोग्लोबिन और ब्लड प्रेशर की जांच बिल्कुल मुफ्त होए है भैया। आज है विश्व रक्तदान दिवस, यानी कि 14 जून को मनाया जाए है विश्व रक्तदान दिवस, जाको जो मुख्य उद्देश्य है लोगों को सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादन की आवश्यकता के प्रति जागरूक करना और स्वेच्छा से रक्तदान करवे बारे नियमित रक्तदातान के प्रति आभार व्यक्त करना है। रक्तदान को लेके समाज में मौजूद भ्रांतियों को दूर करना और अधिक से अधिक स्वस्थ लोगों को नियमित रूप से रक्तदान करवे को प्रेरित करना है भैया। विश्व रक्तदान दिवस हमें निस्वार्थ सेवा और मानवता के महत्व की याद दिलावे है। रक्तदान एक ऐसा महान कार्य है जो काऊ जरूरतमंद को नयो जीवन देवे की शक्ति रखे है। एक यूनिट रक्त कई लोगों के जीवन में आशा की किरण बन सके है। आओ रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ावें और जीवन बचावे के जा अभियान को हिस्सा बने भैया। जा समय चल रही है ब्रज परिक्रमा, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा दे रहे हैं, हमों सुनवा रहे हैं कछु ऐसे ही लोकगीत भैया सुनो जी लोकगीत।

सरस कौल और सखियन के स्वर में भैया ने सुनो जी लोक गीत। भैया अपने खेत से अच्छी उपज लेवे के काजे आवश्यक है खेत की मिट्टी की सेहत अच्छी होनो और फसल के काजे खेत की अच्छी तरह से तैयारी। भैया अच्छी फसल को मिट्टी को स्वस्थ है वो बहुत जरूरी है। स्वस्थ मिट्टी में हवा और पानी को बहाव अच्छा रहे है जाते पौधा मजबूत होए हैं और उपज बढ़े है। मिट्टी की सेहत को सुधारवे और खेत की अच्छी तैयारी करवे को 3 कदम जरूरी हैं। पहली गहरी जुताई ते मिट्टी को पोली और हवादार बनानो। जैविक खाद मिलाए के पोषक तत्व बढ़ानो और तीसरी है खेत को समतल करना जाते फसल की जड़ गहरी जाए हैं और उपज बढ़े है। मिट्टी की सेहत सुधारवे को खेत में गोबर की खाद केंचुआ खाद या हरी खाद को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भैया जाके काजें एक ही फसल बार बार उगाएवे के बजाय दाल और अनाज बदल बदल के बोने चाहिए, मतलब फसल चक्र अपनायो जानो चाहिए। मुख्य फसल के बीच खाली समय में हरी घास या मूली जैसी फसल उगाएं जी मिट्टी को कटवे ते बचावे है और नमी बनाई रखे है। अब ही बात करेंगे खेत की तैयारी की। बातें पहले सुनवा रहे हैं जी लोकगीत, स्वर दे रहे हैं डोरीलाल गोला।

दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं

भैया अभी आनंद लियो जालो गीत को, स्वर हो डोरीलाल गोला को। भैया वो बात कर रहे हैं खेत की तैयारी की, बाकी काजें जुताई करके मिट्टी को उलट पुलट कर ढीलो करें, जाते मिट्टी में ऑक्सीजन अच्छी तरह पहुँचे। जुताई के बाद पाटा लगाए के मिट्टी के बड़े ढेलान को तोड़ के खेत को समतल कर लें, जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो, खेत में पानी न रुकने दें, जल निकासी को भैया अच्छी नाली बनाएं, तो भैया जा तरह ते करी जा सके है खेत की तैयारी। अब कार्यक्रम में है जी अगला लोकगीत।

सावित्री दीक्षित के स्वर में भैया सुन रहे हैं जी लोकगीत, रामस्वरूप शर्मा के स्वर में प्रस्तुत है जी अगलो लोकगीत।

भैया ने सुनो जी लोकगीत, स्वर दियो हो राम स्वरूप शर्मा ने। भैया जा लोकगीत के संग ही आज के जा कार्यक्रम को यहीं पे दे हैं विराम। सब भैयान को हमारी राम राम।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम था जय संतोषी माता, और आइए आप सुनते हैं फिल्म अवतार का ये गीत।

आशा भोसले, महेंद्र कपूर, नरेंद्र चंचल और साथियों को आप सुन रहे थे फिल्म अवतार में। और आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल को, फिल्म का नाम है शिव महिमा।

0: आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल को, फिल्म का नाम था शिव महिमा। इस गीत के साथ ही आज का संध्या वंदन कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। ब्रज साहित्य कार्यक्रम लीजिए सुनिए। उद्धव शतक सौपाठ प्रस्तुत कर रहे हैं सुमन पाठक।
1: सूरदास जी ने अपने काव्य में लिखा है कि बिलगिजन

मानो उधव प्यारे, बिलगजनी मानो उधव प्यारे। यह मथुरा काजर की कोठरी, जही आए तही कारे। बिलगजनी मानो उधव प्यारे, तुम कारे सुफलक सुत कारे। तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप समारे। तुम कारे सुफलक सुत कारे, कारे मधुप समारे। और तिनके संग अधिक छवि उपजत, तिनके संग अधिक छवि उपजत। कामक मधुक समारे, मानहु नील माट ते काड़े। मानहु नील माट ते काड़े, जे जमुना जल जाए पखारे। बिलगजनी मानो उधव प्यारे। और जागुन श्याम भई कालिंदी, सूरदास जी का मानना है कि कालिंदी का स्वरूप ऐसा पहले नहीं था, जब से भगवान जी ने उसमें स्नान कर लिया श्याम ने, तो उनका जो श्याम रंग था उससे जमुना जी काली हो गई है। तो जागुन श्याम भई कालिंदी, और सूर श्याम गुण न्यारे। सूर श्याम गुण न्यारे, बिलगजनी मानो उधव प्यारे। और अब एक गीत रख रही हूँ, विरह गीत, जो गोपियों को भगवान जी वहाँ छोड़कर आ जाते हैं ब्रज में, तो उनकी क्या दशा होती है वो इस गीत के माध्यम से वर्णन किया है कि

रे गोपियां गोपाल जी से प्रार्थना करती हैं, उलाहना देती हैं। और बंद सुनिएगा, गोपाल जी कैसे रहते थे वहां पर ब्रज में, गोकुल में, नंदगांव में, कि भोरी

और भगवान जी वहां से कह के तो आते हैं कि मैं परसों आ जाऊंगा, भगवत जी में ऐसा प्रसंग आता है, लेकिन जब वर्षों बीत जाते हैं नहीं जाते हैं, और फिर जब भगवान जी को याद भी आती है तो उद्धव को भेजते हैं वो। तो गोपियां कहती हैं कि ब्रज को छोड़ गयो तू मथुरा कह गयो आऊं परसों, ब्रज को छोड़ गयो तू मथुरा कह गयो आऊं परसों,

और अंत में गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी आप बेकार परेशान हो रहे हैं, हमें इस संदेश की तो आवश्यकता नहीं थी। और कहती हैं, उनका मन का भाव है कि आठों या

ब्रज गयो भुलाई साबरे ओ कान्हा। और भगवान जी को प्रेम करने वाले लोग सबने अपने अपने मन के भाव को कैसे कैसे व्यक्त किया है, प्रभु की लीलाओं को कैसे कैसे कलमबद्ध किया है। इसी में एक सवैया है रसखान जी का कि या लकु

और आठों हूँ सिद्धि नमो निधि के सुख नंदी की गाये चराए बिशारों। आठों हूँ सिद्धि नमो निधि को सुख नंदी की गाये चराए बिशारों। और रस खाने कबो इन्हें अखियन सो और ब्रज के बन बाग तड़ागे निहारों। कोटि के एवी कलोठनी के धम कोटि को एमी कलोथनी के धम को काले करी रहे।

सुनिहारों। एक एक कण पर कोटि कोटि ब्रह्मांड को लोग न्यौछावर कर देने वाली छवि को इस तरह से लोग दर्शन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं लोग। और रसगंज जी ने आगे लिखा है कि अगर मैं मनुष्य बनूं तो उसी ब्रज का बनूं, कुछ भी बनूं, पशु बनूं, पक्षी बनूं या फिर पत्थर भी बनूं तो उसी ब्रज का बनूं। यदि गिरिवर्धन पर्वत का बनता हूं तो भगवान जी कभी न कभी तो मुझे अपनी उंगली पर उठाएंगे। और इसी भाव को व्यक्त किया है कि मानस हो तो वही रसे खान और बसो।

0: पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरयो कर छत्र पुरंदर निडारन। और जो खग हो तो बशेरो करो कालिंदी कूले कदम में की डारन। जो खग हो तो बशेरो करे कालिंदी कूले कदम में की डारन।
1: आप सुन रहे हैं ब्रज काव्य मकरंद, प्रस्तुत कर रहे हैं सुमन पाठक। आपने सुना मानुस हो तो वही रस खान, और यहाँ तक कही है कि नाथ मुझे कीजे ब्रज की मोर, निज दिन तेरो नृत्य करूँगी ब्रज की खोरन खोर। हम न वही वृंदावन रैन, जिन चरणन डोलत नद नंदन, नितपत चारत उधेन। तो ब्रज में रहने का अनूठा महत्व है, यहाँ पर मुक्ति कहे गोपाल।

सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उर मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। ऐसी यह भूमि ब्रज भूमि, मोहन में जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन यमुना पानी। और अब इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: Ma ciao. मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की 226 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में महाराणा प्रताप की मूर्ति का किया अनावरण। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बदली भारत की पहचान। आगरा में लगेंगी डिफेंस फैक्ट्रियां। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के कई जिलों में जनप्रतिनिधियों ने किया संवाद। बाराबंकी में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कल से शुरू होंगी वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं। लखनऊ से सुबह 7:05 पर रवाना होकर 8:05 पर नोएडा पहुंचेगी पहली फ्लाइट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सुपोषण मिशन दूसरे चरण का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की नई पहचान बनी है और नई तकनीकों को अपनाकर उत्तर प्रदेश अभिमारू राज्य की जगह देश का ग्रोथ इंजन बन गया है।
1: यूपी की एक नई पहचान बनी है। कहीं भी आप चले जाइए, गौरव के साथ 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी आज अपनी इस पहचान के साथ जाने जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का देश का सबसे अच्छा नेटवर्क है, रेलवे का बेहतरीन नेटवर्क है, मेट्रो बन रही है, प्रदेश में इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बन रही है।

0: नए पावर प्लांट लग रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाने का कार्य भी अब उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गोरखपुर और आजमगढ़ मंडलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा भी की। श्री योगी ने सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता के साथ समय से उन्हें पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए और विवरण हमारे प्रतिनिधि से।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गोरखपुर और आजमगढ़ मंडलों के पीडब्ल्यूडी के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान श्री योगी ने संबंधित अधिकारियों से दोनों मंडलों में संचालित पुराने और निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर सड़क निर्माण के कार्यों में तेजी लाने और सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा के अंदर पूरा किए जाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने देवरिया में निर्माणाधीन मोहन सेतु के कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी भी ली और अधिकारियों को कार्यस्थल का मुआयना कर सेतु निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री योगी ने अधिकारियों पर जोर दिया कि वे जन प्रतिनिधियों से मिले प्रस्तावों के आधार पर प्राथमिकता तय कर सड़कों का काम जल्द शुरू कराएं ताकि आम नागरिकों को इसका सीधा लाभ मिल सके। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आगरा के शमशाबाद में महाराणा प्रताप की 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर श्री सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप का शौर्य, त्याग और उनका संघर्ष भुलाया नहीं जा सकता। श्री सिंह ने कहा कि देश में आज हमारे जवानों को खुली आजादी है कि वे आतंकवाद का सीमा पार करके भी सफाया कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश को नक्सलवाद से पूरी तरह से छुटकारा मिला है और पिछले 12 सालों में विश्व स्तर पर भारत की पहचान बदली है।
3: आज भारत ने दुनिया के दूसरे देशों के साथ अपने जितने अच्छे रिश्ते बना लिए हैं, सारी दुनिया आज हमको सम्मान की नजरों से देखती है। आपको जानकर खुशी होगी कि 2014 के बाद से दुनिया के 38 देशों के साथ व्यापार करने का समझौता भारत ने किया है। इसके पहले इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में प्लांट लगा रही हैं। आगरा भी डिफेंस कॉरिडोर का ही एक नोड है। डिफेंस फैक्ट्रियां अब इधर भी लगेंगी, लखनऊ से लगनी शुरू हो गई है, चित्रकूट में लगी, कहीं न कहीं कोई न कोई इंडस्ट्री इस प्रकार की लगती चली आएगी। अभी तो यह सिलसिला आगे बढ़ने वाला है मेरे बहन भाइयों, समय की प्रतीक्षा कीजिए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी जिलों में संवाद कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इस क्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज बाराबंकी में मीडिया से बातचीत कर पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री पाठक ने कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सेवा, सुशासन और जनकल्याण को शासन को मूल आधार बनाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी वर्गों के कल्याण के साथ साथ किसानों को मुख्यधारा में लाने का काम किया है। अम्बेडकर नगर में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं से युवाओं, किसानों और महिलाओं को बड़ा लाभ मिला है। आगरा में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की मौजूदगी में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों की यात्रा ने देश की तस्वीर ही नहीं, तकदीर भी बदली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से।

0: सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं कल से शुरू हो रही हैं। पहली उड़ान सुबह 7:05 पर लखनऊ से रवाना होकर 8:05 पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगी। इसके बाद नोएडा से बेंगलुरु के लिए पहली नियमित वाणिज्यिक उड़ान संचालित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: पहले चरण में 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता वाला यह एयरपोर्ट भविष्य में 22.5 करोड़ यात्रियों का वैश्विक हब बनेगा। अंतिम चरण में 5 रनवे होंगे जो इसे विश्व के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शामिल करेगा। पश्चिम यूपी, दिल्ली, एनसीआर और आसपास के राज्यों के लिए यह नया एविएशन गेटवे बनेगा। इंडिगो चरणबद्ध तरीके से लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़, अमृतसर समेत 16 से अधिक शहरों के लिए उड़ानें शुरू करेगी। इसी के साथ अन्य उड़ान कंपनियां उड़ान भरेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन 28 मार्च 2026 को किया था। इस हवाई अड्डे की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 नवंबर 2021 को रखी गई थी। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
0: श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नीपेन मिश्र ने आज अयोध्या में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि श्री राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े मामले में सरकार ने SIT का गठन किया है। श्री मिश्र ने कहा कि जांच समिति की संस्तुतियों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
2: राज्य सरकार जब इस गति से निर्णय ले रही है, 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट, 15 दिन में अंतिम रिपोर्ट और जो भी कमेटी की संस्तुति होगी उसका कार्यान्वयन होगा।
0: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के 13 विषयों की प्रारंभिक परीक्षा 2025 का अशांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। प्रदेश के 67 जिलों में बनाए गए 891 परीक्षा केंद्रों पर ये भर्ती परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 की पाली में कराई गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की 226 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में महाराणा प्रताप की मूर्ति का किया अनावरण। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बदली भारत की पहचान। आगरा में लगेंगी डिफेंस फैक्ट्रियां। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के कई जिलों में जनप्रतिनिधियों ने किया संवाद। बाराबंकी में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। और नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कल से शुरू होंगी वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं। लखनऊ से सुबह 7:05 पर रवाना होकर 8:05 पर नोएडा पहुंचेगी पहली फ्लाइट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8:00 FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
4: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
3: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
3: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
4: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: A season in international cricket, she is currently alongside Mandhana. That will give her a lot of confidence too. Still to come in the order are Bharti.
6: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमें बहुत से संदेश आपके मिले हैं। सबसे पहले गांधीनगर गुजरात से GK परमार, ज्योत्सना परमार, हर्ष और दीपल। मथुरा वृंदावन चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, बिक्की, नानू और इनके परिवारजन।

ये संदेश हमें मिला है गंज डोडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान और मोहम्मद उस्मान। बालोद से उमा राज, कुलदीप राज, जगदीश राज और प्रभारानी राज। गुरमीत सिंह मीठा, साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से विनोद, बीपी, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाश, नीलम, रामा, पल्ली, सुनील और बीकेपुरी। और ये संदेश हमें मिला है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू कश्यप, राजपाल कश्यप, काजल, सीमा, मानवी, तनकी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह का। गांव दुलापुर, उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद से। गांव पजेनिया, जिला जालौर, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार, आदर्श, सार्थक और अलौकिक। आप सब सुनना चाहते हैं ये गीत।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म सिलसिला में। अब हमें जो संदेश मिले हैं, अनारकली बाजार जगराव से कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका गबया, भाई सुच्चा सिंह, विनोदपुरी और इनके परिवारजन, ममता ढींगिया, कुणाल ढींगिया, बागपत उत्तर प्रदेश से, सुरत गंगनेजा, पूनम गंगनेजा, विशाल प्रिया, दिशा दिशानी और निमित आहूजा, जलालाबाद वेस्ट से, सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित, कुमार सर्वत, प्रथमेश प्रणाली, सानवी और कल्पना, ग्राम पंचायत कालेगांव जफराबाद से, राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, आप सब भी सुनना चाहते हैं ये गीत। फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, नवीसा प्रवीण, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से, श्री गंगानगर से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा, रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश और मदन लाल वर्मा, नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलगा से, मदरसा गेट भाऊपुरा जौनपुर से इरशाद अहमद, कमरान अहमद, अरमान, नवेद और अजरा तबस्सम, आप सब सुनना चाहते हैं ये गीत।

किशोर कुमार और आशा भोसले को आपने सुना फिल्म शराबी में। अब हमें जो संदेश मिला है गोपी की नगरिया से, मिठल लाल सारस्वत, नेहा, नीरज, निकिता और इनके मम्मी पापा, गांव नगला पोला से विजय सिंह, भानु प्रताप सिंह, अनुराधा, रामानुज, पीयूष, कृष्णा, राधिका, पवन, नमन और इनके परिवारजन, गांव नवहरा से कुमल मास्टर, जसोदा, सूरज, गांव कुमोदवन से रमेश, सुरेश, सुनील, रचना और भरतपुर से सोनिया, अजीत, शिवांश और इनके मम्मी पापा। और ये संदेश हमें मिला है सोहनलाल जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरविंदर चावला, श्रीमती वनी चावला, लोकेश, श्रीमती पायल, बेबी बेदही जोशी और हंसिका जोशी। और ये संदेश हमें मिला है अजीत नगर मालोड पंजाब से, छिद्दर सिंह छिद्दा, रतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगन कौर और उनकी लाडली पोती संदीप कौर। आप सब सुनना चाहते हैं।

श्रेया घोषाल को आपने सुना, फिल्म का नाम था जहर। इसी के साथ आज का शाम सुहानी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आप भी अपने पसंद का कोई गीत सुनना चाहें तो हमें 94-122-25-575 पर व्हाट्सएप संदेश के द्वारा आप अपनी पसंद भेज सकते हैं। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 8 बज रहे हैं। दीजिए सुनिए हमारा विशेष कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं गौरव श्रीवास्तव।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ गौरव श्रीवास्तव। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब भी बात होती है तो हमने देखा है कि बीते एक दशक में, या यूं कहें कि जब से मोदी सरकार आई है, बीते 12 वर्षों में लगातार इसमें प्रगति देखने को मिल रही है। और ये प्रगति इसलिए भी है क्योंकि लगातार जो अलग अलग तरीके से इसमें इनिशिएटिव्स लिए गए और लगातार जो इस पर फोकस किया गया, उससे आज जो क्रांति आई है वो बदलते दौर की एक नई तस्वीर पेश कर रही है। इन तमाम अहम पहलुओं पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या इसके अलावा स्पेस सेक्टर हो, इसके अलावा अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं या क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये सब कुछ इतना बड़ा हुआ है बीते 12 वर्षों में, अभी हाल में कहां पे है और किस तरह से जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है वो क्या कुछ कहता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। सर, बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद।
1: पहला सवाल सर यही है, 12 साल और उसके बाद जो लगातार इनिशिएटिव्स लिए गए, बहुत बड़ी गति मिलती हुई नजर आई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, कैसे इस सफर को देखते हैं और क्या बड़ा होने वाला है जिससे भविष्य और ज्यादा बेहतर भारत का नजर आता है?
2: जैसे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जहां तक विज्ञान को लेकर के अगर हम बात करें या साइंस टेक्नोलॉजी की, तो एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ
1: जी।
2: उसका प्रमुख बिंदु एक तो ये था कि इसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता हासिल हुई। पहले साइंस टेक्नोलॉजी संबंधित विषयों को बहुत ज्यादा प्राथमिकताएं नहीं मिलती थी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की तरफ से, और प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें रुचि लेने लगे। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया, ये समझते हुए कि अगर आज की दुनिया में हमें इससे आगे बढ़ना है तो हम साइलोज में नहीं चल सकते
1: जी।
2: और तीसरा, विज्ञान में जहां ईज ऑफ रिसर्च वो तो लाजिम अनिवार्य है, उसके साथ साथ अंततः उसका लक्ष्य है ईज ऑफ लिविंग फॉर अ सिटीजन, तो उसको सिटीजन सेंट्रिक भी बनाया गया
1: जी।
2: हमारे बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव गत 12 वर्षों में ऐसे रहे हैं जिनका सीधा सीधा ताल्लुक नागरिक के साथ है या नागरिक के जीवन के साथ है, और जिसका परिणाम यह हुआ है कि आज मेनस्ट्रीम मीडिया, जो पहले विज्ञान संबंधी समाचारों को या गतिविधियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं देता था, उसमें भी जिस तरह से हमारा स्पेस की अचीवमेंट्स हुई, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि स्पेस हैज गिवन अ स्पेस इन मेनस्ट्रीम मीडिया चंद्रयान के माध्यम से। अरोमा में जब लेवेंडर आया, अभी हाल ही में दो या तीन दिन का कैंप था मुंबई में
1: जी,
2: तो हमारे युवा लगभग 30 40 या 50 लाख का लेवेंडर तेल फरोख्त करके आए हैं, तो एक नया एवेन्यू रोजगार का आ गया। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं क्वांटम की, तो मीडिया का भी

0: से ताल्लुक है
1: जी,
0: डिफेंस का भी ताल्लुक है और इसलिए सबको रुचि भी आई। हमने अपने लिए 8 साल का टारगेट रखा था, उसमें से आधा हिस्सा जो हमें 4 साल तक तवक्को थी कि हम पूरा कर लेंगे, वो 3 साल में ही मुकम्मल हो गया। तो अनेकों ऐसा स्काई कास्ट जो भी इंस्टॉल किया गया है, जिसके माध्यम से जब कोहरे का मौसम होता है तो बहुत दिक्कत आती है फ्लाइट्स में
1: जी,
0: पायलट को भी दिक्कत आती है, यात्रियों को भी असुविधा होती है। तो उसमें बहुत सारी बेहतरी हो कि इस प्रकार से फॉग की प्रेडिक्शन और ज्यादा एक्यूरेट प्रिसाइज हो टाइमिंग। तो ये चूंकि नागरिकों के साथ संबंधित ये विषय है, इसी प्रकार चाहे आप हमारा गवर्नेंस का ले लीजिए, तो हमारा सीपी ग्राम मॉडल है जिसको हमने एआई चैटबॉट के साथ जोड़ दिया, अभी 2 ही दिन पहले की बात है। तो उससे भी आम नागरिक, जहां एक जमाने में 2014 से पहले कुल मिला करके हमारे यहाँ सरकार में 2 लाख शिकायतें आती थी पूरे हिंदुस्तान में साल भर में, आज वही संख्या बढ़कर के 25-30 लाख हो गई, क्योंकि लोगों की रुचि बढ़ी, क्योंकि वी वर प्रॉम्प्ट, वी वर रिस्पॉन्सिव, वी आर फॉलोइंग टाइमलाइन। हमारे 95-97% जहां पुराने जमाने में 2-2.5 महीने लगते थे अगर जवाब आए, जवाब कई बार आता ही नहीं था, वहां हमने ये सुनिश्चित किया कि हर ग्रीवेंस का जवाब भी आएगा, एआई ड्रिवन भी होगा और कोई ह्यूमन बात भी करेगा उससे, और उसकी टाइमलाइन घटा करके 12-13 दिन कर दी गई और बहुत जल्दी 1 हफ्ता हो जाएगी।
1: बिल्कुल सर, इसके अलावा भी हमने देखा है कि जब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो भी हमें हाल ही में देखा कि बहुत बड़ा कीर्तिमान और उपलब्धि हासिल करते हुए नजर आया, कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि होमी बाबा ने इसकी नींव बहुत पहले रखी थी कि इसको अलग अलग फेजेस में किया जाएगा, पहला दूसरा फेज और उसके बाद तीसरे की ओर आगे बढ़ना, थोरियम क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा है। ये मात्राएं किस तरह से दिखाती है कि भारत का जो बढ़ता हुआ कदम है वो और ज्यादा सशक्त होता हुआ नजर आ रहा है।
0: बहुत अच्छी बात कही, बल्कि मैंने उस दिन जिस दिन हमारा ये टारगेट अचीव हुआ तो मैंने ये कहा था कि होमी बाबा ने जो स्वप्न देखा था उसकी पूर्ति मोदी जी के हाथों से हुई है। द विंडिकेशन ऑफ होमी बाबाज ड्रीम हैज हैपन्ड थ्रू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और अगर आप जरा गंभीरता से गहराई से सोचे तो समझ में आएगा कि होमी बाबा कितने दूरअंदेश व्यक्ति थे, हिंदुस्तान की परिस्थितियों को समझते हुए,
1: बिल्कुल
0: हमारे साधनों की लिमिटेशंस को समझते हुए उन्होंने हमें एक 3 स्टेज प्रोग्राम दिया। जो 3 स्टेजेस उन्होंने दी थी उसमें धीरे धीरे प्रगति हो, उस तरह से कैसे उन्होंने तय किया कि पहले स्टेज में हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे। हैवी वाटर होता है थोड़ा सा अलग कैसे, जैसे आम पानी को आप H2O कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये होता है D2O न्यूट्रोस ऑक्साइड, लेकिन उसमें लाभ ये रहता है कि उसमें आम यूरेनियम इस्तेमाल होता है जो आपको पहाड़ों से या कोस्टल एरिया से मिलता है, उसमें कुछ एनरिचमेंट नहीं करनी ट्रीटमेंट, तो उसको इस्तेमाल से वो यूरेनियम 239 इस तरह से,
1: उसकी मात्रा भी सर कम है,
0: मात्रा भी कम है, और उसका जो स्पेंट फ्यूल निकलता है प्लूटोनियम। तो होमी बाबा का ये तस्वुर था, ये कल्पना थी कि जब हम उसमें थोड़ी सी महारत हासिल कर लेंगे तो उस प्लूटोनियम जो वहां का स्पेंट फ्यूल निकलेगा उसी को हम दूसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे। कैसे, उसको यूरेनियम 239 के साथ जोड़ के जो थोड़ा सा एनरिच्ड है
1: जी।
0: तो एनरिच्ड यूरेनियम को जब हम प्लूटोनियम के साथ जोड़ेंगे, जिसे विज्ञान की भाषा में मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल भी कहा जाता है
1: जी,
0: तो उससे एक रिएक्टर के लिए एनर्जी भी इजाद होगी और साथ ही साथ उसी रिएक्टर के बैग में हम थोरियम रख देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में जैसे आपने कहा कि सबसे अधिक स्टोर दुनिया का हिंदुस्तान में, ऑलमोस्ट 25% ऑफ द थोरियम इज फाउंड इन इंडिया और मेनोजाइट हमारा मिनरल उसका एक हिस्सा है। तो उस थोरियम को जब हम बैग में रखेंगे तो जब वो रिएक्टर का दोनों यूरेनियम और प्लूटोनियम अपना काम कर रहे होंगे एज मिक्स फ्यूल, तो प्लूटोनियम से जो उसमें से कुछ एक न्यूट्रॉन्स निकलेंगे पॉजिटिव न्यूट्रॉन, उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा थोरियम एज ए रिजल्ट ऑफ सम सर्टेन केमिकल सीक्वल ऑफ रिएक्शंस, और इसको एक अलग किस्म के फ्यूल में कन्वर्ट करेगा जो होगा यूरेनियम 233 जो एनरिच नहीं है लेकिन है वो ईंधन ही, फ्यूल ही है। और इस तरह से थोरियम से प्राप्त हुआ, थोरियम से पैदा किया गया यूरेनियम हमें मिलेगा जो हम तीसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे, और जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो दूसरों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी क्योंकि ये थोरियम तो हमारे घर में मौजूद है। तो इस तरह से किया था, और ये जो आपने कहा अप्रैल मास में हम दूसरी स्टेज पर पहुंच गया जहां प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ईजाद किया गया और इसकी धूम सारी दुनिया में है। साथ ही साथ चूंकि शांति एक्ट भी आया, वो भी प्रधानमंत्री जी के ही हस्तक्षेप से हुआ, बिकॉज पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए जरूरत बात होती है कि न्यूक्लियर सेक्टर को खोल देना प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, और किसी ने इसकी
1: प्राइवेट सेक्टर के लिए जब खोला गया, न्यूक्लियर का सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए जब मर्ज होता हुआ नजर आ रहा है और खोला गया, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मानते हैं उन लोगों के लिए जिनके बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जो इसमें कुछ करना चाहते हैं?
0: बिल्कुल, ये आपने अच्छा किया पूछा। पहली बात तो ये है कि एक बहुत क्रांतिकारी निर्णय था, बहुत कम देश ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने अपने न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर के लिए खोला है
1: जी।
0: तो इसके लिए भी जैसे मैंने कहा, इट रिक्वायर्स पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल करेज, पॉलिटिकल कन्विक्शन, वो मोदी जी के कारण संभव हुआ। अब जब खुल गया तो कई लोग जो शायद सिनिसिज्म की वजह से कहते हैं या आलोचना की दृष्टि से कहते हैं कि साहब अब

0: पहला एंटीबायोटिक भी हमने याद किया है। अभी तक जितने एंटीबायोटिक थे, जब पहला एंटीबायोटिक आया था सन 1948 के लगभग, पेंसिलिन, उस समय पाउडर का था, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसका पाउडर थोड़ा इस्तेमाल किया गया था वुंड्स पे, तो वहां से पता चला कि सारी इन्फेक्शन के लिए फायदेमंद रहता है। उसके बाद इसके इंजेक्शन बने, बाद में टेबलेट बनी, तो उसको इस समय क्वीन ऑफ ड्रग्स कहा जा रहा था। लेकिन तब से लेकर के जितनी भी सक्सेसिव जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स हुई है, चाहे वो पेंसिलिन के बाद क्लोरोफेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, जेटअप, वो सारी बाहर से सॉल्ट आते हैं। पहली बार हमने यहाँ ट्रायल किया, यहाँ सॉल्ट ट्रायल किया और प्राइवेट पार्टनर के साथ उसकी हम मार्केटिंग कर रहे हैं।
1: सर, अब बात करेंगे स्पेस की, क्योंकि स्पेस में बहुत सारा काम हुआ है। गगनयान मिशन पर सबसे ज्यादा नजर है, क्या तैयारियां उसको लेकर, और बीते दिनों में जो हमने देखा, चाहे चंद्रयान मिशन हो या इसके अलावा अलग अलग जो मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं, उसमें कितनी प्रगति मिलती हुई नजर आ रही है जो गगनयान मिशन को बहुत सक्सेसफुल बनाए।
0: मुझे लगता है कि स्पेस सेक्टर में सबसे पहला क्रांतिकारी मोड़, जैसे एटॉमिक को लेकर के आपने शांति की बात की, वो था 5 बरस पहले, जबकि जैसे मीडिया ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अनलॉक्ड स्पेस सेक्टर, पहली बार स्पेस को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया। क्योंकि हमारा ये मानना है कि विज्ञान, शोध, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कमर्शियलाइजेशन तभी संभव है कि आप प्राइवेट सेक्टर को पहले दिन से ही साथ लेके चले।
1: सर, ये इससे भी कनेक्टेड है जो प्राइवेट रॉकेट्स भी लोग जो बना रहे हैं अलग-अलग कंपनी।
0: निश्चय, अब देखिए, आज से 5 साल पहले हमारा स्पेस इकोनॉमी हिंदुस्तान की कोई बहुत ज्यादा उल्लेखनीय नहीं थी। आज हमारी स्पेस इकोनॉमी लगभग $9 बिलियन और इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है कि आंकलन ये लगाया जाता है, हमारी जो प्रोजेक्शंस इंडिकेट करती हैं कि अगले 8-10 सालों में हम 5-6 गुना बढ़ करके $40-45 बिलियन हो जाएंगे, जिसका अर्थ ये हुआ कि स्पेस इकोनॉमी विल बी एन इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी एज वी मूव टूवर्ड्स 2047। और हमारा स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप सिंगल डिजिट हुआ करते थे, आज 400 से बढ़ गए, और एक हाल ही में शुरू हुआ स्टार्टअप हमारा यूनिकॉर्न भी हो गया पिछले कुछ दिन पहले। अब प्राइवेट सेक्टर में रॉकेट्स भी बनाए जा रहे हैं, लॉन्चिंग्स भी हो रही हैं, और वो इसलिए संभव हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर का सहयोग पब्लिक सेक्टर के द्वारा हो रहा है और दोनों एक समन्वय बना करके कोलैबोरेटेड अप्रोच के साथ चल रहे हैं। और आने वाले समय में हिंदुस्तान की ये भी खासियत है, हमारे रॉकेट्स तो जा ही रहे हैं, रॉकेट से खबर हमारी बड़ी ज्यादा बनती है, जैसे चंद्रयान के लेकर के, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग साइट। लेकिन हिंदुस्तान की ये विशेषता है कि हमने स्पेस सेक्टर को जितना स्पेस मिशन के लिए इस्तेमाल किया है, उससे अधिक नागरिक जीवन में सुविधा लाने के लिए, ईज ऑफ लिविंग। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के सुझाव पर गति शक्ति शुरू किया। गति शक्ति इज अ ग्लोबल मॉडल जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में काम आता है, उसकी मॉनिटरिंग में, उसकी टाइमलाइंस को निर्धारित तरीके से संभालने में, उसकी जो बाधाएं हैं, तो ये गति शक्ति इज अ स्टोरी। हमारा लैंड फार्म्स को लेकर के जो कार्यक्रम है, ड्रोन्स और स्पेस को लेकर के, उसमें भी हमारा स्पेस का ही काम आ रहा है। हमारे मीडिया और टेलीविजन चैनल तो है ही है, तो कहने का अर्थ यह है कि हमारा स्पेस सेक्टर इज वर्चुअली इन एवरी हाउस होल्ड, एवरी इंडियन हाउस होल्ड टूडे। और वॉरफेयर आपने देख ही लिया ऑपरेशन सिद्धूर में, उसमें दो ही विभाग थे मुख्य तौर पर, एक स्पेस सेक्टर और दूसरा न्यूक्लियर सेक्टर। तो ये सारा वॉरफेयर, उससे हमारी क्षमताएं, और आज ये स्थिति है कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स हम ना केवल इंडिजिनस बना रहे हैं बल्कि इंडिजिनस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा डिफेंस सेक्टर अधिकतर इम्पोर्ट्स पर डिपेंड करता था 2014 से पहले, 2025 में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.5 लाख करोड़ से अधिक है और हमारा एक्सपोर्ट हुआ है लगभग 23,000 करोड़ दूसरे देशों के। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम में जा रही है, इंडोनेशिया जा रही है, और बहुत सारे है हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स यूरोपियन देशों में, फ्रांस इत्यादि में जा रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे स्टार्टअप्स में, हम जब शुरू हुए तो 350-400 थे, आज हम तीसरे दर्जे पहुंच गए लगभग 2,26,000 से अधिक, और उनके माध्यम से जो जॉब्स जनरेट हुए उनकी संख्या लगभग 24 लाख है। इसी प्रकार हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम नंबर ऑलमोस्ट 90-80 थे, अभी हम 38 आ गए। पेटेंट्स में हम नंबर 6 है दुनिया में, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उसमें से 55% ऐसे हैं जो रिजाइडिंग इंडियन है, ना बाहर जाके शोध करते थे, ये बच्चे वो हैं जिन्होंने यहीं शोध किया, यहीं पले बले और यहीं से उन्होंने पेटेंट फाइल किए। और यही कारण है कि आज विश्व हमें निगाह उठाकर देखता है, बड़ी तवक्को के साथ देखता है कि अब वो नहीं रहा कि वी आर नॉट देयर टू बी लेड, द वर्ल्ड लुक्स अप टू अस टू लीड। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा भी माइंडसेट बदला है और दुनिया का नजरिया बदला हमारे प्रति।
1: भारत टेक्नोलॉजी क्योंकि क्रिएटर बन रहा है, ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप कितना बड़ा योगदान मानते हैं, और तमाम क्षेत्र, चाहे हम क्वांटम की बात करें वो भी, और इसके अलावा रक्षा की हम बात कर रहे हैं वहां पर भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरह से जो नई गति है वो देते हुए नजर आ रही है, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें।
0: नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक ऐसा टूल है
1: जी,
0: जो अभी इज नो लॉन्गर एन ऑप्शन, इट्स अ नेसेसिटी, ये तो इस्तेमाल में होगा ही, चाहे कोई भी क्षेत्र होगा, हेल्थ होगा, कम्युनिकेशन होगा, रिसर्च होगा, लेकिन वन

0: टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और हमने जो कई ऐसे प्रयोग किए हैं जहां हाइब्रिड मॉडल बड़े कामयाब साबित हुए, यानी जैसे हमारा सीपी ग्राम्स है, ग्रीवेंस रिड्रेसल, उसमें हम एआई के द्वारा चैटबॉट भी रखा है, एआई के द्वारा डिस्पोजल भी होता है, लेकिन डिस्पोजल के बाद शिकायतकर्ता से बातचीत वार्तालाप एक व्यक्ति करता है, उससे उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लेवल. इसी तरह से हमने टेलीमेडिसिन में भी कुछ प्रयोग किए हैं जहां हम एक फिजिकल डॉक्टर बिठाते हैं साथ में एआई डॉक्टर. एआई का लाभ ये है कि अगर आप चिकित्सा जगत को ले लें, या जीन्स की बात कर रहे हैं, तो इतने सारे जीन्स को स्क्रीन करने में हमें कई दशक लग जाएगी, यहाँ मिनटों में बात हो जाती है. ईज ऑफ वर्किंग बहुत ज्यादा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में. और जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं, चाहे लार्ज लैंग्वेज मॉडल, स्मॉल लैंग्वेज, उसका हमने इस्तेमाल किया है. एग्रीकल्चर के लिए अलग बनाए हैं, मौसम विभाग के लिए अलग मॉडल्स बनाए हैं, वो भी चूंकि मौसम विभाग भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसमें हमने अब नव कास्ट का रखा है. नव कास्ट यानी आप घड़ी देख के 3 घंटे का प्लानिंग कर सकते हैं, अगर आपने कहीं मीटिंग पे जाना कि छतरी लेके जाएं कि ना जाएं. और हमने शुरू उसको किया जो ज्यादा रेन प्रोन एरियाज थे, जैसे मुंबई है, चेन्नई है. इसी प्रकार अब नव कास्ट के ही तर्ज पर स्काई कास्ट शुरू किया, जो फॉग डिटेक्शन कर सकता है, जो एयरक्राफ्ट है उनके लिए. तो हर क्षेत्र में इस तरह से टारगेट्स रखे गए कि हम दुनिया के दूसरे देशों की बराबरी कर सके. और इस वक्त अगर दुनिया में हिंदुस्तान की साख बड़ी है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान भारत की टेक्नोलॉजी इनोवेशंस में तरक्की का है.
1: सर, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से किस तरह से आप इसको देखते हैं, और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से क्या कदम उसकी ओर बढ़ाए जा रहे हैं?
0: ग्रीन हाइड्रोजन में भी हमारा मिशन है. इस सरकार ने 2023 में हमने नेशनल क्वांटम मिशन शुरू किया, 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, उसमें भी हमारे 4 अलग अलग हैं, एआई कंप्यूटिंग, एआई डेटा, AI इनोवेशन सेंटर्स, AI फ्यूचर स्किलिंग, और इसी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन भी लगभग उसी समय में लॉन्च हुआ है. ग्रीन हाइड्रोजन में हम धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं. हमने बजट में भी जो घोषणा की गई थी कि हमारे 5 स्मॉल रिएक्टर्स होंगे, तो स्मॉल और स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर्स टिल 2033, उनमें से हमारे 3 पर काम शुरू हो चुका है. 3 में से 1 है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है. हाइड्रोजन में हमें थोड़ी सी दिक्कत यह है कि उसको स्केल अप करने में, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग, इलेक्ट्रोलाइजर्स वगैरह जो हमारे हैं उनका शायद अभी कैपेसिटी कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम स्केल अप करेंगे तो उसकी कीमत भी घटेगी और उसकी मात्रा भी बढ़ेगी. और ये सारा एक पूल बनेगा, हाइड्रोजन सोर्स, न्यूक्लियर सोर्स, रिन्यूएबल. और रिन्यूएबल में भी विंड सोर्स, सोलर सोर्स के हम नए नए एरियाज तलाश कर रहे हैं. जैसे हमने ओशन, क्योंकि डीप ओशन मिशन भी इसी सरकार ने शुरू किया, वहां पर एक और कंपोनेंट हमने ओशन एनर्जी का रखा है, यानी समुद्र के पानी के ऊपर, समुद्र के तट के ऊपर आप अगर सोलर शीट्स बिछा दे तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी. समुद्र में चलती हुई तेज हवाओं का आप इस्तेमाल करें तो उसमें भी एनर्जी. समुद्र में जब नदी जाकर के तेज रफ्तार से जुड़ती है तो उसके बीच जो फ्रिक्शन पैदा होती है उससे भी एनर्जी. समुद्र में जब टाइड आता है तो खतरे का बायस तो ही है, लेकिन साथ में जैसे कहते हैं कि एवरी एडवर्सिटी इज अकंपनीड विद अ वर्चू, उससे भी बिजली याद होती है. तो समुद्र से भी अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जीज. और मुझे लगता है कि सन 2047 जो हमने कहा, वहां 100 गीगावाट तो न्यूक्लियर एनर्जी होगी, जो लगभग 10-15% पूरे हमारी जरूरत का हिस्सा बनेगी, लगभग 60-70% हमारा न्यूक्लियर एनर्जी होगी.
1: बिल्कुल सर, हमें कोई फाइनल मैसेज 12 साल और उसके बाद जो लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम हुआ है उसको लेकर दर्शकों तक?
0: मुझे लगता है कि 12 साल और इसके आगे हम कैसे जाएंगे, 2047 का हम लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे, अक्सर चर्चा की जाती है लेकिन इसको साइंटिफिक ढंग से नहीं सोचा जाता
1: जी.
0: वो उन सेक्टर से जो पहले ना तलाशेंगे ना तराशेंगे, इधर अनएक्सप्लोर्ड और अंडर एक्सप्लोर्ड, जैसे हमारा ओशन है. भारत एक ऐसा देश है जिसका 11-12 हजार लंबा समुद्री तट है, 12-13 प्रदेश इसके तट पर बसते हैं, उसके अंदर संपत्ति ही संपत्ति है, माइंस, मिनरल, किसी ने नहीं देखा. अगर हम उसको तराश सके. हमारा दूसरा सरमाया हिमालयास, आज वहां से लेवेंडर निकल रहा है, पर्पल रेवोल्यूशन आया है, फ्लोरिकल्चर जो प्राण प्रतिष्ठा जब अयोध्या में हुआ तो उसमें जो ऑफरिंग की गई थी उसमें ट्यूलिप हमारे पालमपुर के इंस्टीट्यूट से आया, तो फ्लोरिकल्चर. तो ये जो सेक्टर्स थे जो पहले पूरी तरह स्पेस सेक्टर, जिनको पूरी तरह से एक्सप्लॉयट नहीं किया गया था, अगर हम इनको पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में कामयाब हो गए तो मुझे लगता है हमें 2047 से पहले ही उस स्तर पर पहुंच जाएंगे कि हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 2047 का शताब्दी वर्ष मना सकें.
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े इसमें और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर. तो ये भारत के बढ़ते हुए कदम है जो लगातार और ज्यादा सशक्त होते हुए नजर आ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर. और जो नई नई तकनीकी जो चीजें निकल कर सामने आ रही है, बात चाहे क्वांटम एनर्जी को लेकर हो, टेक्नोलॉजी को लेकर हो, इसके अलावा जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देख रहे हैं उसमें हो, तो ये सब कुछ दिखा रहा है कि किस तरह से भारत और ज्यादा प्रगति की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. और यही वो तस्वीर है जो भारत को और ज्यादा सशक्त करती हुई नजर आ रही है. नमस्कार.
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के

संबेश्वर में आप सुन रहे थे देशकान, आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। 8:45 पर टोनी को हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरेलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरुत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम

0: माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
0: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
1: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
1: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
3: The world seeks trusted and reliable partners.
4: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
3: And a scale that few can match.
1: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
5: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं। और इसके चलते जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाद

0: संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
3: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
2: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
4: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
5: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
2: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ा पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे। इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल

0: रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: गुड इवनिंग। This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation level talks at historic Villa Carolus at Nice. Focus on expanding special global strategic partnership between two countries across key sectors. Both leaders jointly inaugurate Bharat Innovates event at Palada Expositions. India's space economy poised to grow from $9 billion to $45 billion in the next decade. In Maharashtra, 8 pilgrims die as vehicle falls in well in Solapur. All 14 Indian crew members rescued from a vessel off Oman coast after engine failure. And in cricket, India set a target of 171 runs for Pakistan in the group stage match of ICC Women's T20 World Cup in Birmingham. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron held delegation-level talks at historic Villa Carolus at Nice in France. The discussions between two sides focused on expanding the special global strategic partnership between two countries across key sectors including defence, technology and trade. Prime Minister Modi was accompanied by the National Security Advisor Ajit Doval, External Affairs Minister S. Jaishankar, Foreign Secretary Vikram Misri and senior officials. President Macron was accompanied by French Minister for Europe and Foreign Affairs, Jean-Noël Barrot, and other senior officials. The two leaders also interacted during a walk-and-talk session at Villa Carolus. Earlier, Prime Minister Modi and French President Macron jointly inaugurated Bharat Innovates event at Palada Expositions at Nice in France today. The landmark initiative showcases India's rapidly expanding innovation and startup ecosystem. The flagship event being held under the India-France Year of Innovation brings together over 120 Indian startups and leading investors, technology leaders, and premier educational institutions from across the globe. It features innovations across 13 key sectors, including advanced computing, semiconductors, artificial intelligence, clean energy, and others. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi highlighted India's startup revolution by saying that the country's youth are developing solutions for global challenges in a number of areas.
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: Highlighting the strength of India-France ties, Mr. Modi said, while many nations engage in trade and strategic cooperation, only a few relationships are guided by a shared vision as well as common interests.
2: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
1: Addressing the gathering, French President Macron praised India's

लता मंगेशकर और तलत महमूद को आप सुन रहे थे फिल्म सगाई में। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और मुकेश को, फिल्म का नाम है धर्मवीर।

0: जल्दी
1: दूसरा कोई मैच है क्या?
2: ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके।
1: हाँ यार उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है, तो बैंकिंग में नहीं।
2: वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
1: सीनियर सबसे पहले, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम था रोटी कपड़ा और मकान। सुहाने तराने का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रादेशिक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ हरियाणवी लोकगीत। सबसे पहले आइए सुनते हैं शशि शाहनी और स्वाति बत्स को।

आप सुन रहे थे शशि साहनी और स्वाति बत्स को। प्रादेशिक संगीत कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं हरियाणवी लोकगीत।

और इस गीत के साथ ही प्रादेशिक संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आप सुन रहे थे होशियारी देवी चौहान को। इस कार्यक्रम में आज आपने सुने कुछ हरियाणवी लोकगीत। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। रात्रि के 10 बजने वाले हैं, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: As a dedicated teacher, he has trained many students to concert level. He also volunteers with Sampradaya, a non-profit organization promoting fine arts.
1: श्री जी श्री राम अपने गायन का आरंभ बालाजी पेटा वेंकटरमना भागवतर की एक कृति से कर रहे हैं जो राग ललिता तथा आदि ताल में निबद्ध है.
0: श्री जय श्री राम बिगिन्स हिज वोकल रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ वालाजी पेटा वेंकटरमना भागवतार इन द राग ललिता सेट टू आदिताल.

0: अब आप सुनेंगे श्याम शास्त्री की एक कृति जो राग पूर्वी कल्याणी तथा विलोम चापू ताल में निबद्ध है।
1: You will now listen to a composition of Shyama Shastri in the rag Purvi Kalyani set to Viloma Chapu Taal.

0: श्री जी श्री राम अपने गायन का समापन त्यागराजा की एक कृति से कर रहे हैं जो राग शंकरावर्णम तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री जय श्री राम कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग शंकराभरणम सेट टू आदिताल।

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर विद्वान पीरवली जयभास्कर और घटम पर श्री यम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: That was तन्यावर्तनम played on मृदंगम by विद्वान पीरवली जयभास्कर and on घटम by श्री यम चंद्रकांत।
0: इसी के साथ आज की अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में श्री जी एस श्री राम का गायन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत करने वाले कलाकार थे वायलिन पर वीएसवी गायत्री शिवानी, मृदंगम पर विद्वान पीरवली जयभास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: विद दैट वी कंक्लूड द वोकल रिसाइटल बाय श्री जे श्री राम इन द ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज अकंपनीड ऑन वायलिन बाई वीएसपी गायत्री शिवानी, ऑन मृदंगम बाय विद्वान पीरवली जयभास्कर and on ghatam by Shri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचेरस तालुका में महासवाड पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे। बीते दिनों इसराइल ने बेरूत के इलाकों पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर हमले किए। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारी